राजा जनक की नगरी देखने के क्रम में पुरवासियों के मन मोहते हुए श्रीराम अपने अनुज लक्ष्मण के साथ नगर के पूर्व भाग में पहुंचते हैं, जहां धनुष यज्ञ की रंगभूमि की रचना की गई है। जनकपुर के बालकगण बड़े उत्साह तथा आदर के साथ दोनों भाइयों को यज्ञशाला की रचना दिखा रहे हैं। श्रीराम ने अपनी मधुर मनोहर वाणी में अनुज लक्ष्मण को यज्ञ भूमि का परिचय दिया और दोनों भाई सारा कौतुक देख गुरु के पास लौट चले।

0: अपने जिले के मशहूर डॉक्टर जे शरण एमडी फिजिशियन अब बैठ रहे हैं सुबह 10 बजे से आशा मेडिको जनता सिनेमा रोड गोपालगंज, और डॉक्टर जे शरण जी शाम 5 बजे से 7 बजे तक बैठ रहे हैं अपने निवास स्थान शबनम होटल के पीछे आजाद नगर गोपालगंज।
1: डॉक्टर साहब के यहाँ पर्ची का नंबर मोबाइल से भी लगाया जा सकता है।
2: आशा मेडिको में किसी भी प्रकार की लिखी दवाएं मिलती है, मोबाइल से दवा का ऑर्डर भी किया जा सकता है। मोबाइल नंबर है 7545 67666।
3: एक सूचना, डॉक्टर साहब रविवार को भी दोपहर 12 से 3 बजे तक बैठते हैं।
4: अगर आप चाहते हैं अपने बच्चों के लिए स्मार्ट एजुकेशन, सुरक्षित एवं संस्कार के साथ शिक्षा, साफ सुथरा माहौल, एसी हॉस्टल की उत्तम व्यवस्था और अपने बच्चों का उज्जवल भविष्य, तो गोपालगंज में एक ही नाम,
5: बाबू भगवान सहाय सेंट्रल स्कूल। सीबीएसई पैटर्न पर आधारित एक कंप्लीट को एजुकेशनल स्कूल, क्लास 10th तक। सेशन 2026 से 27 के लिए प्ले ग्रुप से लेकर कक्षा 8वीं तक एडमिशन ओपन।
4: यहां मिलती है वेल क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी, स्मार्ट क्लासेस, मॉडर्न फैसिलिटीज, कंप्यूटर क्लासेस विद लैब और इंग्लिश स्पोकन क्लासेस।
5: कमजोर छात्रों के लिए एक्स्ट्रा क्लासेस की विशेष व्यवस्था, नीट एंड क्लीन एटमॉस्फेयर और सीसीटीवी कैमरा की सुविधा,
4: बस एवं आवासीय हॉस्टल सुविधा उपलब्ध, साथ ही सैनिक स्कूल, नवोदय, नेतरहाट और अलीगढ़ जामिया की तैयारी की सुविधा 100% सफलता की गारंटी के साथ। पता, हरखुआ भगवान नगर, वार्ड नंबर 24, विष्णु शुगर मिल के पश्चिम, गोपालगंज।
5: संपर्क करें 8002221969 या 9117081530।
6: जो लोग डायबिटीज से परेशान हैं, वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलतापूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य एसपी त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज, जैसे
7: सभी प्रकार के नशा, जैसे शराब, टेबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, टीका, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंता और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस तथा
6: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलतापूर्वक करते हैं।
8: वैद्य एसपी त्यागी जी से मिलने का पता,
6: प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में।
8: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 99554943
6: और 9097160602।
9: घर पर बैठे बेरोजगार युवाओं के लिए अब इंतजार नहीं, एक सुनहरा मौका आपका इंतजार कर रहा है।
4: छत्रपति शिवाजी महाराज फायर एंड सेफ्टी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गोपालगंज लाया है आपके लिए शानदार करियर बनाने का अवसर।
9: अगर आप 10+2 डिप्लोमा या ग्रेजुएट पास है तो बनिए एक प्रोफेशनल सेफ्टी ऑफिसर और पाए अपने भविष्य को एक नई दिशा।
4: यहां उपलब्ध है 1 साल का सेफ्टी डिप्लोमा ADIS, NEBOS और IOSH, PG डिप्लोमा इन एनवायरमेंट जैसे प्रोफेशनल कोर्स,
9: और सबसे खास बात 100% जॉब गारंटी। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
4: मोबाइल नंबर 8511168095 और बात करें अमरेंद्र सर से।
9: पता, छत्रपति शिवाजी महाराज फायर एंड सेफ्टी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, बंजारी रोड, HP पेट्रोल पंप के सामने, गोपालगंज।

0: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
2: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
3: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
2: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
3: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
2: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
3: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
2: संपर्क करें 84710309 या 9765665750। गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
4: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
2: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
4: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
2: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
4: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
2: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
4: कॉल नाउ 9656 या 9656 57902।
5: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
6: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
7: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
2: आज ही आएं गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।

0: आखिर कौन बनेगा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
1: मैं बनूंगा।
2: क्या आप में है वो बात जो हमारे 10 प्रश्नों का बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे पाए और बन जाए कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
0: अगर है दम तो पार्टिसिपेट कीजिए हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के शो में। कॉल कीजिए हर रविवार 12 से 1:30 के बीच 8029-94921 पे,
2: हर संडे दोपहर के 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में,
0: ऑनली ऑन रेडियो रमझिम 90.4 अमर जेड पर।

0: चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।
1: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
2: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
1: सुनो दिल से।

0: ठक ठक।
1: काजी आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
2: अच्छा मिला ही नहीं।
1: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
2: जी हाँ कमल श्री, याद रखिए सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
1: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट गोपालगंज।
2: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
1: क्या चाहते हो, मैं ना जाऊँ अपनी दोस्त की शादी में?
2: क्यों क्या हुआ है?
1: तुम्ही ने तो कहा था मुझे डिजाइनर लहंगा, साड़ी और गाउन दिलाओगे।
2: अरे तो कौन सी बड़ी बात है, आज ही चलते हैं गोपालगंज में लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स, वहाँ तुम्हें तुम्हारी मन पसंद के अच्छे अच्छे कपड़े मिल जाएंगे।
1: फिर ये भी ठीक है, चलो चलते हैं लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स।
2: शादी विवाह या किसी भी शुभ अवसर पर एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स जो है मेन रोड गोपालगंज में।
3: आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो, रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

0: मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
1: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
0: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
1: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटो कॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी, संपर्क करें 99399-66999।
2: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं, दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
3: और दुल्हन का लहंगा साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ, इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
4: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा,
5: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
6: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
4: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा साड़ी सूट पीस, हर डिजाइन, हर रंग, हर बजट में।
3: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
4: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
6: कॉल करें 87-894-18744।
7: अरे स्टीयरिंग हिल क्यों रहा है और ये टायर जल्दी घिस क्यों रहे हैं?
4: अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा तो समझ जाइए, टायर को चाहिए अलाइनमेंट और बैलेंसिंग,
6: और इसके लिए जिले में भरोसे का एक ही नाम है, मिश्रा टायर्स, अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग।
4: यहाँ होता है कंप्यूटराइज्ड व्हील अलाइनमेंट, व्हील बैलेंसिंग, 3D अलाइनमेंट, डिजिटल बैलेंसिंग, सब कुछ आधुनिक मशीनों से।
6: साथ ही सभी कंपनी के टायर ट्यूब बेहद किफायती दाम पर उपलब्ध हैं।
4: एक बार सेवा का मौका जरूर दें, विजिट करें मिश्रा टायर्स कंप्यूटराइज्ड अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग, शिव मंदिर पोखरा के सामने, NH 27 बंजारी गोपालगंज।
6: रोड सपोर्ट या जानकारी के लिए कॉल करें 8825214946।
8: सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता, रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है, सुनो दिल से।

0: तब भौजी आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नु सारा मार्केट, देख लेनी नु सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
1: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है, पर कोनो जचल है ना?
0: ई बात बा, तो ऐसन करी कि अब चली सीधे हमरा साथे कमल श्री में। महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
2: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
3: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा,
4: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद है अनुभवी डॉक्टर, डॉक्टर स्वाति के गुप्ता MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन SVBPN न्यू दिल्ली।
3: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
5: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
3: संपर्क 99-393-65-930।
6: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
7: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
6: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले।
7: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
6: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
8: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
9: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
8: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
9: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
8: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
9: जानकारी है तो कॉल करे 6205-62112 पे।
10: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपने भाषा की पहचान, रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।

0: अगर आपका फर्नीचर डोलता है और बोलता है तो एक्सचेंज तो मांगता है।
1: संतोष फर्नीचर लेकर आ गए हैं ग्रेट एक्सचेंज ऑफर।
2: ग्रेट एक्सचेंज ऑफर, अपने घर के पुराने सोफा और डाइनिंग को ले आएं और नए सोफा तथा डाइनिंग को ले जाएं और बनाएं अपने घर को सुंदर तथा आकर्षक।
1: आज ही विजिट करें संतोष फर्नीचर, चिराईगढ़ पेट्रोल पंप के सामने, कॉलेज रोड, गोपालगंज। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 82 101 87 952। नियम और शर्तें लागू।
3: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
4: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
5: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल,
6: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा में, NH 27 पर दक्षिण साइड, गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
5: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
6: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेष द्वारा।
5: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन, और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
6: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
5: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब, भोजपुरवा, NH 27, गोपालगंज।
6: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
7: जिले का गौरव संतोष मेडिकल हॉल, घोष मोड़, दरगाह रोड, गोपालगंज।
8: गोपालगंज जिले का प्रतिष्ठित अंग्रेजी दवा की दुकान संतोष मेडिकल हॉल।
9: हमारे यहाँ भारत के प्रसिद्ध डॉक्टरों द्वारा लिखी गई सभी प्रकार की अंग्रेजी दवाएं उपलब्ध हैं, जैसे गोरखपुर, पटना, कलकत्ता, लखनऊ, बनारस, चेन्नई और मुंबई के डॉक्टरों द्वारा लिखी गई दवाइयाँ भी मिलती हैं।
10: एक सूचना, संतोष मेडिकल हॉल अब चला गया है कॉलेज रोड चिराई घर के पहले, गोपालगंज। संपर्क सूत्र है 62042434003 62042434003।
11: तरंग 90.4 पर आप जिले की आवाज रेडियो रिमझिम को सुन रहे हैं।

0: एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
1: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से, संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला गोरखपुर।
0: आज ही संपर्क करें 7388894700 या 9198886973।
2: रामू हरिया कल तैयार रही लो पराली जलाए चले के बा
3: ठीक बा भैया।
4: ए भैया एगो सूचना सुनला हा, कृषि विभाग द्वारा एगो सूचना दियल जा रहल बा कि खेत के अवशेष यानी पराली नहीं खे जरावे के, ना तो कृषि विभाग के कोनो योजना के लाभ ना मिली और ऊपर से जुर्माना भी लागी।
5: ऐसन का है, जरावला से काहे मना होता।
4: फसल के अवशेष जरला से हमनी के माटी, पर्यावरण और हमनी के खुद के स्वास्थ्य के बहुत नुकसान होता। फसल के अवशेष के जरे से माटी के उर्वरता कम हो जाला, जरूरी सूक्ष्म जीव भी नष्ट हो जाला और पर्यावरण में हानिकारक गैस निकलेला। एक टन ठूठ जरला से 60 किलो कार्बन मोनोऑक्साइड और 1460 किलो कार्बन डाइऑक्साइड नियत जहरीला गैस वायुमंडल में निकलेला।
5: अरे हमरा तो जानकारी ना रहला कि एकरा से हमनी के पर्यावरण पर इतना नुकसान बा, लेकिन बताओ तो हमरा के एकर बढ़िया विकल्प का सरकार बतावता।
4: एकर बढ़िया विकल्प यह बाटे कि फसल के अवशेष के जराए के बजाय ओकरा के माटी में ही मिला ली, ऐसे हमनी के माटी में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम जैसन पोषक तत्व मिली, जोना से पैदावार में बढ़ोतरी हुई।
5: अच्छा तो अब से ठूठ के हमनी के जराएब जा ना, एकरा के हमनी के माटी में मिलाएब जा, ताकि हमनी के माटी के उर्वरता बढ़ जाए और हमनी के पर्यावरण भी सुरक्षित रही। बहुत अच्छा कैलू भाई जानकारी दे के।
4: याद रखी, ठूठ कूड़ा ना हा, खेती के गहना हा, एकरा के जराई मत माटी में मिलाई। जिला कृषि विभाग गोपालगंज द्वारा जनहित में जारी।
6: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: नमस्कार, रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। मिथिलेश तिवारी और सुनील कुमार को मंत्री बनाए जाने के बाद समर्थकों में उत्साह, जगह जगह लोगों ने किया जोरदार स्वागत। करोड़ों की लागत से बना पंचायत सरकार भवन वर्षों से पड़ा है वीरान। सिद्धवलिया डकैती कांड में दो आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग मामलों को लेकर लग रहा है विशेष लोक अदालत। और पुलिस अधीक्षक ने कार्यालय में सुनी जन फरियाद। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र, अब हालचाल विस्तार से। बिहार सरकार ने अपने मंत्रियों को शपथ ग्रहण कराने के बाद अब उनके मंत्रालय उन्हें आवंटित कर दिए हैं। इसकी सूची जैसे ही जारी हुई तो गोपालगंज में भी उत्साह का लहर दौड़ गया, जहां जदयू खेमे में भी तमाम समर्थकों ने मंत्री सुनील कुमार का स्वागत, अभिनंदन और उनको बधाई दी। तो वहीं भाजपा खेमे में भी जोरदार तरीके से मिथिलेश तिवारी का स्वागत हुआ। हालांकि मिथिलेश तिवारी के समर्थक भारी संख्या में पटना ही पहुंच गए और के आवास पर काफी भीड़ भाड़ देखा गया। मिथिलेश तिवारी को शिक्षा मंत्री की जिम्मेदारी दी गई है। अब पूरे बिहार में शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर सेवा देने के लिए मिथिलेश तिवारी ने संकल्प लिया है। तो वहीं ग्रामीण कार्य विभाग की जिम्मेदारी सुनील कुमार को सौंपी गई है और वे भी अब अपने मंत्रालय में पूरे बिहार के विकास के लिए काम करेंगे। इस दौरान मिथिलेश तिवारी से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा,
1: देखिए हमारी पार्टी हमें जो काम देती है उसको हम ईमानदारी से करते हैं और हमारे लिए हर काम बड़ा काम है। हमने 36 वर्षों तक संगठन के माध्यम से पार्टी की सेवा की। अब हमारी पार्टी ने हमें सरकार में काम करने का मौका दिया है तो इसके लिए हम माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय गृह मंत्री जी को, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को और अपने तमाम शीर्ष नेताओं को और साथ में बैकुंठपुर की महान जनता को और हमारे बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी को हम आभार प्रकट करना चाहेंगे कि हमें ये काम मिला है। टीम सम्राट के हम हिस्सा हैं। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने एक सपना देखा है, विकसित बिहार का सपना और विकसित भारत का सपना, और उसको हम लोग पूरा करेंगे। बिहार को अग्रणी राज्यों में स्थापित करने के लिए जरूरत पड़ी तो जान लड़ा देंगे, लेकिन बिहार के 14 करोड़ लोगों की आशा आकांक्षा के प्रतीक बनेंगे और हर हाल में बिहार का विकास करेंगे।
0: हथुआ प्रखंड क्षेत्र के सोहागपुर पंचायत में बने पंचायत सरकार भवन में हमेशा ताला लटका रहता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि करोड़ों रुपए खर्च कर बनाए गए इस भवन में कोई कर्मचारी बैठना मुनासिब नहीं समझता। ग्रामीणों का कहना है कि उन्हें छोटे छोटे काम के लिए भी प्रखंड कार्यालय का चक्कर लगाना पड़ता है और कई सालों पहले बनकर यह पंचायत सरकार भवन तैयार हो चुका है और इसमें ताला लगा दिया गया है। सरकार के इतने सारे रुपए खर्च हो गए परंतु जनता के किसी काम यह भवन नहीं आ रहा है। पंचायत सरकार भवन में पंचायत स्तरीय पदाधिकारी, पंचायत सचिव, रोजगार सेवक, कृषि समन्वयक, आवास सहायक, राजस्व कर्मचारी, किसान सलाहकार, कंप्यूटर डाटा ऑपरेटर, कार्यपालक सहायक और विकास मित्र तथा सरपंच, मुखिया और पंचायत समिति कचहरी के सचिव सहित सभी कर्मियों को बैठकर ग्रामीणों की समस्याओं का समाधान करने के लिए पंचायत सरकार भवन का निर्माण किया गया है, परंतु यह सिर्फ शोभा की वस्तु बन गया है। इसको लेकर स्थानीय ग्रामीण से भी बातचीत की गई तो उन्होंने कहा,
2: वर्षों से करोड़ों की लागत से ग्राम पंचायत सरकार भवन का निर्माण हुआ है जो कि अभी बंद पड़ा हुआ है, इसको लेकर के आपका क्या कहना है?
3: देखिए, सरकार की ये बहुत महत्वाकांक्षी योजना है पंचायत सरकार भवन, जो हर एक पंचायत में बन गया है। हमारे यहाँ भी बहुत पहले से बना हुआ है, फिर इसका जीर्णोद्धार कार्य हुआ है, लेकिन जो कर्मचारी है वो यहाँ आके बैठते नहीं है, जिसके चलते पंचायत वासियों को समस्या का समाधान करना पड़ रहा है, समस्या का
2: झेलना पड़ता है।
3: और यहाँ होना चाहिए कि हर एक कक्ष, मुखिया कक्ष अलग है, सचिव का कक्ष है, सरपंच का कक्ष है, सबको आके यहाँ अगर रोज प्रतिदिन बैठते हैं तो इससे
2: आम जनमानस को
3: बहुत सुविधा होगा और उनका काम आसानी से हो जाएगा। जो दौड़ के प्रखंड पर जाना होता है आय जाति निवास के लिए, वो सब यहाँ कार्यपालक सहायक कर सकते हैं, तो उनको यहाँ के बैठना चाहिए। जन्म मृत्यु वगैरह सब चीज पंचायत से बन रहा है तो यहाँ बैठ के सब किसी को पंचायत के जो भी कर्मचारी हैं, प्रतिनिधि हैं, उनको बैठ के यहाँ अगर उस काम को करेंगे तो जनता को काफी लाभ पहुंचे।
2: इस समस्या को लेकर के आपके ग्रामीणों के द्वारा किसी वरीय पदाधिकारी को सूचना दी गई है?
3: नहीं, अभी तक तो नहीं दी गई है, क्योंकि ग्रामीण मान लीजिए सबको हथुआ ही चले जाते हैं, इसकी जानकारी भी उन लोगों को बहुत नहीं होती है। सबको ग्रामीण निकाम धंधा में रहते हैं और जो आता है वो हथुआ जाके कर लेते हैं, लेकिन जागरूक कुछ लोग हुए हैं, देखिए क्या होता है।
2: आपका परिचय?
3: जी, मेरा नाम सुधांशु कुमार सिंह हुआ, हम सोहागपुर निवासी हैं।
0: ठीक। सिधवलिया थाना क्षेत्र में 24 मार्च 2026 को एक डकैती की घटना हुई थी। बताया जा रहा है कि जलालपुर कला गांव में रामाकांत प्रसाद पिता स्वर्गीय झगरू प्रसाद के घर में 5 से 6 हथियारबंद अज्ञात अपराधियों ने डकैती की थी, जिसमें सोने चांदी के आभूषण नगदी इत्यादि की लूट हुई थी। इस मामले में कांड दर्ज करने के बाद पुलिस ने अनुसंधान शुरू किया और अब इस कांड में शामिल 2 अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि कांड में संलिप्त अभियुक्त मुकेश उर्फ भूटी नट पिता स्वर्गीय दुखहरण नट साकिन मोहम्मदपुर नीलामी थाना माधोपुर को गिरफ्तार किया गया और पूछताछ में उसने इस डकैती कांड में अपनी संलिप्तता को स्वीकार किया। इस दौरान उसके अपने हिस्से के लूटे गए सोने को भी विजय कुमार सोनी पिता राजेंद्र प्रसाद सोनी थाना जामो जिला सिवान को बेचने की बात कही, जिसके बाद अभियुक्त के निशानदेही पर विजय कुमार सोनी को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया और उसके पास से बेचे गए सोने जैसा कुछ हिस्सा जिसको गला दिया गया था उसको पुलिस ने बरामद किया है। इस मामले में सदर 2 SDPO से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा,
4: सर विगत कुछ दिन पहले सिधवलिया थाना अंतर्गत ग्राम जलालपुर में रात्रि में रामाकांत प्रसाद के घर में कुछ अज्ञात अपराध कर्मियों द्वारा हथियार के बल पे लूटपाट की घटना को अंजाम दिया गया था। इस संबंध में सिधवलिया थाना कांड संख्या 7726 दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ किया गया। अनुसंधान के क्रम में कुछ अपराध कर्मियों को गुप्त सूचना के आधार पर एक अपराधी मुकेश उर्फ भुट्टी नट को पकड़ा गया, जिनसे पूछताछ करने पर घटना संबंधी बात को स्वीकार किए, घटनाकारित करने संबंधी बात को स्वीकार किए, जिसके निशानदेही पर जामो बाजार से घटना में लूटी गई सामानों को बरामद किया गया। इस घटना को कारित करने में उसी गांव के कुछ अपराधी का हाथ है, साथ ही इस घटना में शामिल अन्य अभियुक्तों के विरुद्ध छापामारी किया जा रहा है एवं गिरफ्तार अभियुक्तों को माननीय न्यायालय में अग्रसारित किया जा रहा है।
0: सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया समाधान समारोह का आयोजन हो रहा है, इसके लिए स्पेशल लोक अदालत का भी आयोजन गोपालगंज में होगा। बताया जा रहा है कि पार्टिसिपेटिव जस्टिस और डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ जस्टिस के विजन को आगे बढ़ाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 21 अप्रैल 2026 से सुप्रीम कोर्ट एक्शन फॉर मेडिएटेड एडजुडिकेशन एंड डिस्प्यूट्स हार्मोनाइजेशन अक्रॉस नेशन समाधान समारोह आयोजित कर रहा है। इसको लेकर 21, 22 और 23 अगस्त 2026 को एक स्पेशल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। बताया जा रहा है कि इस स्पेशल लोक अदालत का मकसद सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के सामने पेंडिंग मामलों का सहमति आधारित रिजोल्यूशन मैकेनिज्म के जरिए आपसी सहमति से निपटारा करना है। इसके लिए सभी वकीलों लिटिगेट्स और स्टेक होल्डर्स से रिक्वेस्ट किया गया है कि वह पहल के तहत विवादों के असरदार समाधान में एक्टिव रूप से भाग लें और योगदान दें। पार्टियां अपने झगड़ों को सुलझाने के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर फिजिकली या वर्चुअली दोनों तरह से भी आ सकती हैं। इसके लिए गूगल पर जाकर फॉर्म भरकर अपनी रिक्वेस्ट सबमिट करना है और आप सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग मामलों का भी इस लोक अदालत के माध्यम से निपटारा करवा सकते हैं। पुलिस अधीक्षक विनय तिवारी ने आज अपने कार्यालय पर जनता दरबार के माध्यम से लोगों की समस्याओं को सुना, इसमें कई मामलों का त्वरित समाधान भी किया गया। इधर न्यायालय के आदेश पर मीरगंज के थानाध्यक्ष दुर्गानंद मिश्रा के

0: दोनों बाइक को कब्जे में लेकर मामले की जांच भी शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि तेज रफ्तार और लापरवाही से वाहन चलाने की वजह से आए दिन हादसे हो रहे हैं। प्रशासन भी लोगों से अपील कर रहा है कि लोग सड़क पर वाहन चलाते समय सावधानी से गाड़ी चलाएं और तेज गाड़ी न चलाएं। इस हादसे के बाद दोनों ही घायलों के परिवार में लोग परेशान हैं और फिलहाल चारों की जान बचाने के लिए परिजन भी डॉक्टरों के पास दौड़ रहे हैं। बैकुंठपुर थाना क्षेत्र में एक तेज रफ्तार मोटरसाइकिल दूसरी मोटरसाइकिल से टकरा गई, जिसमें चार लोग गंभीर रूप से जख्मी हैं। मामला हमीदपुर मोड़ के पास का बताया जा रहा है। दो बाइक की आमने सामने हुई इस जोरदार टक्कर में दोनों बाइक बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई और सड़क पर अफरा तफरी मच गया। मौके पर पहुंचे लोगों की भीड़ ने किसी तरह पुलिस के सहयोग से सभी को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां सबका इलाज चल रहा है। सिधौलिया थाना की पुलिस ने अवैध शराब के विरुद्ध अभियान चलाते हुए ग्राम हसनपुर सारण तटबंध के पास छापेमारी की और 50 लीटर देशी चुलाई शराब को जब्त किया गया। एक आरोपी दिलीप सैनी उर्फ खबरी को गिरफ्तार किया गया है, जो लखीचंद सैनी का पुत्र बताया जा रहा है और सलेमपुर मलाही टोला का निवासी है। इधर कमला राय कॉलेज में उर्दू विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर पर छात्राओं को प्रताड़ित करने का गंभीर आरोप लगा है, जिसको लेकर जेपी विश्वविद्यालय से एक डेलीगेशन आज कमला राय कॉलेज में पहुंचा था और वहां इसकी जांच की गई है और जांच के बाद इसमें आवश्यक और उचित कार्रवाई का आश्वासन भी कॉलेज प्रबंधन की तरफ से दिया गया है। हालांकि छात्र छात्राओं में इस तरह की जानकारी आने के बाद आक्रोश देखा जा रहा है। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 34 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। मिथिलेश तिवारी और सुनील कुमार को मंत्री बनाए जाने के बाद समर्थकों में उत्साह, जगह जगह लोगों ने किया जोरदार स्वागत। करोड़ों की लागत से बना पंचायत सरकार भवन वर्षों से पड़ा है वीरान। सिधवलिया डकैती कांड में दो आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग मामलों को लेकर लग रहा है विशेष लोक अदालत। और पुलिस अधीक्षक ने कार्यालय में सुनी जन फरियाद। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: घर पर बैठे बेरोजगार युवाओं के लिए अब इंतजार नहीं, एक सुनहरा मौका आपका इंतजार कर रहा है।
2: छत्रपति शिवाजी महाराज फायर एंड सेफ्टी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गोपालगंज लाया है आपके लिए शानदार करियर बनाने का अवसर।
1: अगर आप 10+2 डिप्लोमा या ग्रेजुएट पास है तो बनिए एक प्रोफेशनल सेफ्टी ऑफिसर और पाए अपने भविष्य को एक नई दिशा।
2: यहां उपलब्ध है 1 साल का सेफ्टी डिप्लोमा ADIS, नेबोश और IOSH, PG डिप्लोमा इन एनवायरमेंट जैसे प्रोफेशनल कोर्स।
1: और सबसे खास बात, 100% जॉब गारंटी। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
2: मोबाइल नंबर 8511168095 और बात करें अमरेंद्र सर से।
1: पता छत्रपति शिवाजी महाराज फायर एंड सेफ्टी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बंजारी रोड HP पेट्रोल पंप के सामने गोपालगंज।
3: अरे ए चाची, जब आँख से साफ नहीं खेलो को तो रोड पर लड़खड़ा के कहे चलता नहीं, और तहार मोतियाबिंद का ऑपरेशन होके वाला रहनु ओकर का भइल।
4: अरे ए बबू, परेशानी तो बा लेकिन ऑपरेशन से हमके बहुते डर लागेला। सुनले बानी की आँख में सुई लागेला, काफी दर्द होत होइनु।
3: अरे बाग चाची, तू कावना दुनिया में बारू। अब अपना गोपालगंज में चेन्नई के डॉक्टर एस हैदर जी आ गइल बनी। यहाँ के आँख में बिना सुई लगौले, बिना चीर फाड़ कइले और बिना टाका लगौले फेको मशीन के द्वारा आँख के ऑपरेशन करत नी। तो तू इनके लगे काहे न कुचल जा, आँख में कोनो तरह के दर्द भी ना हुई और ऑपरेशन भी हो जाए।
5: आंखों से जुड़ी बीमारियों के सफल इलाज के लिए आज ही मिले सिवान के सुपरसिद्ध डॉक्टर इसराइल की सुपुत्री डॉक्टर एस हैदर से। साथ ही हर शुक्रवार को मिले ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट डॉक्टर MA अकबर जी से। ध्यान रहे, चेन्नई आई केयर अब चला गया है कमला राय कॉलेज रोड यमहा शोरूम के सामने राजसन होटल के पश्चिम गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 9903569015 पे।
6: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
2: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं।
7: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादूपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
2: ध्यान दें, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी या याददाश्त की कमी, पेट रोग।

0: गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीठ की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलता पूर्वक किया जा रहा है।
1: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99 554 97 644।
2: ठक ठक
3: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
4: अच्छा मिला ही नहीं
3: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
5: जी हाँ, कमल श्री, याद रखें सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
3: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
5: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
6: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
5: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
6: सुनो दिल से।

0: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
1: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
2: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
3: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
2: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम RR रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
4: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
5: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
6: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
7: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।
8: अरे, स्टीयरिंग हिल क्यों रहा है और ये टायर जल्दी घिस क्यों रहे हैं?
7: अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा तो समझ जाइए, टायर को चाहिए अलाइनमेंट और बैलेंसिंग।
6: और इसके लिए जिले में भरोसे का एक ही नाम है, मिश्रा टायर्स, अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग।
7: यहाँ होता है कंप्यूटराइज्ड व्हील अलाइनमेंट, व्हील बैलेंसिंग, 3D अलाइनमेंट, डिजिटल बैलेंसिंग, सब कुछ आधुनिक मशीनों से।
6: साथ ही सभी कंपनी के टायर ट्यूब बेहद किफायती दाम पर उपलब्ध हैं।
7: एक बार सेवा का मौका जरूर दें, विजिट करें मिश्रा टायर्स कंप्यूटराइज्ड अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग, शिव मंदिर पोखरा के सामने, NH 27 बंजारी गोपालगंज।
6: रोड सपोर्ट या जानकारी के लिए कॉल करें 8825214946।
2: आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो, रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

0: सुनिए,
1: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
2: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
1: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
2: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
3: इतना परेशान क्यों दिख रही हो मेघा?
4: आसपास हर जगह चाचा जी का इलाज करा लिया, अब लगता है उन्हें दिल्ली लेकर ही जाना पड़ेगा।
3: अरे अपने गोपालगंज में गोरखपुर, पटना और दिल्ली जैसे बेहतर मेडिकल सुविधाओं के साथ खुल गया है एम्स के पूर्व चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक रंजन जी के देखरेख में जिले का पहला वेंटिलेटर युक्त सक्षम हॉस्पिटल, जहां पर 24 घंटे आईसीयू इमरजेंसी सेवा, एक्सपर्ट मेडिकल टीम द्वारा विभिन्न रोग जैसे हृदय रोग, शुगर, दमा, नस रोग, लकवा और पेट से जुड़ी गंभीर बीमारियों का अत्याधुनिक मशीनों के द्वारा सफलतापूर्वक इलाज किया जा रहा है।
4: आज विजिट करें सक्षम हॉस्पिटल, कमला राय कॉलेज रोड, इंडियन गैस एजेंसी के बगल में, गांधी टेक्निकल कॉलेज के सामने, डॉक्टर कॉलोनी, गोपालगंज। कॉल करें 7050061444 या 7870331444।

0: चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।
1: सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता, रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है, सुनो दिल से।

0: अरे मुन्नी तुम आ गई, चल मेरे कान का झुमका ला।
1: ओ माय गॉड, आज फिर से भूल गई।
0: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
1: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
2: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी,
1: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
2: तो अगर आपको कुछ अच्छा कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड, एक्सिस बैंक के सामने, तड़कुल के पास, गोपालगंज।
1: याद रहे, शादी विवाह, जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है।
2: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।
3: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे, और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
4: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
3: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
4: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटो कॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99399-66999।
5: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
6: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
5: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
6: पता जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
7: एडमिशन फ्री, एडमिशन फ्री।
5: कहाँ पर?
7: अरे CBSE न्यू दिल्ली से एफिलिएटेड ज्ञानदा इंटरनेशनल स्कूल, चवही खास, गोपालगंज,
5: जहाँ मिलता है क्वालिटी एजुकेशन, स्मार्ट लर्निंग एनवायरनमेंट, एक्सलेंट एकेडमिक गाइडेंस और गोपालगंज के टॉप परफॉर्मर्स तैयार करने की परंपरा।
7: यहाँ नर्सरी से 12th तक आधुनिक और रिजल्ट ओरिएंटेड एजुकेशन सिस्टम। फिलहाल नर्सरी से 9th और 11th क्लास में एडमिशन शुरू है।
5: तो देर ना करें, ऑफिस टाइम सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
7: ज्ञानदा इंटरनेशनल स्कूल, पता चवही खास, NH 27, गोपालगंज। कॉन्टैक्ट 9852636537 और 9835569650।
8: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपने भाषा की पहचान, रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।

0: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
1: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
2: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
1: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
2: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
1: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
2: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनकी विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
1: संपर्क करें 84710-3992 या 9765-6750।
3: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
4: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
3: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
4: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
3: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
5: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
6: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
5: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
6: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
5: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
6: जानकारी है तो कॉल करे 6052-62112 पे।
7: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
8: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला, गोरखपुर।
7: आज ही संपर्क करें 7388-89470 या 9198-88-6973।
1: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
2: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
1: श्री गोपाल मोटर्स, गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस सिर्फ 86,168 रुपए में, HF डिलक्स सिर्फ 75,405 रुपए में, ग्लैमर एक्स सिर्फ 97,456 रुपए में, एक्सट्रीम 125R सिर्फ 110,881 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
2: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
1: या अभी कॉल कीजिए 9289-22567 या 97-714-86-164।
9: ध्वनि के तरंग 90.4 पर आप जिले की आवाज रेडियो रिमझिम को सुन रहे हैं।

0: आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं, श्रृंगार वाटिका।
1: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज, या कॉल करें 8604348652 पे।
2: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है, रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
3: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
4: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल,
5: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
4: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
5: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
4: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन, और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
5: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड, पैथोलॉजी लैब, फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
4: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा, NH 27 गोपालगंज।
5: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100, या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
6: 21 वर्षों से सिर्फ पढ़ाई नहीं, भविष्य गढ़ने की पहचान है एक नाम, सेंट जॉन स्कूल सासा मूसा गोपालगंज, शाखा राजापुर बाजार गोपालगंज।
7: और अब 30 अप्रैल तक एडमिशन बिल्कुल फ्री।
6: CBSE पैटर्न पर आधारित शिक्षा, नर्सरी से क्लास 10वीं तक, कंप्यूटर एजुकेशन, बस फैसिलिटी, रेगुलर टेस्ट और पेरेंट मीटिंग्स, एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ सेफ और पीसफुल कैंपस।
7: सेंट जॉन स्कूल में बच्चों को सिर्फ सिखाया नहीं जाता, उन्हें तराशा जाता है।
6: तो देर मत कीजिए, 30 अप्रैल तक फ्री एडमिशन का लाभ उठाइए।
7: सेंट जॉन स्कूल सासा मूसा गोपालगंज, कॉल अस 9939721308।
8: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।
9: एक

0: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: टॉप रामू काका, हई इलेक्ट्रिक के इतना सारा सामान कहाँ से खरीद के ले आओ तनी?
2: ये सब सामान संतोष इलेक्ट्रॉनिक से लेके आओ तनी बाबू।
1: अरे ये सामान तो एक नंबर बुझाता और काफी डिजाइनदार भी बा।
2: अरे हाँ बाबू, अपना गोपालगंज में इतना अच्छा दुकान कहाँ बा? संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स में सस्ता में एक नंबर के सामान मिलेला।
1: हम तो अपना नौका घरवा खातिर इलेक्ट्रॉनिक के सारा सामान दिल्ली से लेके आवे के सोचत रहनी, लेकिन हम काले संतोष इलेक्ट्रॉनिक से जाके अपन पूरा सामान ले आए।
2: अरे हाँ बबुआ, संतोष इलेक्ट्रॉनिक से ले आया, दिल्ली जाके पैसा बर्बाद कैले से का फायदा?
3: संतोष इलेक्ट्रॉनिक हाउस, जहाँ सस्ते दामों में बेस्ट क्वालिटी के इलेक्ट्रिक के सारे सामान मिलते हैं।
1: हमारा पता है चिराई घर पेट्रोल पंप के सामने, संतोष फर्नीचर के नीचे, कॉलेज रोड, गोपालगंज।
4: अगर आप चाहते हैं अपने बच्चों के लिए स्मार्ट एजुकेशन, सुरक्षित एवं संस्कार के साथ शिक्षा, साफ सुथरा माहौल, एसी हॉस्टल की उत्तम व्यवस्था और अपने बच्चों का उज्जवल भविष्य, तो गोपालगंज में एक ही नाम,
5: बाबू भगवान सहाय सेंट्रल स्कूल। सीबीएसई पैटर्न पर आधारित एक कंप्लीट को एजुकेशनल स्कूल, क्लास 10th तक। सेशन 2026 से 27 के लिए प्ले ग्रुप से लेकर कक्षा 8वीं तक एडमिशन ओपन।
4: यहां मिलती है वेल क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी, स्मार्ट क्लासेस, मॉडर्न फैसिलिटीज, कंप्यूटर क्लासेस विद लैब और इंग्लिश स्पोकन क्लासेस।
5: कमजोर छात्रों के लिए एक्स्ट्रा क्लासेस की विशेष व्यवस्था, नीट एंड क्लीन एटमॉस्फेयर और सीसीटीवी कैमरा की सुविधा,
4: बस एवं आवासीय हॉस्टल सुविधा उपलब्ध, साथ ही सैनिक स्कूल, नवोदय, नेतरहाट और अलीगढ़ जामिया की तैयारी की सुविधा 100% सफलता की गारंटी के साथ। पता, हरखुआ भगवान नगर, वार्ड नंबर 24, विष्णु शुगर मिल के पश्चिम, गोपालगंज।
5: संपर्क करें 8002221969 या 9117018350।
6: अपने जिले के मशहूर डॉक्टर जे शरण, एमडी फिजिशियन, अब बैठ रहे हैं सुबह 10 बजे से आशा मेडिको जनता सिनेमा रोड, गोपालगंज। और डॉक्टर जे शरण जी शाम 5 बजे से 7 बजे तक बैठ रहे हैं अपने निवास स्थान शबनम होटल के पीछे, आजाद नगर, गोपालगंज।
7: डॉक्टर साहब के यहाँ पर्ची का नंबर मोबाइल से भी लगाया जा सकता है।
8: आशा मेडिको में किसी भी प्रकार की लिखी दवाएं मिलती है, मोबाइल से दवा का ऑर्डर भी किया जा सकता है। मोबाइल नंबर है 7555467666।
1: एक सूचना, डॉक्टर साहब रविवार को भी दोपहर 12 से 3 बजे तक बैठते हैं।
9: आप सुन रहे हैं जिले की आवाज, रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो,

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। और अब मुख्य समाचार। शुभेंदु अधिकारी आज सुबह पश्चिम बंगाल के पहले भाजपा मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। तमिलनाडु में सरकार गठन को लेकर अनिश्चितता बरकरार। लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणी भारत के नए प्रमुख रक्षा अध्यक्ष नियुक्त। अगले दो दिन में केरलम, दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु और पुदुचेरी में तेज बारिश का पूर्वानुमान। और फुटबॉल में भारत ने एएफसी अंडर 17 महिला एशिया कप के क्वार्टर फाइनल में पहली बार प्रवेश कर इतिहास रचा। अब समाचार विस्तार से। शुभेंदु अधिकारी आज पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि शपथ ग्रहण समारोह कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में होगा।
1: राज्य के राजनीतिक इतिहास में पहली बार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार औपचारिक रूप से पदभार ग्रहण करेगी। शपथ ग्रहण समारोह सुबह 10 बजे शुरू होने वाला है और इसमें लाखों पार्टी समर्थकों, राजनीतिक नेताओं और देशभर से आए गणमान्य व्यक्तियों के शामिल होने का उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित कई केंद्रीय मंत्री और भाजपा शासित राज्यों का मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। राज्यपाल आरएन रवि मुख्यमंत्री और नए मंत्रिमंडल के सदस्यों को पद और गोपनीयता का शपथ दिलाएंगे। नवनिर्वाचित संसदीय दल के नेता शुभेंदु अधिकारी ने घोषणा की है कि एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश के अध्यक्षता में आयोग राज्य में संस्थागत भ्रष्टाचार की जांच करेगा। संदीप दासगुप्ता, आकाशवाणी न्यूज, कोलकाता।
0: इससे पहले कल श्री शुभेंदु अधिकारी को राज्य भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया। विधायक दल की बैठक कोलकाता में गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार देश की सीमाओं को सुरक्षित करेगी और राष्ट्रीय सुरक्षा की सबसे बड़ी कमी को दूर करेगी। कोलकाता में कल नव निर्वाचित भाजपा विधायकों को संबोधित करते हुए श्री अमित शाह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की जीत संगठन के विस्तार या विचारधारा की पुष्टि के लिए नहीं है, बल्कि देश सुरक्षा को मजबूत करने के लिए है।
2: घुसपैठिया मुक्त बंगाल, सुरक्षित महिला और सुरक्षित जनता, ये हमारा वादा है। हमने बंगाल के आर्ष द्रष्टाओं ने जो सोनार बांग्ला का संकल्प और स्वप्न देखा है, हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम सोनार बांग्ला को जमीन पर उतारने के लिए अपना सबसे अच्छा परफॉर्मेंस बंगाल की जनता को दें।
0: गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि लंबे समय से ठप पड़ी विकास योजनाओं को भाजपा सरकार फिर से शुरू करके पश्चिम बंगाल की जनता की सभी आकांक्षाओं को पूरा करने का काम करेगी।
2: आधुनिक खेती बंगाल तक पहुंची ही नहीं है, इंडस्ट्रीज बंगाल से भाग गई है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने का विजन ही नहीं है और महिला सुरक्षा और नागरिक सुरक्षा पाताल तक नीचे पहुंच गई। ये सारे मुद्दे भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र के अंदर लिए हैं और मुझे विश्वास है कि भाजपा सरकार मोदी जी के नेतृत्व में ये डबल इंजन की सरकार बनकर दिन दूनी रात चौगुनी बंगाल को प्रगति की दिशा में ले जाएगी।
0: तमिलनाडु में तमिलगा वेत्री कड़गम टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय के नेतृत्व में सरकार गठन को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। आईयूएमएल ने टीवी के को सरकार बनाने में समर्थन देने वाली खबरों का खंडन किया है। खबरों के अनुसार आज शपथ ग्रहण समारोह नहीं होगा। इससे पहले टीवी के ने दावा किया था कि विजय सरकार बनाने के लिए पूरी तरह तैयार है। प्रोफेसर खादर मोहिदीन के नेतृत्व वाली इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने कहा है कि उनकी पार्टी ने तमिलगा वेत्री कड़गम को समर्थन पत्र नहीं दिया है। एएमएम के पार्टी के नेता टीटीवी दिनाकरन ने राज्यपाल से संपर्क किया और मुन्ना रुकई से निर्वाचित एकमात्र विधायक एस कामराज का समर्थन पत्र प्रस्तुत किया। इसमें एआईएडीएमके के महासचिव एडप्पडी पलनीसामी को मुख्यमंत्री बनाने की मांग की गई थी। उधर केरलम में भी नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस रविवार तक नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि विधायक दल के नेता के बारे में राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को होगा। पार्टी विधायक दल की बैठक कल होगी। सरकार ने लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमण्यम को अगला प्रमुख रक्षा अध्यक्ष सीडीएस नियुक्त किया है। वे जनरल अनिल चौहान का स्थान लेंगे, जिनका कार्यकाल 30 मई को समाप्त हो रहा है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि पदभार ग्रहण करने की तिथि से वे सैन्य मामलों के विभाग के सचिव के रूप में भी कार्य करेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल सुब्रमण्यम वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय में सैन्य सलाहकार के रूप में कार्यरत हैं। इससे पहले वे सेना के उप प्रमुख और केंद्रीय कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में कार्य कर चुके हैं। सरकार ने वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन को नौसेना प्रमुख नियुक्त किया है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि वाइस एडमिरल स्वामीनाथन वर्तमान में पश्चिमी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के पद पर कार्यरत हैं। उन्हें भारतीय नौसेना में लगभग 4 दशकों की विशिष्ट सेवा का अनुभव है। वे एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी का स्थान लेंगे, जो 31 मई को सेवानिवृत्त हो रही हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने नई दिल्ली में एलवीएमएच मोइट हेनेसी लुई विटो एसीई के अंतर्राष्ट्रीय संबंध निदेशक विसेंट स्टॉक से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने बताया कि चर्चा का मुख्य विषय निर्यात बढ़ाने के लिए भारत में विनिर्माण को मजबूत करना, स्थानीय प्रतिभाओं में निवेश करना, भविष्य के सहयोगों के माध्यम से भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देना और संतुलित तथा पारस्परिक रूप से लाभकारी व्यापार साझेदारी को आगे बढ़ाना था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने 16वें भारत यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन के परिणामों की सराहना करते हुए इसे रणनीतिक साझेदारी के लिए एक निर्णायक मोड़ बताया है। वित्त मंत्री कल नई दिल्ली में यूरोप दिवस समारोह को संबोधित कर रही थी। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि शिखर सम्मेलन के परिणाम दोनों देशों के संबंधों में परिवर्तनकारी चरण का संकेत देते हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस और यूक्रेन के बीच 3 दिन के युद्ध विराम की घोषणा की है। युद्ध विराम आज से 11 मई तक रहेगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने बताया कि यह प्रस्ताव उन्होंने स्वयं रखा था और इसमें दोनों पक्षों के 1,000 कैदियों का आदान प्रदान भी शामिल होगा। यह युद्ध विराम रूस के विजय दिवस के मौके पर हो रहा है, जो हर साल 9 मई को मनाया जाता है। यह दिन द्वितीय विश्व युद्ध में नाजी जर्मनी पर सोवियत संघ की जीत के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ईरान ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अमेरिका द्वारा समर्थित मसौदा प्रस्ताव को त्रुटिपूर्ण और राजनीतिक रूप से प्रेरित बताते हुए खंडन कर दिया है। यह प्रस्ताव होर्मुज जल डमरू मध्य में जहाजों की सुरक्षा से संबंधित था। एक रिपोर्ट।
5: ईरान ने इसे अपने आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप और अमरीकी हितों को साधने वाला कदम करार दिया है। ईरान ने संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों से प्रस्तावित प्रस्ताव का समर्थन न करने की अपील की है। अमरीका, बहरीन, सऊदी अरब, यूएई, कुवैत और कतर द्वारा समर्थित इस मसौदा प्रस्ताव का उद्देश्य होर्मुज जलडमरू मध्य से आवागमन सुगम बनाना है। अमेरिका ने ईरान पर वाणिज्यिक जलमार्ग को रोकने और समुद्री यातायात को अस्थिर करने का आरोप लगाया है। इस बीच ईरान की सेना ने कहा है कि अमेरिकी रक्षा बलों ने यूएई के फुजरा बंदरगाह के पास एक ईरानी तेल टैंकर और एक अन्य जहाज को निशाना बनाया। पश्चिमी तेहरान के ऊपर ईरानी वायु रक्षा प्रणालियां भी सक्रिय थीं। वहीं अमरीकी सेना ने कहा कि होर्मुज जलडमरू मध्य में उसकी नौसेना को ईरानी बलों द्वारा मिसाइल, ड्रोन और तेज नावों से हमलों का सामना करना पड़ रहा है।

0: सोमनाथ अमृत पर्व का आधिकारिक रूप से कल से शुभारंभ हो गया है, जो मंदिर के पुनर्निर्माण की 75वीं वर्षगांठ का प्रतीक है। 5 दिवसीय इस उत्सव ने मंदिर परिसर को वैदिक मंत्रों और दिव्य ऊर्जा के केंद्र में बदल दिया है, जो देश भर से श्रद्धालुओं को आकर्षित कर रहा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: सोमनाथ अमृत पर्व के पावन अवसर पर कल से पाठात्मक अतिरुद्र का विधिवत प्रारंभ किया गया, जिसमें अगले 5 दिनों तक निरंतर रुद्र पाठ किया जाएगा। मंदिर में आज से 3 दिवसीय होमात्मक महारुद्र यज्ञ का भी आयोजन होगा, जिसमें लगभग 1.25 लाख आहुतियां अर्पित की जाएगी। इस महायज्ञ का मूल उद्देश्य वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों में शांति की स्थापना और मानव कल्याण सुनिश्चित करना है। अमृत पर्व का मुख्य आकर्षण 11 मई को होगा, जब मंदिर के शिखर पर 11 पवित्र तीर्थों के जल से कुंभाभिषेक किया जाएगा। इसे ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बनने के लिए देश के कोने कोने से श्रद्धालुओं का सैलाब सोमनाथ उमड़ पड़ा है। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: आकाशवाणी समाचार के विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्म के अंतर्गत अगली कड़ी में हम भारत में रेडियो प्रसारण के क्षेत्र में अग्रणी रहे डॉ राममूर्ति श्रीधर से बातचीत करेंगे। उन्हें प्रतिष्ठित पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा।
2: In 1991 to 1993, exactly 35 years back, which I conceived and designed and did it, called Manav Ka Vikas or Human Evolution, which was 144 episodes broadcast from 200 radio stations. Today, following that model example, 550 radio stations are functioning in this country. Content writers, script writers, creative people, AI is going to help you.
0: ये कार्यक्रम आज सुबह 9:10 पर आकाशवाणी गोल्ड पर प्रसारित किया जाएगा। राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण आज देशभर में इस वर्ष की दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन करेगा। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में प्राधिकरण के सदस्य सचिव संजीव पांडे ने बताया कि इस पहल का उद्देश्य सहभागी और जन केन्द्रित तंत्रों के माध्यम से विवादों का सौहार्दपूर्ण निपटारा करना और अदालतों पर बोझ कम करना है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन के लिए केरला, माहे, लक्षद्वीप, दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु, पुद्दुचेरी और कराईकल में तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की है। इस बीच बिहार में बिजली गिरने और तूफान से संबंधित अलग अलग घटनाओं में 7 लोगों की मृत्यु हो गई। खेलों में भारत की महिला फुटबॉल टीम एएफसी अंडर 17 एशिया कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। भारत ने 2005 के बाद इस टूर्नामेंट में अपनी पहली जीत दर्ज की। वहीं आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने कल रात दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला गुजरात टाइटन्स से होगा। ये मैच जयपुर में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है मुकेश कुमार बल।
3: धन्यवाद फरहत। सभी समाचार पत्रों ने आज पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी के भाजपा के विधायक दल का नेता चुने जाने की खबर प्रकाशित की है। दैनिक जागरण लिखता है, बंगाल में सत्ता के शुभेंदु अधिकारी, नए अध्याय की शुरुआत, भाजपा के पहले मुख्यमंत्री के रूप में आज लेंगे शपथ। लोक सत्ता ने तमिलनाडु में सत्ता का संग्राम नहीं थमने पर खबर प्रकाशित की है। विजय के शपथ ग्रहण पर फिर लगा ग्रहण, राज्य में सरकार पर फिर सस्पेंस, सियासत बदली। कांग्रेस के शीर्ष कमान पर अब केरलम के अगले मुख्यमंत्री को चुनने की जिम्मेदारी, राज्य में सरकार गठन को लेकर तैयारियां तेज, पर्यवेक्षक ने खड़गे को सौंपी रिपोर्ट, दिल्ली में होगा फैसला, देशबंधु की सुर्खी है। गर्म होते हिमालय में ऊंचाई पर आवास बना रहे जानवर, हिन्दुस्तान की खबर है। पत्र लिखता है, जलवायु परिवर्तन की वजह से निचले इलाकों में रहने वाला हिमालयन बीजल पहली बार 3,500 मीटर की ऊंचाई पर नजर आया। अमर उजाला ने अपने संपादकीय पन्ने पर एआई समय शीर्षक से लेख प्रकाशित किया है। पत्र लिखता है, चैटबॉट है नई पीढ़ी के असली दोस्त। बेशक एआई चैटबॉट्स ने युवाओं की अभिव्यक्तियों का नया मंच दिया है, लेकिन इसके कुछ गंभीर खतरे सामने आने लगे हैं। जान जमा पूंजी छीन रहा गेमिंग ऐप का जुनून, ऑनलाइन गेमिंग में 2025 में लोगों ने 20,000 करोड़ रूपये गंवाये, हिन्दुस्तान की खबर है। नवभारत टाइम्स सहित सभी समाचार पत्रों ने सोमनाथ मंदिर के पुनरुत्थान होने का समाचार भी प्रकाशित किया है। नमामि गंगे की डॉल्फिन एम्बुलेंस ने 4 महीने में 8 डॉल्फिन को बचाया, जनसत्ता ने अभियान शीर्षक से यह खबर प्रकाशित की है।
0: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। शुभेंदु अधिकारी आज सुबह पश्चिम बंगाल के पहले भाजपा मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। तमिलनाडु में सरकार गठन को लेकर अनिश्चितता बरकरार, लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणी भारत के नए प्रमुख रक्षा अध्यक्ष नियुक्त। अगले 2 दिन में केरलम, दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु और पुद्दुचेरी में तेज बारिश का पूर्वानुमान। और फुटबॉल में भारत ने एएफसी अंडर 17

0: टीम महिला एशियाई कप के क्वार्टर फाइनल में पहली बार प्रवेश कर इतिहास रचा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: समाचार के बाद आप सभी का स्वागत है रेडियो रमजिम 90.4 एफएम पर। आइए सुनते हैं अब आगे का प्रसारण।
2: एडमिशन फ्री
3: कहाँ पर?
2: अरे CBSE न्यू दिल्ली से एफिलिएटेड ज्ञानदा इंटरनेशनल स्कूल चवही खास गोपालगंज,
3: जहाँ मिलता है क्वालिटी एजुकेशन, स्मार्ट लर्निंग एनवायरनमेंट, एक्सलेंट एकेडमिक गाइडेंस और गोपालगंज के टॉप परफॉर्मर्स तैयार करने की परंपरा।
2: यहाँ नर्सरी से 12th तक आधुनिक और रिजल्ट ओरिएंटेड एजुकेशन सिस्टम। फिलहाल नर्सरी से 9th और 11th क्लास में एडमिशन शुरू है,
3: तो देर ना करें। ऑफिस टाइम सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
2: ज्ञानदा इंटरनेशनल स्कूल, पता चवही खास NH 27 गोपालगंज। कॉन्टैक्ट 9852636537 और 9835565965।
4: अगर आपका फर्नीचर डोलता है और बोलता है तो एक्सचेंज तो मांगता है।
5: संतोष फर्नीचर लेकर आ गए हैं ग्रेट एक्सचेंज ऑफर।
6: ग्रेट एक्सचेंज ऑफर, अपने घर के पुराने सोफा और डाइनिंग को ले आएं और नए सोफा तथा डाइनिंग को ले जाएं और बनाएं अपने घर को सुंदर तथा आकर्षक।
5: आज ही विजिट करें संतोष फर्नीचर, चिराईगढ़ पेट्रोल पंप के सामने, कॉलेज रोड, गोपालगंज। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 82 101 87 952। नियम और शर्तें लागू।
7: जिले का गौरव संतोष मेडिकल हॉल, घोष मोड़, दरगाह रोड, गोपालगंज।
8: गोपालगंज जिले का प्रतिष्ठित अंग्रेजी दवा की दुकान संतोष मेडिकल हॉल।
9: हमारे यहाँ भारत के प्रसिद्ध डॉक्टरों द्वारा लिखी गई सभी प्रकार की अंग्रेजी दवाएं उपलब्ध हैं, जैसे गोरखपुर, पटना, कलकत्ता, लखनऊ, बनारस, चेन्नई और मुंबई के डॉक्टरों द्वारा लिखी गई दवाइयाँ भी मिलती हैं।
10: एक सूचना, संतोष मेडिकल हॉल अब चला गया है कॉलेज रोड चिराई घर के पहले गोपालगंज। संपर्क सूत्र है 62042434003 62042434003।
11: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
12: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
11: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलता पूर्वक किया है।
12: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलता पूर्वक किया जा रहा है।
11: आज ही आएं डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99554-97644।
13: 21 वर्षों से सिर्फ पढ़ाई नहीं, भविष्य गढ़ने की पहचान है एक नाम, सेंट जॉन स्कूल, सासा मूसा, गोपालगंज। शाखा राजापुर बाजार, गोपालगंज।
3: और अब 30 अप्रैल तक एडमिशन बिल्कुल फ्री।
13: CBSE पैटर्न पर आधारित शिक्षा, नर्सरी से क्लास 10वीं तक, कंप्यूटर एजुकेशन, बस फैसिलिटी, रेगुलर टेस्ट और पेरेंट मीटिंग्स, एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ सेफ और पीसफुल कैंपस।
3: सेंट जॉन स्कूल में बच्चों को सिर्फ सिखाया नहीं जाता, उन्हें तराश आ जाता है।
13: तो देर मत कीजिए, 30 अप्रैल तक फ्री एडमिशन का लाभ उठाइए।
3: सेंट जॉन स्कूल, सासा मूसा, गोपालगंज। कॉल अस 9939721308।

0: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
1: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
0: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
1: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
0: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
2: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
3: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
2: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
3: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
2: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
3: जानकारी है तो कॉल करें 6052 62112 पे।
4: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
5: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
4: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
5: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
4: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
5: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
4: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
5: कॉल नाउ 9656 59536 या 9656 57902। अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
4: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट, KGMU, लखनऊ।
5: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
4: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
5: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करे।
4: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
5: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
6: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है।
5: अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं, उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
4: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से।
5: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें, आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय 10:00 से 2:00 तक।
4: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512 11001।
7: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
8: अरे तो उसे डांटती क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
9: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
10: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
9: आज ही आए JB हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
7: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91 626 64 498 पे।

0: जालिमा।
1: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं, श्रृंगार वाटिका।
2: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज, या कॉल करे 86034 48652 पे।
3: तो भौजी, आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नू सारा मार्केट, देख लेनी नू सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
4: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है, पर कोनो जचल है ना।
3: ई बात बा, तो ऐसा करी कि अब चली सीधे हमारा साथे कमल श्री में, महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री। कमल श्री, कमल श्री, सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
5: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।
1: जो लोग डायबिटीज से परेशान हैं, वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलतापूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य एसपी त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज जैसे
2: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टेबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, टीका, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंता और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस तथा
1: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलतापूर्वक करते हैं।
3: वैद्य एसपी त्यागी जी से मिलने का पता
1: प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में।
3: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 99554943
1: और 9097160602।
4: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं, दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
5: और दुल्हन का लहंगा, साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ। इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
6: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा,
7: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
8: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
6: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा, साड़ी, सूट पीस, हर डिजाइन, हर रंग, हर बजट में।
5: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
6: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
8: कॉल करें 87 894 18744।

0: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
1: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
0: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
1: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
0: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
2: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
3: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
2: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
3: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
2: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
3: जानकारी है तो कॉल करें 6205-62112 पे।
4: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
3: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
2: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
5: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
2: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम आरआर रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
6: इतना परेशान क्यों दिख रही हो मेघा?
7: आसपास हर जगह चाचा जी का इलाज करा लिया, अब लगता है उन्हें दिल्ली लेकर ही जाना पड़ेगा।
6: अरे, अपने गोपालगंज में गोरखपुर, पटना और दिल्ली जैसे बेहतर मेडिकल सुविधाओं के साथ खुल गया है एम्स के पूर्व चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक रंजन जी के देखरेख में जिले का पहला वेंटिलेटर युक्त सक्षम हॉस्पिटल, जहां पर 24 घंटे ICU इमरजेंसी सेवा, एक्सपर्ट मेडिकल टीम द्वारा विभिन्न रोग जैसे हृदय रोग, शुगर, दमा, नस रोग, लकवा और पेट से जुड़ी गंभीर बीमारियों का अत्याधुनिक मशीनों के द्वारा सफलतापूर्वक इलाज किया जा रहा है।
7: आज विजिट करें सक्षम हॉस्पिटल, कमला राय कॉलेज रोड, इंडियन गैस एजेंसी के बगल में, गांधी टेक्निकल कॉलेज के सामने, डॉक्टर कॉलोनी, गोपालगंज। कॉल करें 7050061444 या 7870331444।
8: अरे मुन्नी, तुम आ गई, चल मेरे कान का झुमका ला।
9: ओ माय गॉड, आज फिर से भूल गई।
8: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
9: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
2: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी,
9: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
2: तो अगर आपको कुछ अच्छा, कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड, एक्सिस बैंक के सामने, तड़कुल के पास, गोपालगंज।
9: याद रहे, शादी विवाह, जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है।
2: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।

जूही माधुरी दिव्या भारती, इन सबसे भी सुंदर हो तुम हमारी आरती। मंजिल हो तुम, सपना हो तुम, ऊपर वाले की सबसे सुंदर कल्पना हो तुम। अब बस इतना है ये इरादा, तुम्हें चाहेंगे खुद से ज्यादा।

0: अब बेटा बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
1: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
2: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
3: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड गोपालगंज, मोबाइल नंबर 94 3945 651 या 97 0 97 0 6 575।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।
1: ठक ठक।
2: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
3: अच्छा मिला ही नहीं।
2: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें। अब चलिए सीधे कमल श्री में।
3: जी हाँ, कमल श्री। याद रखें, सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
2: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
3: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
4: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
5: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
3: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
6: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
3: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम RR रोड, गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
7: आपका संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 98527-88291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं। नंबर है 98527-88291 या 95238-74088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है। तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।

0: नई योजनाओं को लागू करने और तय लक्ष्य को पूरा करने में जुट जाएं। पटना उच्च न्यायालय समेत प्रदेश की सभी अदालतों में आज किया जा रहा है राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन। ट्रैफिक चालान समेत विभिन्न मामलों का होगा निपटारा। शिक्षा विभाग ने तीसरे और चौथे चरण की सक्षमता परीक्षा में काउंसिलिंग से छूटे शिक्षकों को एक बार फिर काउंसिलिंग का मौका दिया। और मौसम विभाग ने आज प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में आंधी, बारिश और ओलावृष्टि की चेतावनी जारी की। कल आंधी और वज्रपात से जुड़ी अलग अलग घटनाओं में प्रदेश में 7 लोगों की मौत। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सभी नव नियुक्त मंत्रियों से अपने अपने विभागों में नई योजनाओं को लागू करने और संबंधित लक्ष्य को हर हाल में पूरा करने को कहा है। पटना स्थित सचिवालय में मंत्रियों के साथ मंत्रिपरिषद की बैठक में श्री चौधरी ने यह निर्देश दिए। बैठक में विकसित भारत के संकल्प के साथ समृद्ध बिहार के सपने को साकार करने के बिंदुओं पर विचार विमर्श किया गया। इस बैठक में उप मुख्यमंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव, स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार, ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार सहित अन्य विभागों के मंत्री उपस्थित थे। पटना उच्च न्यायालय समेत प्रदेश की सभी अदालतों में आज राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। लोक अदालत में आपसी समझौते के आधार पर विभिन्न प्रकार के दीवानी और कुछ प्रकार के आपराधिक मामलों का निपटारा किया जाएगा। पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश संगम कुमार साहू आज पटना व्यवहार न्यायालय परिसर में आयोजित लोक अदालत का उद्घाटन करेंगे। यहां बैंक ऋण, बिजली वाद, वाहन दुर्घटना बीमा और श्रमवाद जैसे मामले आपसी सहमति के आधार पर निष्पादित किए जाएंगे। इस बार लोक अदालत में ट्रैफिक चालान से जुड़े मामलों की भी सुनवाई होगी। यातायात के अपर पुलिस महानिदेशक सुधांशु कुमार ने पटना में प्रेस वार्ता में बताया कि राज्य के सभी जिलों में आयोजित लोक अदालत में ट्रैफिक चालान संबंधित मामलों का निष्पादन किया जाएगा।
1: इसमें वैसे ई चालान जिनके भुगतान की कार्रवाई 90 दिन से अधिक अवधि व्यतीत हो जाने के बाद भी नहीं की गई है और जिनमें इस हेतु कतिपय मामलों में न्यायालय में अभियोजन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है अथवा नहीं किया गया है, ऐसे सभी मामलों में दिनांक जो 31/3/2026 तक लंबित है उनके निपटान के लिए लोक अदालत से निष्पादित करने की कार्रवाई की जाएगी। इसमें जो भुगतान की प्रक्रिया है वह भी सरल की गई है। इसमें भुगतान नगद या UPI ऑनलाइन के माध्यम से किया जा सकता है। सभी जिलों में जो DSP ट्रैफिक है उनको यह निर्देशित किया गया है कि आप लोक अदालत में अपने जिले अंतर्गत जो हो रहे वहां पर आप उपस्थित रहें अनिवार्य रूप से।
0: ट्रैफिक से जुड़े मामलों की सुनवाई के लिए पटना सहित विभिन्न जिलों में विशेष व्यवस्था की गई है। पटना में इन मामलों की सुनवाई ज्ञान भवन में की जाएगी। यहां मामलों के निष्पादन के लिए 25 बेंच का गठन किया गया है। प्रदेश में सड़क दुर्घटना की स्थिति में प्रारंभिक जांच के बाद 24 घंटे के भीतर वाहन मालिकों को उनका वाहन सौंप दिया जाएगा। यातायात के अपर पुलिस महानिदेशक सुधांशु कुमार ने बताया कि राज्य के किसी भी थाने में दुर्घटनाग्रस्त वाहन 24 घंटे के दौरान नहीं मिलने की स्थिति में मोबाइल नंबर 9031829356 पर शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। शिक्षा विभाग ने तीसरे और चौथे चरण की सक्षमता परीक्षा में काउंसिलिंग से छूटे 2,174 शिक्षकों को एक बार फिर काउंसिलिंग का मौका दिया है। विभाग के अनुसार 18 मई को इन शिक्षकों की काउंसिलिंग होगी। अगर किसी कारण से निर्धारित तिथि को काउंसिलिंग नहीं हो पाती है तो अगले दिन काउंसिलिंग की जाएगी। गौरतलब है कि विभाग के अनुसार BPSC द्वारा परीक्षा परिणाम जारी होने के बाद अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों के सत्यापन के लिए इस वर्ष फरवरी महीने में 6 से 11 तारीख तक तिथि निर्धारित की गई थी। विभिन्न कारण से इन शिक्षकों की काउंसिलिंग नहीं हो सकी थी। पटना स्थित IGIMS नर्सिंग कॉलेज में पिछले 48 घंटे से जारी नर्सिंग छात्राओं का आंदोलन समाप्त हो गया है। कॉलेज के उपनिदेशक सह प्रवक्ता डॉक्टर विभूति प्रसन्न सिन्हा ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग के आश्वासन पर छात्राओं ने आंदोलन समाप्त कर दिया। वहीं इस घटना के बाद कॉलेज की उप प्रधानाचार्य रूपाश्री दास गुप्ता को अकादमिक कार्यों के निष्पादन की जिम्मेदारी से हटा लिया गया है। श्री सिन्हा ने बताया कि छात्राओं के आरोपों की जांच के लिए एक कमेटी का गठन किया गया है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने जघन्य दुष्कर्म के मामलों में त्वरित सुनवाई, कड़ी निगरानी और पेरोल पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। आयोग ने महिलाओं और बच्चों के खिलाफ जघन्य अपराधों में शामिल दोषियों के लिए मौजूदा पेरोल व्यवस्था पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया राहटकर ने कहा कि आयोग शीघ्र ही केंद्र सरकार को सिफारिशें सौंपेगा। इनमें दुष्कर्म, महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अन्य गंभीर अपराधों के मामलों में दोषी व्यक्तियों के लिए पेरोल पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग की जाएगी। शुभेंदु अधिकारी आज पश्चिम बंगाल के पहले भाजपा मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। कोलकाता में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन, कई केंद्रीय मंत्री और एनडीए शासित सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। इससे पहले कल शुभेंदु अधिकारी को भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया। इसके बाद श्री अधिकारी ने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल आरएन रवि से मुलाकात की और राज्य में पहली भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार बनाने का दावा पेश किया। तमिलनाडु में टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय के नेतृत्व में सरकार गठन को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। IUML के टीवीके को सरकार बनाने में समर्थन देने वाली खबरों को खारिज कर दिया है। खबरों के अनुसार आज शपथ ग्रहण समारोह नहीं होगा। इससे पहले टीवीके ने दावा किया था कि विजय सरकार बनाने के लिए पूरी तरह तैयार है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सहरसा जिले में मध्याह्न भोजन खाने से 20 स्कूली बच्चों के बीमार होने की खबर पर संज्ञान लिया है। मुख्यमंत्री ने भविष्य में इस प्रकार की घटना न हो, इस संबंध में शिक्षा विभाग को पीएम पोषण योजना के समुचित अनुश्रवण और निगरानी के निर्देश दिए हैं। साथ ही मुख्यमंत्री ने बीमार स्कूली बच्चों का समुचित इलाज कराने का भी निर्देश दिया है। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।

0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_ पटना को फॉलो कर सकते हैं। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से राज्य में आंधी बारिश की परिस्थितियां बनी हुई हैं। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में धूल भरी आंधी चलने के साथ ही बारिश की संभावना है। विभाग ने कुछ जगहों पर ओलावृष्टि की चेतावनी भी जारी की है।
1: 24 घंटों के दौरान राज्य के उत्तर पूर्व एवं दक्षिण पूर्व भाग के जिलों दरभंगा, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर एवं वैशाली जिलों में एक दो स्थानों पर मेज गर्जन वज्रपात के साथ हवा की गति 40 से 50 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। राज्य के अरवल, बेगूसराय, भोजपुर, बक्सर, गोपालगंज, जहानाबाद, लखीसराय, नालंदा, पटना, सारण, शेखपुरा एवं सिवान जिलों में एक दो स्थानों पर मेज गर्जन वज्रपात के साथ हवा की गति 50 से 60 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है।
0: इधर पिछले 24 घंटों के दौरान पटना, वैशाली, सारण, सिवान, दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर और पूर्वी चंपारण समेत कई जिलों में तेज हवा के साथ मूसलाधार बारिश के कारण जनजीवन प्रभावित हुआ है। हमारे संवाददाताओं ने बताया कि तेज आंधी के कारण कई जगहों पर पेड़ और बिजली के खंभे उखड़ गए। इसके चलते आवागमन और विद्युत आपूर्ति व्यवस्था प्रभावित हुई है। राजधानी पटना में भी कई जगहों पर पेड़ गिरने से यातायात घंटों ठप हो गया। पटना जू में भी कई पेड़ गिर गए। प्रशासन ने गिरे पेड़ों को हटाने के लिए आज पटना जू को बंद रखने के निर्देश दिए हैं। इधर पटना जिला प्रशासन ने पेड़ गिरने या बिजली के तार टूटने की तत्काल सूचना देने के लिए हेल्पलाइन नंबर 9470001389 जारी किया है। राज्य के विभिन्न हिस्सों में आंधी, पानी और वज्रपात की घटना में 7 लोगों की मौत हो गई। पटना और वैशाली में 2-2 तथा आरा, समस्तीपुर और पूर्वी चंपारण में 1-1 व्यक्ति की मृत्यु हुई है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इस घटना पर गहरी शोक संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने मृतकों के आश्रितों को 4-4 लाख रुपए अनुग्रह अनुदान देने का निर्देश दिया है। केंद्र सरकार ने वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन को नौसेना प्रमुख नियुक्त किया है। रक्षा मंत्रालय के अनुसार वाइस एडमिरल स्वामीनाथन वर्तमान में पश्चिमी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के पद पर कार्यरत हैं। उन्हें भारतीय नौसेना में लगभग 4 दशकों की विशिष्ट सेवा का अनुभव है। वे एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी का स्थान लेंगे जो 31 मई को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। गृह विभाग ने छापेमारी में असहयोग के आरोप में कटिहार सदर 2 के तत्कालीन अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी धर्मेंद्र कुमार को निलंबित कर दिया है। वे वर्तमान में जहानाबाद के पुलिस उपाधीक्षक के पद पर तैनात हैं। इधर पश्चिम चंपारण के पुलिस अधीक्षक शौर्य सुमन ने गौनाहा थाना अध्यक्ष सौरभ कुमार को कर्तव्य में लापरवाही के आरोप में तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। नवादा जिले की साइबर पुलिस ने नगर थाना क्षेत्र के कोनिया मोहल्ले से एक साइबर ठग को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार ठग के खाते से 1 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जब्त की गई है। अररिया जिले के ताराबाड़ी थाना क्षेत्र अंतर्गत कुर्सा कांटा मुख्य मार्ग पर वाहन जांच के दौरान पुलिस ने 1028 ग्राम मादक पदार्थ स्मैक के साथ एक अपराधी को गिरफ्तार किया है। पटना के कृषि अनुसंधान परिसर में सतत कृषि हेतु संतुलित एवं पर्यावरण अनुकूल पोषक तत्व प्रबंधन विषय पर राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में मृदा परीक्षण आधारित खेती, संतुलित उर्वरक उपयोग और जैविक खाद अपनाने की जानकारी दी गई। भागलपुर के सैंडीज कंपाउंड मैदान स्थित कार्यालय में रेड क्रॉस सोसाइटी स्थापना दिवस का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जागरूकता रैली निकाली गई। अंतर्राष्ट्रीय पैरा तैराक शम्स आलम आज से स्वीडन में आयोजित पैरा स्विम ओपन फाल्केनबर्ग इंटरनेशनल चैंपियनशिप में शामिल हो रहे हैं। मधुबनी जिले के विस्पी प्रखंड के रथौस गांव निवासी शम्स 100 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक, 200 मीटर इंडिविजुअल मेडले और 200 मीटर फ्री स्टाइल स्पर्धाओं में हिस्सा लेंगे। प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन के आधार पर खिलाड़ी जापान में होने वाले आगामी एशियाई पैरा गेम्स के लिए क्वालिफाई करेंगे। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में 11 मई से आयोजित की जाने वाली अंडर 20 राष्ट्रीय फुटबॉल ट्रॉफी के लिए बिहार पुरुष टीम की घोषणा कर दी गई है। और अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान ने पश्चिम बंगाल में नई सरकार के गठन पर ताजपोशी शीर्षक से लिखा है, शुभेंदु संभालेंगे बंगाल की सत्ता। दैनिक जागरण लिखता है, मुजफ्फरपुर हाजीपुर रेलखंड पर आतंकी कैमरा, जांच में जुटी एटीएस और एसटीएफ। प्रभात खबर का शीर्षक है, ठगी साइट तक पहुंचाने को सरकारी पोर्टलों का सहारा। दैनिक भास्कर की बड़ी खबर है, राजस्व कर्मियों की हड़ताल खत्म, पेंडिंग मामलों को निपटाने के लिए विशेष अभियान चलेगा। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने नवनियुक्त मंत्रियों से कहा, अपने अपने विभागों में नई योजनाओं को लागू करने और तय लक्ष्य को पूरा करने में जुट जाएं। पटना उच्च न्यायालय समेत प्रदेश की सभी अदालतों में आज किया जा रहा है राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन, ट्रैफिक चालान समेत विभिन्न मामलों का होगा निपटारा। शिक्षा विभाग ने तीसरे और चौथे चरण की सक्षमता परीक्षा में काउंसिलिंग से छूटे शिक्षकों को एक बार फिर काउंसिलिंग का मौका दिया। और मौसम विभाग ने आज प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में आंधी बारिश और ओलावृष्टि की चेतावनी जारी की। कल आंधी और वज्रपात से जुड़ी अलग अलग घटनाओं में प्रदेश में 7 लोगों की मौत। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
2: समाचार के बाद आप सभी का स्वागत है रेडियो रमजिम 90.4 FM पर। आइए सुनते हैं अब आगे का प्रसारण।
3: जिले का गौरव संतोष मेडिकल हॉल घोसमोड़ दरगाह रोड गोपालगंज।
4: गोपालगंज जिले का प्रतिष्ठित अंग्रेजी दवा की दुकान संतोष मेडिकल हॉल।
5: हमारे यहाँ भारत के प्रसिद्ध डॉक्टरों द्वारा लिखी गई सभी प्रकार की अंग्रेजी दवाएं उपलब्ध हैं, जैसे गोरखपुर पटना कलकत्ता लखनऊ बनारस चेन्नई और मुंबई के डॉक्टरों द्वारा लिखी गई दवाइयाँ भी मिलती हैं।
6: एक सूचना, संतोष मेडिकल हॉल अब चला गया है कॉलेज रोड चिराई घर के पहले गोपालगंज। संपर्क सूत्र है 62042434-03। सुनिए,
7: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
6: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
7: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
6: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
8: अगर आप चाहते हैं अपने बच्चों के लिए स्मार्ट एजुकेशन, सुरक्षित एवं संस्कार के साथ शिक्षा, साफ सुथरा माहौल, एसी हॉस्टल की उत्तम व्यवस्था और अपने बच्चों का उज्जवल भविष्य, तो गोपालगंज में एक ही नाम,
9: बाबू भगवान सहाय सेंट्रल स्कूल। सीबीएसई पैटर्न पर आधारित एक कंप्लीट को एजुकेशनल स्कूल, क्लास 10th तक। सेशन 2026 से 27 के लिए प्ले ग्रुप से लेकर कक्षा 8वीं तक एडमिशन ओपन।
8: यहां मिलती है वेल क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी, स्मार्ट क्लासेस, मॉडर्न फैसिलिटीज, कंप्यूटर क्लासेस विद लैब और इंग्लिश स्पोकन क्लासेस।
9: कमजोर छात्रों के लिए एक्स्ट्रा क्लासेस की विशेष व्यवस्था, नीट एंड क्लीन एटमॉस्फेयर और सीसीटीवी कैमरा की सुविधा,
8: बस एवं आवासीय हॉस्टल सुविधा उपलब्ध, साथ ही सैनिक स्कूल, नवोदय, नेतरहाट और अलीगढ़ जामिया की तैयारी की सुविधा 100% सफलता की गारंटी के साथ। पता, हरखुआ भगवान नगर, वार्ड नंबर 24, विष्णु शुगर मिल के पश्चिम, गोपालगंज।
9: संपर्क करें 800-222-1969 या 9117018350।
10: टॉप रामू काका, हई इलेक्ट्रिक के इतना सारा सामान कहाँ से खरीद के ले आओ तनी?
11: ये सब सामान संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से लेके आओ तनी बाबू।
10: अरे ये सामान तो एक नंबर बुझाता और काफी डिजाइनदार भी बा।
11: अरे हाँ बाबू, अपना गोपालगंज में इतना अच्छा दुकान कहाँ बा? संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स में सस्ता में एक नंबर के सामान मिलेला।
10: हम तो अपना नौका घरवा खातिर इलेक्ट्रॉनिक के सारा सामान दिल्ली से लेके आवे के सोचत रहनी, लेकिन हम काले संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से जाके अपन पूरा सामान ले आए।
11: अरे हाँ बबुआ, संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से लिए या दिल्ली जाके पैसा बर्बाद कर ले से का फायदा?
12: संतोष इलेक्ट्रॉनिक हाउस, जहाँ सस्ते दामों में बेस्ट क्वालिटी के इलेक्ट्रिक के सारे सामान मिलते हैं।
10: हमारा पता है चिराई घर पेट्रोल पंप के सामने, संतोष फर्नीचर के नीचे, कॉलेज रोड, गोपालगंज।
13: एडमिशन फ्री एडमिशन फ्री।
14: कहाँ पर?
13: अरे CBSE न्यू दिल्ली से एफिलिएटेड ज्ञानदा इंटरनेशनल स्कूल चवही खास गोपालगंज,
14: जहाँ मिलता है क्वालिटी एजुकेशन, स्मार्ट लर्निंग एनवायरनमेंट, एक्सलेंट एकेडमिक गाइडेंस और गोपालगंज के टॉप परफॉर्मर्स तैयार करने की परंपरा।
13: यहाँ नर्सरी से 12th तक आधुनिक और रिजल्ट ओरिएंटेड एजुकेशन सिस्टम। फिलहाल नर्सरी से 9th और 11th क्लास में एडमिशन शुरू है,
14: तो देर ना करें। ऑफिस टाइम सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
13: ज्ञानदा इंटरनेशनल स्कूल, पता चवही खास NH 27 गोपालगंज, कॉन्टैक्ट 9852636537 और 9835556965।
15: नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम के रोमांचकारी खेल हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में। तो दोस्तों, हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में भाग लेने के लिए आपको कॉल करना होगा हर रविवार 12 बजे से हमारे स्टूडियो के नंबर 8029294921 8029294921 पर। तो दोस्तों, आइए जान लेते हैं रेडियो रिमझिम के इस रोमांचकारी खेल के रूल्स को। इस हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में आपसे पूछे जाएंगे 10 प्रश्न, हर प्रश्न के होंगे 3 ऑप्शन, जिसमें से होगा एक सही जवाब और आपको मिलेंगे 10 सेकंड का समय। यदि आप 10 सेकंड में जवाब नहीं दे पा रहे हैं तो आप इस खेल से बाहर हो जाएंगे। 10 प्रश्न के सही जवाब देने वाले प्रतिभागी को मिलेगा रेडियो रिमझिम के तरफ से एक एक्साइटिंग गिफ्ट और हमारे स्टूडियो में आने का मौका। तो दोस्तों, आपको अपने तरफ से इस बात का ध्यान रखना होगा कि आपके मोबाइल में पर्याप्त बैलेंस हो। साथ ही हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट के दौरान शांत जगह से कॉल करें और सबसे महत्वपूर्ण बात, किसी से सहायता ना ले और इंटरनेट पर जवाब सर्च ना करें। तो चलिए शुरू करते हैं रेडियो रिमझिम के रोमांचकारी खेल हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट को और लेते हैं पहले प्रतिभागी का कॉल।
16: हेलो।
17: हेलो, नमस्ते मैम।
16: नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम के कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में।
17: मैं मनोज कुमार बोल रहा हूँ प्रयागराज से।
16: जी, कैसे हैं मनोज जी?
17: ठीक हूँ मैम।
16: जी, तो क्या करते हैं आप मनोज जी?
17: अभी तो मैम मैंने अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, अभी तो कुछ नहीं कर रहा हूँ फिलहाल।
16: तो आपने ग्रेजुएशन किस सब्जेक्ट से किया है?
17: मैंने ग्रेजुएशन जो है ये हिंदी था, संस्कृत था एंड ये सोशियोलॉजी था, समाजशास्त्र।
16: तो मनोज जी, लिया जाए आपसे आज का पहला प्रश्न।
17: यस मैम।
16: आप अपने मम्मी पापा का बता दीजिए मनोज जी।
17: पापा का नाम है अमरीत सिंह और मम्मी का नाम राम दुलारी देवी।
16: जी, और आपके बगल में कोई छोटा बच्चा है क्या?
17: जी, छोटा बच्चा है, एक नदी में यहाँ चार जा रहा हूँ।
16: जी जी, बगल से आवाज आ रही है, वो चिल्ला रहे हैं। तो मनोज जी, लिया जाए पहला प्रश्न आपसे।
17: यस मैम।
16: जी,

0: गया
1: चोर है
0: ऑप्शन में गया जी
1: लॉक कर दो
0: यस मैम
1: ओके तो इसलिए मनोज जी आपके पहले प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए गया को लॉक करते हैं और आपको बता दें कि आपके पहले प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही है तैयार हैं आप दूसरे प्रश्न के लिए आपसे आपका दूसरा प्रश्न ये है भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम सर्वप्रथम कब गाया गया भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम सर्वप्रथम कब गाया गया ऑप्शन ए 1886 में बी 1896 में और सी 1907 में आपका समय शुरू होता है अब तो चलिए मनोज जी आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए 1886 को लॉक करते हैं और आपको बता दें कि आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर जो है वो गलत है सही उत्तर होगा 1896 हेलो कॉन्टेस्ट में कॉल किए बहुत बहुत धन्यवाद हेलो
2: हाँ नमस्ते
1: नमस्ते बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम के कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में
2: जी मैं कमरान लफीज डिस्ट्रिक्ट सिवान पकड़ी विलेज पकड़ी सुल्तान
1: जी कैसे हैं कमरान जी
2: जी बहुत अच्छा है आपका
1: जी हम भी बढ़िया हैं जी तो क्या हो रहा था अभी
2: कुछ नहीं मतलब कॉल लगा रहा था टाइम हो गया तो लगाएगा
1: जी तो पढ़ाई कहाँ तक हुई है कमरान जी आपकी
2: ग्रेजुएशन कम्प्लीट है
1: जी
2: तैयारी हो रही थी
1: तो अपने मम्मी पापा का नाम बता दीजिए आप
2: मोहम्मद रशीद
1: जी लिया जाए पहला प्रश्न आपसे
2: जी
1: जी तो कमराल जी आपसे आज का पहला प्रश्न ये है

0: मारो फिरंगी को कनारा किसने दिया, मारो फिरंगी को कनारा किसने दिया था? ऑप्शन ए भगत सिंह, बी मंगल पांडे, सी महात्मा गांधी। आपका समय शुरू होता है अब।
1: मंगल पांडे हुआ।
0: श्योर है?
1: श्योर तो नहीं है।
0: तो लॉक करूं?
1: जी लॉक।
0: ओके, तो कमरान जी आपके पहले प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी मंगल पांडे को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके पहले प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही है। तैयार हैं आप दूसरे प्रश्न के लिए?
1: जी।
0: आपसे आपका दूसरा प्रश्न ये है, इनमें से कौन सर्च इंजन नहीं है? ऑप्शन ए गूगल, बी इनमें से कौन सर्च इंजन नहीं है? ऑप्शन ए गूगल, बी आर्कूट और सी साइंस डायरेक्ट। आपका समय शुरू होता है अब।
1: ये दोनों नहीं है।
0: कौन सा?
1: गूगल तो है सर्च इंजन।
0: जी
1: हाँ, ये दोनों नहीं है।
0: ऑप्शन अलग अलग है। ऑप्शन ए है गूगल, सी है आर्कूट और सी है साइंस डायरेक्ट। तो कौन सा लॉक करूँ ये बताइए? दो तो नहीं कर सकते, कोई एक ही है।
1: अच्छा सवाल, अच्छा हाँ, आर्कूट नहीं होगा।
0: श्योर है?
1: हाँ।
0: तो लॉक करूँ?
1: जी।
0: तो कमरान जी आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी आर्कूट को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर जो है वो गलत है, क्योंकि आर्कूट भी सर्च इंजन है, साई डायरेक्ट नहीं है। सही उत्तर आपका साई डायरेक्ट होगा।
1: अच्छा साई डायरेक्ट नहीं।
0: जी। हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में कॉल किया, बहुत बहुत धन्यवाद।
2: हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में समय हो गया है एक छोटे से

0: ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलते हैं आप सबसे हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में। सुनते रहे रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
1: रामू हरिया कल तैयार रहिए लो परारी जलाए चले के बा।
2: ठीक बा भैया।
3: ए भैया एगो सूचना सुन ला हा। कृषि विभाग द्वारा एगो सूचना दिया जा रहा बा कि खेत के अवशेष यानी पराली नहीं खे जरावे के ना तो कृषि विभाग के कोनो योजना के लाभ ना मिली और ऊपर से जुर्माना भी लगी।
1: ऐसा का है जरावला से काहे मना होता।
3: फसल के अवशेष जरला से हमनी के माटी पर्यावरण और हमनी के खुद के स्वास्थ्य के बहुत नुकसान होता। फसल के अवशेष के जरे से माटी के उर्वरता कम हो जाला, जरूरी सूक्ष्म जीव भी नष्ट हो जाला और पर्यावरण में हानिकारक गैस निकलेला। एक टन ठूठ जरला से 60 किलो कार्बन मोनोऑक्साइड और 1460 किलो कार्बन डाइऑक्साइड नियर जहरीला गैस वायुमंडल में निकलेला।
1: अरे हमरा तो जानकारी ना रहला कि एकरा से हमनी के पर्यावरण पर इतना नुकसान बा, लेकिन बतावो तू हमरा के एकर बढ़िया विकल्प का सरकार बतावता।
3: एकर बढ़िया विकल्प ये बाटे कि फसल के अवशेष के जराए के बजाय ओकरा के माटी में ही मिला ली। ऐसे हमनी के माटी में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम जैसन पोषक तत्व मिली, जोना से पैदावार में बढ़ोतरी हुई।
1: अच्छा तो अब से ठूठ के हमनी के जराएब जा ना, एकरा के हमनी के माटी में मिलाएब जा, ताकि हमनी के माटी के उर्वरता बढ़ जाए और हमनी के पर्यावरण भी सुरक्षित रही। बहुत अच्छा कैलू भाई जानकारी दे के।
3: याद रखी ठूठ कूड़ा ना, खेती के गहना नहा, एकरा के जराई मत माटी में मिलाई। जिला कृषि विभाग गोपालगंज द्वारा जनहित में जारी।
4: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
5: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
6: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल।
7: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
6: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
7: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
6: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
7: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
6: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा, NH 27 गोपालगंज।
7: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
8: ठक ठक।
9: काजी आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
10: अच्छा मिला ही नहीं।
9: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
11: जी हाँ कमल श्री, याद रखिए सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
9: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट गोपालगंज।
11: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
0: ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है रेडियो रिमझिम के रोमांचकारी खेल हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में। अगर आप भी हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में भाग लेना चाहते हैं और आजमाना चाहते हैं अपने ज्ञान और लक को, तो हर रविवार दोपहर 12 बजे से कॉल करें 80 29 94 921 80 29 94 921 पर। आइए लेते हैं अगले प्रतिभागी का कॉल।
12: नमस्कार मिस।
13: नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम के कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में।
12: जी।
13: नाम बता दीजिए अपना और कहाँ से?
12: सुमन कुमार, पिंडरा गांव से।
13: ठीक, कैसे हैं सुमन जी?
12: ठीक है।
13: तो क्या करते हैं आप?
12: पढ़ते हैं।
13: ये आपका पिंडरा गांव कहाँ पड़ता है सुमन जी?
12: मीरगंज के निकट।
13: अच्छा, और किस क्लास में पढ़ते हैं आप?
12: अभी ग्रेजुएशन कर रहे हैं।
13: फाइनल हो गया है कि अभी बाकी है?
12: अभी अपीयर है।
13: तो पढ़ाई कैसे चल रही है आपकी?
12: अच्छी।
13: तो ये बढ़िया है। मम्मी पापा का नाम बता दीजिए अपने।
12: माताजी का नाम श्रीमती बीघन देवी और पिताजी का नाम श्री
13: सुरेशा। जी, तो लिया जाए आपसे आज का पहला प्रश्न।
12: यस।
13: तो सुमन जी, आपसे आज का पहला प्रश्न ये है

0: मारो फिरंगी को का नारा किसने दिया था? मारो फिरंगी को का नारा किसने दिया था? ऑप्शन ए भगत सिंह, बी मंगल पांडे, सी चंद्रशेखर आजाद। आपका समय शुरू होता है अब।
1: मंगल पांडे को लग दीजिए।
0: क्यों है?
1: लग के सार
0: है। तो सुमन जी चलिए आपके पहले प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी मंगल पांडे को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके पहले प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही है। तैयार हैं आप दूसरे प्रश्न के लिए?
1: यस।
0: ओके, आपसे आपका दूसरा प्रश्न ये है, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम सर्वप्रथम कब गाया गया? भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम सर्वप्रथम कब गाया गया? ऑप्शन ए 1886, बी 1896, सी 1907। आपका समय शुरू होता है अब।
1: अठारह सौ छियानवे को लॉक कीजिए।
0: इसमें श्योर हैं?
1: यस।
0: तो लॉक कर दूं?
1: यस।
0: तो चलिए सुमन जी आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर उत्तर ऑप्शन बी 1896 को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर भी सही है। तैयार हैं आप तीसरे प्रश्न के लिए?
1: यस।
0: आपसे आपका तीसरा प्रश्न ये है, किसी वेबसाइट के मेन पेज को क्या कहते हैं? किसी वेबसाइट के मेन पेज को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए ब्राउजर पेज, बी होम पेज, सी बुकमार्क। आपका समय शुरू होता है अब।
1: ब्राउजर पेज।
0: ब्राउजर पेज।
1: यस।
0: श्योर है?
1: लग के साथ।
0: ओके, तो चलिए सुमन जी आपके तीसरे प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ब्राउजर पेज को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके तीसरे प्रश्न का उत्तर जो है बिल्कुल गलत है। सही उत्तर होगा होम पेज, ना कि ब्राउजर पेज। हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में कॉल किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद।
0: हेलो।
2: हाँ मैम बोलिए।
0: बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो डिमिशन के कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में।
2: जी मैडम।
0: जी नाम बता दीजिए अपना और कहाँ से?
2: मेरा नाम रंजीत कुमार है, बॉलीवुड नवादा।
0: जी कैसे हैं रंजीत जी?
2: मैम ठीक है, अपना बताइए।
0: हम भी बढ़िया है। तो पढ़ाई कहाँ तक हुई है आपकी रंजीत जी?
2: मैम अभी तो ग्रेजुएशन हो गई है।
0: जी और क्या करते हैं अभी आप?
2: अभी कॉम्पिटिशन तैयारी कर रहे हैं।
0: ओके, तो पढ़ाई कैसे चल रही है आपकी?
2: पढ़ाई अच्छी चल रही है, बिहार पुलिस समय से रहा था और रीजन और फिजिकल देखिए पास है, मेरिट के इंतजार कर रहे हैं।
0: बढ़िया है। और हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में इससे पहले भी आप कॉल किए हैं?
2: इससे पहले दो तीन चार बार विनर भी पहुँच चुके हैं।
0: अच्छा अच्छा।
2: कॉलेज सर खिलाते थे वो पहले, आपसे तो दो तीन चार बार बात किए ही कोचिंग नहीं हो पाता है बात।
0: अच्छा, तो आप ट्यूशन पढ़ाते हैं भैया कि पढ़ते हैं सिर्फ?
2: नहीं पढ़ते हैं, गोपालगंज रह कर पढ़ते हैं, आए हैं घर से।
0: अच्छा, तो आप अपने मम्मी पापा का नाम बता दीजिए रंजीत जी।
2: मेरे पिताजी का नाम है श्री जग महतो और मेरी माता जी का नाम है श्रीमती इंदु देवी।
0: जी तो लिया जाए आपका आज का पहला प्रश्न।
2: जी मैडम।
0: जी

0: तो रंजीत जी, आपसे आज का पहला प्रश्न ये है
1: जी,
0: गोपालगंज के पूरब में कौन सा जिला है? गोपालगंज के पूरब में कौन सा जिला है? ऑप्शन ए मुजफ्फरपुर, बी पूर्वी चंपारण और सी पश्चिमी चंपारण। आपका समय शुरू होता है अब।
1: गोपालगंज के
0: पूरब में,
1: पूरब में कौन सा जिला है
0: जी?
1: ऑप्शन क्या क्या है?
0: ऑप्शन ए मुजफ्फरपुर, बी पूर्वी चंपारण और सी पश्चिमी चंपारण।
1: मुजफ्फरपुर भी फिक्स कीजिए।
0: श्योर है?
1: हाँ श्योर है।
0: लॉक कर दें?
1: जी कर दीजिए।
0: ओके, तो चलिए रंजीत जी, आपके पहले प्रश्न के उत्तर ऑप्शन ए मुजफ्फरपुर को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके पहले प्रश्न का उत्तर ही गलत है। सही उत्तर होगा पूर्वी चंपारण। हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में कॉल किए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: ठीक है मैडम
0: जी।
2: हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में समय हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलते हैं आप सबसे हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में। सुनते रहे रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
3: 21 वर्षों से सिर्फ पढ़ाई नहीं, भविष्य गढ़ने की पहचान है एक नाम, सेंट जॉन स्कूल सासा मूसा गोपालगंज, शाखा राजापुर बाजार गोपालगंज।
4: और अब 30 अप्रैल तक एडमिशन बिल्कुल फ्री।
3: CBSE पैटर्न पर आधारित शिक्षा, नर्सरी से क्लास 10वीं तक, कंप्यूटर एजुकेशन, बस फैसिलिटी, रेगुलर टेस्ट और पेरेंट मीटिंग्स, एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ सेफ और पीसफुल कैंपस।
4: सेंट जॉन स्कूल में बच्चों को सिर्फ सिखाया नहीं जाता, उन्हें तराश जाता है।
3: तो देर मत कीजिए, 30 अप्रैल तक फ्री एडमिशन का लाभ उठाइए।
4: सेंट जॉन स्कूल सासा मूसा गोपालगंज। कॉल अस 9939721308।
5: इतना परेशान क्यों दिख रही हो मेघा?
6: आसपास हर जगह चाचा जी का इलाज करा लिया, अब लगता है उन्हें दिल्ली लेकर ही जाना पड़ेगा।
5: अरे अपने गोपालगंज में गोरखपुर, पटना और दिल्ली जैसे बेहतर मेडिकल सुविधाओं के साथ खुल गया है एम्स के पूर्व चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक रंजन जी के देखरेख में जिले का पहला वेंटिलेटर युक्त सक्षम हॉस्पिटल, जहां पर 24 घंटे ICU इमरजेंसी सेवा, एक्सपर्ट मेडिकल टीम द्वारा विभिन्न रोग जैसे हृदय रोग, शुगर, दमा, नस रोग, लकवा और पेट से जुड़ी गंभीर बीमारियों का अत्याधुनिक मशीनों के द्वारा सफलतापूर्वक इलाज किया जा रहा है।
6: आज विजिट करें सक्षम हॉस्पिटल, कमला राय कॉलेज रोड, इंडियन गैस एजेंसी के बगल में, गांधी टेक्निकल कॉलेज के सामने, डॉक्टर कॉलोनी, गोपालगंज। कॉल करें 7050061444 या 7870331444।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।
1: शादी की ज्वेलरी लेनी है? हाँ,
2: भरोसे वाले से लेंगे,
1: पर दिया की पसंद भी जरूरी है
2: और कीमत भी।
1: प्योरिटी का सर्टिफिकेशन तो चाहिए ही।
3: एसपी ज्वेलर्स पे हमें पूरा भरोसा है।
4: प्योरिटी यानी मम्मी सर्टिफाइड, भरोसा और सही प्राइस यानी पापा सर्टिफाइड, और डिजाइन्स तो मेरा सर्टिफिकेशन।
5: गहनों की खरीदारी के लिए आप भी आए एसपी ज्वेलर्स, क्योंकि रिश्ते हर रोज नहीं बनते।
6: 22 कैरेट 18 कैरेट के जेवर, शादी सेट और साथ ही पुराने जेवर बदलकर नए जेवर के करे खरीदारी।
5: आज यहाँ एसपी ज्वेलर्स जो है डीएवी गर्ल्स स्कूल के सामने स्टेशन रोड गोपालगंज,
7: और अब एसपी ज्वेलर्स का नया ब्रांच मेन रोड गोपालगंज इन फ्रंट ऑफ बासु गारमेंट्स। सभी प्रकार के गहनों के मेकिंग चार्ज पर 25% की भारी छूट।
5: कॉल करें 85070-32042 पे।
8: ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है रेडियो रिमझिम के रोमांचकारी खेल हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में। अगर आप भी हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में भाग लेना चाहते हैं और आजमाना चाहते हैं अपने ज्ञान और लक को, तो हर रविवार दोपहर 12 बजे से कॉल करें 8029-94-21 8029-94-21 पर। आइए लेते हैं अगले प्रतिभागी का कॉल।
9: बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंगिंग के कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में।
10: थैंक यू मैम। सलाम वालेकुम।
9: वालेकुम सलाम। नाम बता दीजिए अपना और कहाँ से? जी कैसे हैं इजहार जी?
10: अच्छा है मैम, अपने बताइए।
9: हम भी बढ़िया हैं। तो क्या करते हैं आप इजहार जी?
10: पढ़ाई करता हूँ।
9: किस क्लास में पढ़ते हैं?
10: 9th में।
9: 9th में। पढ़ाई कैसी चल रही है आपकी?
10: अच्छी चल रही है मैम
9: जी। अपने अम्मी अबू का नाम बता दीजिए।
10: अम्मी का नाम प्रोफेसर था, तो मेरा अबू का नाम मेरा जानकारी
9: जी। तैयार है आप? लिया जाए आपसे पहला प्रश्न।
10: यस
9: ओके। तो इजहार जी आपसे आज का पहला प्रश्न ये है

0: मारो फिरंगी को का नारा किसने दिया, मारो फिरंगी को का नारा किसने दिया? ऑप्शन ए भगत सिंह, बी मंगल पांडे, सी चंद्रशेखर आजाद। आपका समय श्रोता है अब।
1: मंगल पांडे को फिक्स कीजिए मैम।
0: श्योर है आप?
1: यस मैम।
0: लॉक कर दूं? जी। तो चलिए इजहार जी, आपके पहले प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी मंगल पांडे को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके पहले प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही है।
1: यस मैम।
0: तैयार हैं आप दूसरे प्रश्न के लिए?
1: यस मैम।
0: जी। सिद्धार्थ यानी बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी? बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी? ऑप्शन ए गया, बी कुशीनगर, सी वाराणसी। आपका समय शुरू होता है अब।
1: मैम क्वेश्चन फिर से बोलिएगा।
0: बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी?
1: ऑप्शन
0: गया, बी कुशीनगर और सी वाराणसी।
1: गया को फिक्स कीजिए ना।
0: प्योर है आप?
1: प्योर तो नहीं है मैम, फिक्स कीजिए।
0: ओके। तो यार जी, आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए गया को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर भी सही है। तैयार है आप तीसरे प्रश्न के लिए?
1: यस मैम।
0: आपसे आपका तीसरा प्रश्न ये है, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम सर्वप्रथम कब गाया गया? भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम सर्वप्रथम कब गाया गया? ऑप्शन ए 1886, बी 1896 और सी 1907। आपका समय श्रोता है अब।
1: आपका नंबर मैम बी को फिक्स कीजिए।
0: 1896।
1: यस मैम।
0: श्योर है आप?
1: जी मैम।
0: ओके। तो चलिए इजहार जी, आपके दूसरे प्रश्न का तीसरे प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी 1896 को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके तीसरे प्रश्न का उत्तर भी सही है। तैयार हैं आप चौथे प्रश्न के लिए?
1: यस मैम।
0: आपसे आपका चौथा प्रश्न ये है, वेबसाइट के मेन पेज को क्या कहते हैं? वेबसाइट के मेन पेज को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए ब्राउजर पेज, बी होम पेज, सी बुकमार्क। आपका समय स्रोत है अब।
1: मैम क्वेश्चन समझ में नहीं आया, फिर से बोलिएगा।
0: वेबसाइट के मेन पेज को क्या कहते हैं?
1: वेबसाइट के मेन पेज को ऑप्शन में क्या कह रहे हैं?
0: ब्राउजर पेज, बी होम पेज, सी बुकमार्क।
1: मैम होम पेज को फिक्स कीजिएगा।
0: श्योर हैं?
1: नहीं मैम, श्योर तो नहीं, फिक्स कीजिए।
0: जी। तो चलिए जार जी, आपके चौथे प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी होम पेज को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके चौथे प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही है। तैयार हैं आप पांचवे प्रश्न के लिए?
1: जी मैम।
0: जी। आपसे आपका पांचवा प्रश्न ये है, G20 शिक्षा मंत्रियों की बैठक 2025 में कहाँ हुई? G20 शिक्षा मंत्रियों की बैठक 2025 में कहाँ हुई? ऑप्शन ए नई दिल्ली, बी ब्राजीलिया और सी पेरिस। आपका समय श्रोत है अब।
1: मैम फिर से बोलिएगा।
0: क्या फिर से बोले?
1: क्वेश्चन बोलिए।
0: G20 शिक्षा मंत्रियों की बैठक 2025 में कहाँ हुई?
1: G20 ऑप्शन में क्या क्या है?
0: ऑप्शन ए नई दिल्ली, बी ब्राजीलिया, सी पेरिस। आप कहीं सर्च कर रहे हैं?
1: नहीं मैम, अकेले हैं। बोलिए।
0: अकेले हैं, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है आप कहीं सर्च कर रहे हैं?
1: ना मैम, छोटा मोबाइल से फोन किया है।
0: बढ़िया है, तो उत्तर दीजिए।
1: क्वेश्चन
0: G20 शिक्षा मंत्रियों की बैठक 2025 में कहाँ हुई?
1: ऑप्शन बोलिए।
0: नई दिल्ली, बी ब्राजीलिया, सी पेरिस। हेलो।
1: तीन को फिक्स कीजिए मैम।
0: किसको? सी को?
1: यस मैम।
0: पेरिस?
1: यस मैम।
0: श्योर है?
1: श्योर तो नहीं है मैम।
0: जी तो चलिए आपके पांचवें प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी पेरिस को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके पांचवें प्रश्न का उत्तर बिल्कुल गलत है। सही उत्तर होगा ऑप्शन डी ब्राजीलिया।
1: थैंक यू मैम।
0: वेलकम। फिर कॉन्टेस्ट में कॉल किए बहुत बहुत धन्यवाद।
2: हेलो नमस्ते मैम।
0: नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो केसरी 90.2 एफएम में।
2: थैंक यू मैम।
0: जी
2: मैम, प्रियंका बोल रही हूँ यहाँ से।
0: ठीक, कैसी है प्रियंका जी?
2: मैं भी अच्छी हूँ, आप कैसे हैं?
0: मैं भी बढ़िया हूँ। क्या करती हैं प्रियंका जी आप?
2: मैं हाउस वाइफ हूँ।
0: अच्छा अच्छा, तो पढ़ाई कहाँ तक हुई है आपकी?
2: मेरी 12वीं तक हुई है।
0: 12वीं तक हुई है?
2: हाँ
0: जी। और अभी पढ़ाई चल रही है या छूट गई है?
2: नहीं मैम, छूट गई है।
0: हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में पहली बार कॉल की है?
2: नहीं मैम, दूसरी बार कॉल की है।
0: अच्छा, दूसरी बार है।
2: हाँ
0: चलिए, तो अपने मम्मी पापा का नाम बता दीजिए।
2: मैम मेरी मम्मी का नाम लक्ष्मी देवी है और मेरे पापा का नाम लगन सिंह।
0: जी तो लिया जाए पहला प्रश्न प्रियंका जी आपसे।
2: हाँ जी मैम।
0: जी

0: तो प्रियंका जी, आपसे आज का पहला प्रश्न ये है, बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी? ऑप्शन ए गया, बी कुशीनगर, सी वाराणसी। आपका समय शुरू होता है अब।
1: मैम गया।
0: श्योर है?
1: जी मैम।
0: लॉक कर दूं?
1: जी मैम।
0: तो प्रियंका जी, आपके पहले प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए गया को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके पहले प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही है। तैयार हैं आप दूसरे प्रश्न के लिए?
1: जी मैम।
0: जी, तो प्रियंका जी, आपसे आपका दूसरा प्रश्न ये है, मारो फिरंगी को कनारा किसने दिया? मारो फिरंगी को कनारा किसने दिया? ऑप्शन ए भगत सिंह, बी मंगल पांडे और सी महात्मा गांधी। आपका समय शुरू होता है अब।
1: मैम बी मंगल पांडे।
0: श्योर है?
1: जी मैम।
0: लॉक कर दूं?
1: जी मैम।
0: ओके, तो प्रियंका जी, आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी मंगल पांडे को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर भी बिल्कुल सही है। तैयार हैं आप तीसरे प्रश्न के लिए?
1: जी मैम।
0: जी, आपसे आपका तीसरा प्रश्न ये है, वेबसाइट के मेन पेज को क्या कहते हैं? वेबसाइट के मेन पेज को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए ब्राउजर पेज, बी होम पेज, सी बुकमार्क। आपका समय शुरू होता है अब।
1: मैम बुकमार्क।
0: श्योर है आप?
1: जी मैम।
0: लॉक करूं?
1: जी मैम।
0: ओके, तो प्रियंका जी, आपके तीसरे प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी बुकमार्क को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके तीसरे प्रश्न का उत्तर गलत है। सही उत्तर होगा होम पेज। जी, हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में कॉल की बहुत बहुत धन्यवाद। अगले संडे फिर कोशिश करिएगा।
2: हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में समय हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलते हैं आप सबसे हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में। सुनते रहे रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
3: अरे ए चाची, जब आँख से साफ नहीं खेलो को तो रोडवा पर लड़खड़ा के कहे चलते नहीं, और तहार मोतियाबिंद का ऑपरेशन होके वाला रहनु, ओकर का भइल?
4: अरे ए बबुओ, परेशानी तो बा, लेकिन ऑपरेशन से हमके बहुते डर लगेला। सुनले बानी की आँख में सुई लगेला, काफी दर्द होत होइनु।
3: अरे बाग चाची, तू कावना दुनिया में बारू। अब अपना गोपालगंज में चेन्नई के डॉक्टर एस हैदर जी आगल बनी। यहाँ के आँख में बिना सुई लगौले, बिना चीड़फाड़ कइले और बिना टाका लगौले फेको मशीन के द्वारा आँख के ऑपरेशन करतानी। तो तू इनके लगे काहे ना कुचल जा, आँख में कोनो तरह के दर्द भी ना होई और ऑपरेशन भी हो जाई।
5: आंखों से जुड़ी बीमारियों के सफल इलाज के लिए आज ही मिले सिवान के सुप्रसिद्ध डॉक्टर इसराइल की सुपुत्री डॉक्टर एस हैदर से। साथ ही हर शुक्रवार को मिले ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट डॉक्टर एम ए अकबर जी से। ध्यान रहे, चेन्नई आई केयर अब चला गया है कमला राय कॉलेज रोड यमहा शोरूम के सामने रालसन होटल के पश्चिम गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99053 69015 पे।
6: 21 वर्षों से सिर्फ पढ़ाई नहीं, भविष्य गढ़ने की पहचान है एक नाम, सेंट जॉन स्कूल सासा मूसा गोपालगंज, शाखा राजापुर बाजार गोपालगंज।
7: और अब 30 अप्रैल तक एडमिशन बिल्कुल फ्री।
6: CBSE पैटर्न पर आधारित शिक्षा, नर्सरी से क्लास 10वीं तक, कंप्यूटर एजुकेशन, बस फैसिलिटी, रेगुलर टेस्ट और पेरेंट मीटिंग्स, एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ सेफ और पीसफुल कैंपस।
7: सेंट जॉन स्कूल में बच्चों को सिर्फ सिखाया नहीं जाता, उन्हें तराश आ जाता है।
6: तो देर मत कीजिए, 30 अप्रैल तक फ्री एडमिशन का लाभ उठाइए।
7: सेंट जॉन स्कूल सासा मूसा गोपालगंज। कॉल अस 9939721308।
6: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
7: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
6: श्री गोपाल मोटर्स गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस सिर्फ 86,168 रुपए में, HF डिलक्स सिर्फ 75,405 रुपए में, ग्लैमर एक्स सिर्फ 97,456 रुपए में, एक्सट्रीम 125R सिर्फ 110,881 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
7: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
6: या अभी कॉल कीजिए 92899-22567 या 97-714-86-164।
7: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
6: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट, KGMU, लखनऊ।
7: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
6: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
7: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करे।
6: पता, कमला राय कॉलेज रोड नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
7: संपर्क करे 9006978856 या 6203139564।
2: ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है रेडियो रिंजन के रोमांचकारी खेल हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में। अगर आप भी हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में भाग लेना चाहते हैं और आजमाना चाहते हैं अपने ज्ञान और लक को, तो हर रविवार दोपहर 12 बजे से कॉल करें 8029-94-91 8029-94-91 पर। आइए लेते हैं अगले प्रतिभागी का कॉल।
0: बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम के कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में।
8: हेलो मैम।
0: हेलो जी, नाम बता दीजिए अपना और कहाँ से।
8: जी मेरा नाम पल्लवी है, मैं थाने के भेड़िया गांव से बोल रही हूँ।
0: ठीक, कैसे हैं पल्लवी जी।
8: मैं बहुत अच्छी हूँ मैम, आप कैसी हैं।
0: मैं भी बढ़िया हूँ। तो क्या करती हैं पल्लवी आप।
8: अभी तो मैं क्लास 10th में हूँ और अभी पढ़ाई करती हूँ।
0: जी, तो पढ़ाई कैसे चल रही है आपकी।
8: बहुत अच्छी चल रही है
0: जी। तो आगे क्या करना है, कुछ सोचा है आपने।
8: जी सोचा तो है।
0: जी क्या सोचा है।
8: जी टीचर बनने का तो सोचा है।
0: अच्छा अच्छा, तो हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में पहली बार कॉल की हैं आप।
8: जी मैम।
0: तो लिया जाए आप से आज का पहला प्रश्न, तैयार हैं आप।
8: यस मैम।
0: ओके, अपने मम्मी पापा का नाम बता दीजिए पल्लवी।
8: मम्मी का नाम मम्मी का नाम रंजीता देवी और पापा का नाम राकेश पांडे।
0: जी, तो पल्लवी जी आपसे आज का पहला प्रश्न ये है।
8: यस मैम।

0: विश्व मजदूर दिवस किस माह में मनाया जाता है? विश्व मजदूर दिवस किस माह में मनाया जाता है?
1: इस महीने में?
0: जी, ऑप्शन ए अगस्त, बी अप्रैल, सी मई। आपका समय शुरू होता है अब।
1: मई में।
0: श्योर है?
1: यस मैम।
0: लॉक कर दूं?
1: यस मैम।
0: ओके, तो चलिए पल्लवी जी, आपके पहले प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी मई को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके पहले प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही है। तैयार हैं आप दूसरे प्रश्न के लिए?
1: यस मैम।
0: अच्छा, आपका दूसरा प्रश्न ये है, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में कितने शेर दिखाई देते हैं? भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में कितने शेर दिखाई देते हैं? ऑप्शन ए दो, बी तीन, सी एक। आपका समय शुरू होता है अब।
1: तीन।
0: श्योर है?
1: यस मैम।
0: लॉक कर दो?
1: यस मैम।
0: ओके, तो चलिए पल्लवी जी, आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी तीन को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर भी सही है। तैयार हैं आप तीसरे प्रश्न के लिए?
1: यस मैम।
0: आपसे आपका तीसरा प्रश्न ये है, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम सर्वप्रथम कब गाया गया? भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम सर्वप्रथम कब गाया गया? ऑप्शन ए 1886, बी 1896 और सी 1907। आपका समय सोता है अब।
1: अठारह सौ छियासी।
0: श्योर है?
1: यस मैम।
0: लॉक करूं?
1: यस मैम।
0: ओके, तो चलिए पल्लवी जी, आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर 1886 ऑप्शन ए को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर बिल्कुल गलत है। सही उत्तर होगा 1896। ओके, हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में कॉल किया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: ओके मैम,
0: वेलकम। हेलो
2: जी, नमस्ते मैम।
0: नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम के कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में।
2: थैंक यू मैम
0: जी। नाम बता दीजिए अपना और कहाँ से?
2: जी मैं बिमल कुमारी बोल रही हूँ, लाइन बाजार से।
0: जी, कैसे हैं बिमल जी?
2: ठीक है, आप कैसे हैं मैम?
0: क्या हो? लाइन बाजार कहाँ पड़ता है ये आपका?
2: बथ वाले रोड में पड़ता है।
0: अच्छा, तो क्या करती हैं बिमल जी आप?
2: अभी तो पढ़ाई बंद हो गया, ग्रेजुएशन फाइनल करके।
0: जी, तो उसके बाद आप छोड़ दिए हैं? ग्रेजुएशन कब फाइनल की हैं आप?
2: 2021 में।
0: अच्छा, 21 में फाइनल करके उसके बाद छोड़ दी हैं। चलिए बढ़िया है, कोई बात नहीं।
2: हेलो, पढ़ाई होगा अभी प्रॉब्लम की वजह से थोड़े बच्चे से हैं इसीलिए।
0: सबका अपना अपना कुछ प्रॉब्लम होता है, उससे कोई बड़ी बात नहीं है। तो आप तैयार हैं आज के पहले प्रश्न के लिए?
2: जी
0: जी। मम्मी पापा का नाम बता दीजिए विमल जी।
2: मेरे पापा जी का नाम रामा जी प्रसाद है और मम्मी का नाम प्रभाती देवी।
0: जी, तो विमल जी, आपसे आज का पहला प्रश्न ये है
2: जी,

0: गोपालगंज जिला यूपी के किस जिले से मिलता है? गोपालगंज जिला यूपी के किस जिले से मिलता है? ऑप्शन ए कुशीनगर, बी देवरिया और सी कुशीनगर देवरिया। आपका समय शुरू होता है अब।
1: कुशीनगर देवरिया दोनों होगा, कुशीनगर देवरिया।
0: तो लॉक करें?
1: हाँ।
0: ओके तो चलिए कमल जी, आपके पहले प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी कुशीनगर देवरिया को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके पहले प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही है। तैयार हैं आप दूसरे प्रश्न के लिए?
1: जी मैम।
0: तो आपसे आपका दूसरा प्रश्न ये है, गोपालगंज जिले में कितने अनुमंडल हैं? गोपालगंज जिले में कितने अनुमंडल हैं? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 2 और ऑप्शन सी 5। आपका
1: 2
0: का चोर है?
1: हाँ।
0: लॉक कर दूं?
1: जी मैम।
0: ओके तो चलिए विमल जी, आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी 2 को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर भी सही है। तैयार हैं आप तीसरे प्रश्न के लिए?
1: जी मैम।
0: आपसे आपका तीसरा प्रश्न ये है, गोपालगंज के उत्तर दिशा में कौन सी नदी बहती है? गोपालगंज के उत्तर दिशा में कौन सी नदी बहती है? ऑप्शन ए सादानीरा, ऑप्शन बी कावेरी और ऑप्शन सी गंडक। आपका समय शुरू होता है अब।
1: ऑप्शन सी
0: गंडक।
1: गंडक नदी? हाँ, कंफर्म तो नहीं है लेकिन।
0: तो लॉक करूं?
1: कर दीजिए, देखते हैं।
0: ओके तो चलिए विमल जी, आपके तीसरे प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी गंडक नदी को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके तीसरे प्रश्न का उत्तर गलत है। सही उत्तर होगा सादानीरा।
1: अच्छा, थैंक यू।
0: वेलकम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में कॉल की।
1: थैंक यू मैम।
0: मोस्ट वेलकम, नेक्स्ट टाइम फिर कोशिश करिएगा। और
2: हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में समय हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलते हैं आप सबसे हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में। सुनते रहे रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
3: जो लोग डायबिटीज से परेशान हैं, वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य SP त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलता पूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य SP त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज, जैसे
4: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टेबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, टीका, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंता और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस तथा
3: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य SP त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलता पूर्वक करते हैं।
5: वैद्य SP त्यागी जी से मिलने का पता,
3: प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में।
5: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 99554943
3: और 9097160602।
6: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
7: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
6: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
7: पता जंगलिया मोहल्ला नूर मेडिकल के पास गोपालगंज। कॉल करें 94512111001।
8: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
7: घर पर बैठे बेरोजगार युवाओं के लिए अब इंतजार नहीं, एक सुनहरा मौका आपका इंतजार कर रहा है।
9: छत्रपति शिवाजी महाराज फायर एंड सेफ्टी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गोपालगंज लाया है आपके लिए शानदार करियर बनाने का अवसर।
7: अगर आप 10+2 डिप्लोमा या ग्रेजुएट पास है तो बनिए एक प्रोफेशनल सेफ्टी ऑफिसर और पाए अपने भविष्य को एक नई दिशा।
9: यहां उपलब्ध है 1 साल का सेफ्टी डिप्लोमा ADIS, NEBOSH और IOSH, PG डिप्लोमा इन एनवायरमेंट जैसे प्रोफेशनल कोर्स,
7: और सबसे खास बात 100% जॉब गारंटी। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
9: मोबाइल नंबर 8511168095 और बात करें अमरेंद्र सर से।
7: पता छत्रपति शिवाजी महाराज फायर एंड सेफ्टी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, बंजारी रोड, HP पेट्रोल पंप के सामने, गोपालगंज।
2: ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है रेडियो रिमझिम के रोमांचकारी खेल हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में। अगर आप भी हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में भाग लेना चाहते हैं और आजमाना चाहते हैं अपने ज्ञान और लक को, तो हर रविवार दोपहर 12 बजे से कॉल करें 8029294921 8029294921 पर। आइए लेते हैं अगले प्रतिभागी का कॉल।
0: हेलो
10: जी, नमस्कार।
0: नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम के कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में।
10: जी सुनिए जी, मेरा आवाज भारी है, मैं दिलीप राम बोल रहा हूँ।
0: जी कैसे हैं दिलीप जी?
10: बहुत बढ़िया है, आप कैसी हैं? मौसम कैसा है आज?
0: मैं भी बढ़िया हूँ, मौसम भी बढ़िया है।
10: अभी कॉल लगाया था, एक बार उठाया जब तक कट गया। अभी एक बार और में गए थे तो कॉल कट गया है, मैंने कहा पता नहीं क्यों कट गया।
0: जी जी सर, नेटवर्क इशू।
10: और क्या बताइए, ठीक है ना सर?
0: जी जी सब बढ़िया है, आप बताइए क्या कर रहे थे अभी?
10: बैठे ही हैं, आज संडे है तो थोड़ा अभी सवारी करके मैंने कहा ट्राई मारते हैं, लग गई तो लग गई, नहीं लगी तो जाए किया।
0: चलिए बढ़िया है, तो लिया जाए पहला प्रश्न आपसे।
10: जी बोला जाए।
0: जी तो दिलीप जी, आपसे आज का पहला प्रश्न ये है

0: गोपालगंज जिला यूपी के किस जिले से मिलता है? गोपालगंज जिला यूपी के किस जिले से मिलता है? ऑप्शन ए कुशीनगर, बी देवरिया, सी कुशीनगर देवरिया। आपका समय शुरू है अब। एक बार और जवाब दीजिए।
1: कुशीनगर।
0: सिर्फ कुशीनगर?
1: कुशीनगर देवरिया।
0: कुशीनगर देवरिया श्योर है?
1: ऐसे सुने तो है लेकिन लग का शहर है मारिए। दोनों तो आस पास में।
0: ओके, तो कुशीनगर देवरिया कुमार है। तो चलिए दिलीप जी, आपके पहले प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी कुशीनगर देवरिया को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके पहले प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही है। तैयार है आप दूसरे प्रश्न के लिए?
1: जी
0: जी। आपसे आपका दूसरा प्रश्न ये है भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? ऑप्शन ए क्रिकेट, बी कबड्डी, सी हॉकी। आपका समय शुरू है अब।
1: राष्ट्रीय खेल तो कबड्डी होता है मैडम।
0: राष्ट्रीय खेल कबड्डी है?
1: प्योर है ये तो। कबड्डी तो सबसे पहले शुरुआत था, हॉकी तो बाद में आई, क्रिकेट बाद में आया, पहले तो कबड्डी ही है।
0: जी तो लॉक कर दें?
1: जी
0: जी। तो दिलीप जी, आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी हॉकी को लॉक करते हैं। और आप
1: नहीं है, कबड्डी है, कबड्डी हॉकी नहीं है।
0: जी कबड्डी को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर गलत है। सही उत्तर होगा हॉकी।
1: शुरुआत तो कबड्डी था, चलिए शुरुआत में।
0: हम शुरुआत ये नहीं पूछे, राष्ट्रीय खेल पूछे हैं।
1: अच्छा अच्छा ठीक है, नमस्कार।
2: हेलो,
0: बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम के कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में।
2: नमस्कार मैम।
0: नमस्ते, नाम बता दीजिए अपना और कहाँ से?
2: नाम है सलोनी कुमारी बंजारी बनवस्ता से।
0: जी कैसी हैं सलोनी जी?
2: ठीक हूँ।
0: तो क्या हो रही थी अभी?
2: कुछ नहीं
0: जी। पढ़ाई कहाँ तक हुई है आपकी सलोनी जी?
2: बी ए।
0: जी अभी पढ़ाई चल रही है?
2: हाँ चल रही है
0: जी,
2: फाइनल ईयर है।
0: जी कैसा चल रहा है पढ़ाई अभी आपका?
2: अच्छी चल रही है।
0: सही बढ़िया है। तो मम्मी पापा का नाम बता दीजिए सलोनी जी।
2: मम्मी का नाम है सविता देवी और पापा जी का नाम है सुंदर लाल सा।
0: जी तो लिया थे आपसे आज का पहला प्रश्न।
2: हाँ
0: जी। तो सलोनी जी, आपसे आज का पहला प्रश्न ये है।
2: हाँ।

0: बुध को ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी? बुध को ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी? ऑप्शन ए गया, बी कुशीनगर, सी वाराणसी। आपका समय शुरू होता है अब।
1: मैम ऑप्शन दीजिएगा फिर से दोबारा।
0: ऑप्शन ए गया, बी कुशीनगर, सी वाराणसी।
1: गया।
0: श्योर है आप?
1: श्योर तो नहीं है।
0: तो लॉक कर दूं?
1: हाँ लॉक कर दीजिए।
0: जी तो चलिए सलोनी जी, आपके पहले प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए गया को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके पहले प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही है। तैयार हैं आप दूसरे प्रश्न के लिए?
1: हाँ।
0: आपसे आपका दूसरा प्रश्न ये है।
1: हाँ।
0: मारो फिरंगी को का नारा किसने दिया? मारो फिरंगी को का नारा किसने दिया? ऑप्शन ए भगत सिंह, बी मंगल पांडे, सी चंद्रशेखर आजाद। आपका समय शुरू होता है अब।
1: मैम ऑप्शन फिर से बोलिएगा।
0: ऑप्शन ए भगत सिंह, बी मंगल पांडे, सी चंद्रशेखर आजाद।
1: चंद्रशेखर आजाद।
0: चोर है?
1: शॉर्ट तो नहीं है पर लग रही है, यही होगा।
0: लॉक कर दूं?
1: हाँ लॉक कर दीजिए।
0: जी तो चलिए सलोनी जी, आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी चंद्रशेखर आजाद को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर जो है बिल्कुल गलत है। सही उत्तर होगा मंगल पांडे।
1: ठीक है
0: जी। हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में कॉल की बहुत बहुत धन्यवाद।
2: हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में समय हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलते हैं आप सबसे हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में। सुनते रहे रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम।
3: अब बेटा बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
4: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
5: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने। सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
6: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्रगोखो लोड गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।
7: जिले का गौरव संतोष मेडिकल हॉल, घोष मोड़, दरगाह रोड, गोपालगंज।
8: गोपालगंज जिले का प्रतिष्ठित अंग्रेजी दवा की दुकान संतोष मेडिकल हॉल।
9: हमारे यहाँ भारत के प्रसिद्ध डॉक्टरों द्वारा लिखी गई सभी प्रकार की अंग्रेजी दवाएं उपलब्ध हैं, जैसे गोरखपुर, पटना, कलकत्ता, लखनऊ, बनारस, चेन्नई और मुंबई के डॉक्टरों द्वारा लिखी गई दवाइयाँ भी मिलती हैं।
10: एक सूचना, संतोष मेडिकल हॉल अब चला गया है कॉलेज रोड चिराई घर के पहले गोपालगंज। संपर्क सूत्र है 62042434-03 62042434-03।
11: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
12: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं, कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं, अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
11: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
12: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
11: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99-554-97-644।
2: ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है रेडियो रिंजिम के रोमांचकारी खेल हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में। अगर आप भी हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में भाग लेना चाहते हैं और आजमाना चाहते हैं अपने ज्ञान और लक को, तो हर रविवार दोपहर 12 बजे से कॉल करें 80029-94-21 80029-94-21 पर। आइए लेते हैं अगले प्रतिभागी का कॉल।
13: हेलो
0: बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम के कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में।
13: जी नमस्ते।
0: नमस्ते, नाम बता दीजिए अपना और कहाँ से?
13: मैं राजन कुमार बोल रहा हूँ थाने से।
0: जी तो कैसे हैं राजन जी?
13: बढ़िया है, आप बताइए।
0: हम भी बढ़िया हैं।
13: जी
0: तो क्या करते हैं आप राजन कुमार?
13: मैं अभी BSc कंप्लीट करके सोच रहा हूँ। जी
0: तो पढ़ाई कैसे चल रही है आपकी?
13: पढ़ाई अच्छी चल रही है।
0: चलिए बढ़िया है। हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में इससे पहले भी कॉल किए हैं आप?
13: नहीं नहीं, ये फर्स्ट टाइम है।
0: अच्छा
13: जी,
0: तो कहाँ से पता चला आपको?
13: जी मेरे पापा रेडियो सुनते हैं, तो वही कितने दिन से बोल रहे थे बात कीजिए। हम बोले ठीक है लगाइए, आज बात करते हैं।
0: अच्छा अच्छा, चलिए बढ़िया है। तो लिया जाए आज का पहला प्रश्न आपसे।
13: जी
0: जी राजन जी, अपने मम्मी पापा का नाम बता दीजिए आप।
13: जी मेरे पापा का नाम है श्री रामाजी प्रसाद और मम्मी का नाम है प्रभावती देवी।
0: जी तो राजन जी, आपसे आज का पहला प्रश्न ये है

0: गोपालगंज जिले के किस प्रखंड में खनुआ नदी बहती है? गोपालगंज जिले के किस प्रखंड में खनुआ नदी बहती है? ऑप्शन
1: खनुआ नदी
0: जी
1: जी ऑप्शन
0: ऑप्शन ए बरौली, बी कटिया, सी कुचायकोट। आपका समय शुरू होता है अब।
1: जी बरौली को फिक्स कीजिए।
0: श्योर है?
1: नहीं श्योर नहीं है।
0: तो लॉक करूं?
1: जी जी लॉक कीजिए, देखा जाए लॉक कैसा है।
0: ओके तो चलिए राजन जी, आपके पहले प्रश्न के उत्तर ऑप्शन ए बरौली को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके पहले प्रश्न का उत्तर बिल्कुल गलत है। सही उत्तर होगा कटिया।
1: कटिया
0: जी। ओके हेलो फ्यूज कॉन्टेस्ट में कॉल किए, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: ओके थैंक यू मैम।
0: मोस्ट वेलकम।
2: दोस्तों ये रहा हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट का आज का एपिसोड। अगर आप भी हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में भाग लेना चाहते हैं और आजमाना चाहते हैं अपने ज्ञान और लक को, तो हर रविवार दोपहर 12 बजे से कॉल करें 8029294921 8029294921 पर और बने हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट के विनर। और हमें दीजिए अब जाने की इजाजत और रखिए अपना ख्याल, सुनते रहिए रेडियो रिमझिम 90.4 FM। नमस्कार।
3: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
4: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
3: सिर्फ एक से दो सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
4: पता जंगलिया मोहल्ला नूर मेडिकल के पास गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
5: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं, दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
6: और दुल्हन का लहंगा साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ। इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
7: मम्मी पापा मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा,
8: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
9: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
7: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथ।

0: गोपालगंज अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
1: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
0: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
1: और एक्सट्रीम 125R स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
0: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
0: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
1: कॉल नाउ 9656 59536 या 9656 57902।
2: रामू हरिया, कल तैयार रहिए लो, पराली जलाए चले के बा।
3: ठीक बा भैया।
4: ए भैया, एगो सूचना सुनला हा, कृषि विभाग द्वारा एगो सूचना दिया जा रहल बा कि खेत के अवशेष यानी पराली नहीं खे जरावे के, ना तो कृषि विभाग के कोनो योजना के लाभ ना मिली और ऊपर से जुर्माना भी लगी।
5: ऐसन का है, जरावला से काहे मना होता।
4: फसल के अवशेष जरला से हमनी के माटी, पर्यावरण और हमनी के खुद के स्वास्थ्य के बहुत नुकसान होता। फसल के अवशेष के जरे से माटी के उर्वरता कम हो जाला, जरूरी सूक्ष्म जीव भी नष्ट हो जाला और पर्यावरण में हानिकारक गैस निकलेला। 1 टन ठूठ जरला से 60 किलो कार्बन मोनोऑक्साइड और 1460 किलो कार्बन डाइऑक्साइड नियर जहरीला गैस वायुमंडल में निकलेला।
5: अरे हमरा तो जानकारी ना रहला कि एकरा से हमनी के पर्यावरण पर इतना नुकसान बा, लेकिन बतावो तू हमरा के एकर बढ़िया विकल्प का सरकार बतावता।
4: एकर बढ़िया विकल्प ये बाटे कि फसल के अवशेष के जराए के बजाय ओकरा के माटी में ही मिला ली। इसे हमनी के माटी में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम जैसन पोषक तत्व मिली, जोना से पैदावार में बढ़ोतरी हुई।
5: अच्छा, तो अब से ठूठ के हमनी के जराएब जा ना, एकरा के हमनी के माटी में मिलाएब जा, ताकि हमनी के माटी के उर्वरता बढ़ जाई और हमनी के पर्यावरण भी सुरक्षित रही। बहुत अच्छा कैलू भाई जानकारी दे के।
4: याद रखी, ठूठ कूड़ा नहा, खेती के गहना हा, एकरा के जराई मत, माटी में मिलाई। जिला कृषि विभाग गोपालगंज द्वारा जनहित में जारी।
6: इतना परेशान क्यों दिख रही हो मेघा?
7: आसपास हर जगह चाचा जी का इलाज करा लिया, अब लगता है उन्हें दिल्ली लेकर ही जाना पड़ेगा।
6: अरे अपने गोपालगंज में गोरखपुर, पटना और दिल्ली जैसे बेहतर मेडिकल सुविधाओं के साथ खुल गया है एम्स के पूर्व चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक रंजन जी के देखरेख में जिले का पहला वेंटिलेटर युक्त सक्षम हॉस्पिटल, जहां पर 24 घंटे ICU इमरजेंसी सेवा, एक्सपर्ट मेडिकल टीम द्वारा विभिन्न रोग जैसे हृदय रोग, शुगर, दमा, नस रोग, लकवा और पेट से जुड़ी गंभीर बीमारियों का अत्याधुनिक मशीनों के द्वारा सफलतापूर्वक इलाज किया जा रहा है।
8: आज विजिट करें सक्षम हॉस्पिटल, कमला राय कॉलेज रोड, इंडियन गैस एजेंसी के बगल में, गांधी टेक्निकल कॉलेज के सामने, डॉक्टर कॉलोनी, गोपालगंज। कॉल करें 7050061444 या 7870331444।
9: ओए
10: टंटन, प्रमोशन लेटर।
9: कांग्रेचुलेशंस।
10: थैंक यू।
9: वाओ
10: बेबी, बैंगलोर।
9: आई होप यू सेड नो।
10: नो, मैं नो क्यों बोलूंगी?
9: हाँ, मेरा क्या होगा, एज इन हमारा क्या होगा?
10: बाबा, तुम्हारे हमारे की बात नहीं है, तुम्हें पता तो है ये प्रमोशन मुझे कितनी मुश्किल से मिली है। आई हैव टू गो टू बैंगलोर।
9: अगर तुमने डिसाइड कर लिया तो फिर मुझसे पूछने क्यों आई है?
10: हेलो, मैं पूछने नहीं आई हूँ, मैं बताने आई हूँ। आई डोंट हैव टू आस्क यू एनीथिंग और मैं जा रही हूँ बैंगलोर। व्हाटएवर।
9: लिसन बेबी,
10: डोंट टॉक टू मी।

0: तो तुम बैंगलोर कब जा रही हो?
1: मैं बैंगलोर नहीं जा रही, बैंगलोर जाना कैंसिल।
0: तो मैं अकेला बैंगलोर में क्या करूंगा? बैंगलोर तो तुम जा रही हो।
1: मैं नहीं जा रही बैंगलोर, तुम भी नहीं जा रहे हो, कोई बैंगलोर नहीं जा रहा।
0: यार तुम लड़ रही हो।
1: Listen, you're not going to Bangalore and don't trouble me now. सुबह से रो रही हूँ मैं।
0: और my fault ना?
1: और क्या? सुबह से रोए जा रही हूँ।
0: अरे भी हर बार तो रोती
1: हूँ। You don't care about my feelings only. So I don't want to talk.
0: चलो हम दोनों साथ में।
1: You idiot, you idiot.

0: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: आपका संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 9857788291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं। नंबर है 9857788291 या 9520374088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
2: कान में दर्द के मारे जान ही निकल रही है, कहाँ जाऊँ, किससे इलाज कराऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा।
3: इसमें इतना समझना क्या, आज ही चलो डॉक्टर MD सादाब के पास, जो है ENT स्पेशलिस्ट।
4: जी हाँ, उत्तर भारत के सबसे विश्वसनीय कान नाक एवं गले के विशेषज्ञ डॉक्टर MD सादाब पिछले 10 वर्षों से सिवान में सेवा दे रहे हैं, जो कि 10,000 से भी ज्यादा कान नाक गले के सर्जरी का अनुभव रखते हैं। साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड धारक मरीजों का निशुल्क में इलाज किया जाता है। तो आज ही पहुँचिए इस वक्त ENT केयर सेंटर सिसवन ढाला के उत्तर RK मॉडल स्कूल के बगल सिवान में।

0: अरे मुन्नी तुम आ गई, चल मेरे कान का झुमका ला।
1: ओ माई गॉड, आज फिर से भूल गई।
0: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
1: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
2: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी,
1: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
2: तो अगर आपको कुछ अच्छा कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड, एक्सिस बैंक के सामने, तड़कुल के पास, गोपालगंज।
1: याद रहे, शादी विवाह, जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है।
2: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।
3: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे, और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
4: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
3: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
4: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99399।

0: शादी की ज्वेलरी लेनी है। हाँ,
1: भरोसे वाले चलेंगे,
0: पर दिया की पसंद भी जरूरी है
1: और कीमत भी।
0: प्योरिटी का सर्टिफिकेशन तो चाहिए ही।
2: एसपी ज्वेलर्स पे हमें पूरा भरोसा है।
3: प्योरिटी यानी मामी सर्टिफाइड, भरोसा और सही प्राइस यानी पापा सर्टिफाइड, और डिजाइन तो मेरा सर्टिफिकेशन।
2: गहनों की खरीदारी के लिए आप भी आए एसपी ज्वेलर्स, क्योंकि रिश्ते हर रोज नहीं बनते।
4: 22 कैरेट 18 कैरेट के जेवर, शादी सेट और साथ ही पुराने जेवर बदलकर नए जेवर के करे खरीदारी।
2: आज यहाँ एसपी ज्वेलर्स जो है डीएवी गर्ल्स स्कूल के सामने स्टेशन रोड गोपालगंज,
5: और अब एसपी ज्वेलर्स का नया ब्रांच मेन रोड गोपालगंज इन फ्रंट ऑफ बासु गारमेंट्स। सभी प्रकार के गहनों के मेकिंग चार्ज पर 25% की भारी छूट।
2: कॉल करे 85070-32042 पे। तब भौजी, आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नू सारा मार्केट, देख लेनी नू सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
6: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है, पर कोनो जचल है ना।
2: ई बात बा, तो ऐसन करी कि अब चली सीधे हमरा साथे कमल श्री में। महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
7: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट फर्स्ट फ्लोर,

0: अरे ए चाची, जब आँख से साफ नहीं खेलो को तो रोड पर लड़खड़ा के कहे चलतनी, और तहार मोतियाबिंद का ऑपरेशन होके वाला रहनु, ओकर का भइल?
1: अरे ए बबू, परेशानी तो बा, लेकिन ऑपरेशन से हमके बहुते डर लागेला। सुनले बानी की आँख में सुई लागेला, काफी दर्द होत होइनु।
0: अरे बा चाची, तू कावना दुनिया में बारू। अब अपना गोपालगंज में चेन्नई के डॉक्टर एस हैदर जी आ गइल बनी। यहाँ के आँख में बिना सुई लगौले, बिना चीर फाड़ कइले और बिना टाका लगौले फेको मशीन के द्वारा आँख के ऑपरेशन करतनी। तो तू इनके लगे काहे न कुचल जा, आँख में कोनो तरह के दर्द भी ना होई और ऑपरेशन भी हो जाए।
2: आंखों से जुड़ी बीमारियों के सफल इलाज के लिए आज ही मिले सिवान के सुपर सिद्ध डॉक्टर इसराइल की सुपुत्री डॉक्टर एस हैदर से। साथ ही हर शुक्रवार को मिले ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट डॉक्टर एम ए अकबर जी से। ध्यान रहे, चेन्नई आई केयर अब चला गया है कमला राय कॉलेज रोड यमहा शोरूम के सामने रालसन होटल के पश्चिम गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 9903569015 पे।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।

0: अरे स्टीयरिंग हिल क्यों रहा है और ये टायर जल्दी घिस क्यों रहे हैं?
1: अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा तो समझ जाइए, टायर को चाहिए अलाइनमेंट और बैलेंसिंग।
2: और इसके लिए जिले में भरोसे का एक ही नाम है, मिश्रा टायर्स, अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग।
1: यहाँ होता है कंप्यूटराइज्ड व्हील अलाइनमेंट, व्हील बैलेंसिंग, 3D अलाइनमेंट, डिजिटल बैलेंसिंग, सब कुछ आधुनिक मशीनों से।
2: साथ ही सभी कंपनी के टायर ट्यूब बेहद किफायती दाम पर उपलब्ध हैं।
1: एक बार सेवा का मौका जरूर दें। विजिट करें मिश्रा टायर्स कंप्यूटराइज्ड अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग, शिव मंदिर पोखरा के सामने, NH 27 बंजारी गोपालगंज।
2: रोड सपोर्ट या जानकारी के लिए कॉल करें 8825214946।
3: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
4: अरे तो उसे डांटती क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
5: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
6: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
5: आज ही आए JB हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
3: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।

0: तब भौजी आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नु सारा मार्केट, देख लेनी नु सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
1: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है, पर कोनो जचल है ना।
0: ई बात बा तो ऐसा करी कि अब चली सीधे हमारा साथे कमल श्री में, महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री। कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
2: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
3: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
4: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
3: श्री गोपाल मोटर्स, गोपालगंज में पाए, स्प्लेंडर प्लस सिर्फ 86,168 रुपए में, HF डिलक्स सिर्फ 75,405 रुपए में, ग्लैमर एक्स सिर्फ 97,456 रुपए में, एक्सट्रीम 125R सिर्फ 110,881 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
4: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
3: या अभी कॉल कीजिए 92899-22567 या 97-7146-164।
4: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा,
5: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद हैं अनुभवी डॉक्टर, डॉक्टर स्वाति के गुप्ता MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन, SVBPN, न्यू दिल्ली।
4: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
3: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
4: संपर्क 99-393-65-930।
6: अपने जिले के मशहूर डॉक्टर JJ शरण MD फिजिशियन अब बैठ रहे हैं सुबह 10 बजे से आशा मेडिको जनता सिनेमा रोड गोपालगंज, और डॉक्टर JJ शरण जी शाम 5 बजे से 7 बजे तक बैठ रहे हैं अपने निवास स्थान शबनम होटल के पीछे, आजाद नगर, गोपालगंज।
7: डॉक्टर साहब के यहाँ पर्ची का नंबर मोबाइल से भी लगाया जा सकता है।
8: आशा मेडिको में किसी भी प्रकार की लिखी दवाएं मिलती है, मोबाइल से दवा का ऑर्डर भी किया जा सकता है। मोबाइल नंबर है 76545-67666।
0: एक सूचना, डॉक्टर साहब रविवार को भी दोपहर 12 से 3 बजे तक बैठते हैं।

हेलो हाय नमस्ते नमस्कार प्रणाम सलाम, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप लोग मस्त एंड स्वस्थ होंगे और मैं भी मस्त एंड स्वस्थ आप सभी के बीच उपस्थित हो चुका हूं। मैं सोनू SMS फरमाइश के साथ रेडियो रेम 96.4 FM पे समय 9:32 हो रहे हमारे स्टूडियो घड़ी में और कार्यक्रम शुरू होने जा रहे हैं। यदि आप इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं, अपने पसंद के गाने सुनना चाहते हैं तो बिल्कुल सुन सकते हैं। इसके लिए आप सभी को टेक्स्ट मैसेज करना है हर रोज की तरह और पुराने गाने का फरमाइश करना है। यहाँ पे कुछ मैसेज पहुँचे हुए तो मैसेज को शामिल करते हुए इस कार्यक्रम को हम शुरू करते हैं। और पहला मैसेज हमारे पास पहुँचा हुआ है और लिखा गया है कि हेलो हाय कैसे हैं आप और संग नहीं हो लगता दिल तेरे बिना। और इस मैसेज को करती हैं मनीषा फ्रॉम अमोह मौजम से। तो बिल्कुल आपके गाने के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और लिखा गया है कि आज बजा दीजिएगा। और इस मैसेज को पहुंचाने वाले हमारे श्रोतागण पहले मैसेज करते हैं कि परसों नहीं ना बजाए गाना मेरा, आज बजा दीजिएगा, मैं देर करता नहीं देर हो जाती है। यही सॉन्ग सुनना है बीपुल सिंह गोपालगंज से। तो बिल्कुल बात तो सही है, कोई जानबूझकर देर थोड़ी ये करता है, किसी कार्य में उलझ जाता है जिसके कारण देर हो जाती है। और आपकी भी फरमाइश हम प्ले करेंगे। और आगे मैसेज, हेलो सर नमस्कार, राधे राधे सर जी, मैं सुजीत कुमार बस्तरा राजा लालगंज। तो बिल्कुल आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ लिखा गया है कि एक्सक्यूज मी, हाय हेलो सुनो भाई कैसे हैं। तो बिल्कुल बढ़िया है। और कल वाला सॉन्ग, तो कल वाला सॉन्ग नहीं सुनाएंगे, आप दूसरे गाने का फरमाइश करें, हम बिल्कुल पूरा करने की कोशिश करेंगे। MD महमूद महमूद जी। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि वेलकम सर जी, लेट हो गई आते आते, मैं दीप्ति कुमारी घर दतिवना से। बिल्कुल क्या ही करें, ऐसे कार्य में उलझे रहते हैं कि उसके किए बिना इसमें एंट्री ही नहीं मिलती है जब तक वो कंप्लीट ना हो जाए। जैसे कंप्लीट होता है आप सभी के बीच उपस्थित हो जाते हैं। और फिलहाल आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में। और कह रहे हैं कि मुझे तो लगा कि आज आप नहीं आएंगे, ऐसा नहीं है। यदि हम प्रेजेंट हैं तो इस कार्यक्रम में भी प्रेजेंट होने की कोशिश करते हैं। और आगे मैसेज पहुँचा हुआ है, लिखा गया है कि हेलो हाय सर जी, नमस्कार सर जी, कैसे हैं सर जी। और मैं प्रीति रैदास विलेज लकड़ी दरगाह डिस्ट्रिक्ट सिवान बिहार से, और आज मुझे सॉन्ग सुनना है। फिलहाल स्वागत है, सॉन्ग की फरमाइश पहुंचती है तो पूरा करने की कोशिश रहेगा। और आगे मैसेज कई पहुंच रहे हैं तो मैसेज को रोकते हैं और गाने के साथ इस कार्यक्रम को हम शुरू करते हैं। और पहले गाने की फरमाइश हम प्ले करते हैं। मनीषा इस गाने की फरमाइश करती हैं, नहीं यो लगता दिल तेरे बिना।

कभी प्यारा सॉन्ग रेडियो रेमझिम 94 एफएम पे सुन रहे हैं आप सब और सोशल लाइफ में फरमाइश। यदि आप भी सुनना चाहते हैं तो बिल्कुल सुन सकते हैं। इसके लिए आप सभी को टेक्स्ट मैसेज करना है। मैसेज का नंबर है 72 77 16 65 96। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और आगे गाने की फरमाइश हमारे श्रोतागण चेंज करते हुए महबूब जी करते हैं, तो बिल्कुल आपकी फरमाइश हम प्ले करेंगे। और यहाँ पे मैसेज पहुंचा है थैंक्स सॉन्ग सुनाने के लिए, आपको भी धन्यवाद है रेडियो रेमझिम सुनने के लिए। आगे मैसेज करती हैं प्रीति रैदास लव सॉन्ग, और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है प्लीज़ मेरा भी सॉन्ग सुना दीजिए। बिल्कुल अभी तो एक ही गाने हम सभी सुने हुए हैं, एक एक करके सबकी फरमाइश पूरा करने की कोशिश है। आगे बढ़ते हैं और अगले गाने की फरमाइश हम प्ले करते हैं। कहते हैं कि परसों नहीं सुनाए और इन्होंने गाने की फरमाइश किए हुए है, मैं देर करता नहीं देर हो जाती है। विपुल सिंह गोपालगंज से जुड़े हुए हैं, तो चलिए आपके गाने हम प्ले करते हैं और सुनते हैं हम सभी हिना मूवी से रेडियो रेमझिम 94 एफएम पे।

0: रामू हरिया कल तैयार रहिए लो परारी जलाए चले के बा
1: ठीक बा भैया।
2: ए भैया एगो सूचना सुन ला हा। कृषि विभाग द्वारा एगो सूचना दिया जा रहा बा कि खेत के अवशेष यानी पराली नहीं खे जरावे के ना तो कृषि विभाग के कोनो योजना के लाभ ना मिली और ऊपर से जुर्माना भी लगी।
3: ऐसा का है जरावला से काहे मना होता।
2: फसल के अवशेष जरला से हमनी के माटी पर्यावरण और हमनी के खुद के स्वास्थ्य के बहुत नुकसान होता। फसल के अवशेष के जरे से माटी के उर्वरता कम हो जाला, जरूरी सूक्ष्म जीव भी नष्ट हो जाला और पर्यावरण में हानिकारक गैस निकलेला। एक टन ठूठ जरला से 60 किलो कार्बन मोनोऑक्साइड और 1460 किलो कार्बन डाइऑक्साइड नियत जहरीला गैस वायुमंडल में निकलेला।
3: अरे हमरा तो जानकारी ना रहला कि एकरा से हमनी के पर्यावरण पर इतना नुकसान बा, लेकिन बतावो तू हमरा के एकर बढ़िया विकल्प का सरकार बतावता।
2: एकर बढ़िया विकल्प ये बाटे कि फसल के अवशेष के जराए के बजाय ओकरा के माटी में ही मिला ली। इससे हमनी के माटी में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम जैसन पोषक तत्व मिली, जोना से पैदावार में बढ़ोतरी हुई।
3: अच्छा तो अब से ठूठ के हमनी के जराएब जा ना, एकरा के हमनी के माटी में मिलाएब जा, ताकि हमनी के माटी के उर्वरता बढ़ जाए और हमनी के पर्यावरण भी सुरक्षित रही। बहुत अच्छा कैलू भाई जानकारी दे के।
2: याद रखी ठूठ कूड़ा ना, खेती के गहना, एकरा के जराई।

0: साथ माटी में मिलाई। जिला कृषि विभाग गोपालगंज द्वारा जनहित में जारी।
1: घर पर बैठे बेरोजगार युवाओं के लिए अब इंतजार नहीं, एक सुनहरा मौका आपका इंतजार कर रहा है।
2: छत्रपति शिवाजी महाराज फायर एंड सेफ्टी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गोपालगंज लाया है आपके लिए शानदार करियर बनाने का अवसर।
1: अगर आप 10+2 डिप्लोमा या ग्रेजुएट पास है तो बनिए एक प्रोफेशनल सेफ्टी ऑफिसर और पाए अपने भविष्य को एक नई दिशा।
2: यहां उपलब्ध है 1 साल का सेफ्टी डिप्लोमा ADIS, NEBOSH और IOSH, डिप्लोमा इन एनवायरमेंट जैसे प्रोफेशनल कोर्स,
1: और सबसे खास बात 100% जॉब गारंटी। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
2: मोबाइल नंबर 8511168095 और बात करें अमरेंद्र सर से।
1: पता छत्रपति शिवाजी महाराज फायर एंड सेफ्टी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, बंजारी रोड HP पेट्रोल पंप के सामने, गोपालगंज।
3: जो लोग डायबिटीज से परेशान हैं, वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य SP त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलता पूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य SP त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज, जैसे
4: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टेबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, साइटिका, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु छिनताई और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस तथा
3: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य SP त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलता पूर्वक करते हैं।
0: वैद्य SP त्यागी जी से मिलने का पता
3: प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में।
0: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 99554943
3: और 9097160602।
2: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट, KGMU, लखनऊ।
2: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
1: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
2: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
1: पता कमला राय कॉलेज रोड नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
2: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
5: अरे ए चाची, जब आंख से साफ नहीं खेलो को तो रोड पर लड़खड़ा के काहे चलतनी, और तहार मोतियाबिंद का ऑपरेशन होके वाला रहनु, ओकर का भइल?
6: अरे ए बबू, परेशानी तो बा, लेकिन ऑपरेशन से हमके बहुते डर लागेला। सुनले बानी की आंख में सुई लागेला, काफी दर्द होत होइनु।
5: अरे बाक चाची, तू कावना दुनिया में बारू। अब अपना गोपालगंज में चेन्नई के डॉक्टर एस हैदर जी आगल बनी। यहाँ के आंख में बिना सुई लगौले, बिना चीड़फाड़ कइले और बिना टाका लगौले फेको मशीन के द्वारा आंख के ऑपरेशन करतनी। तो तू इनके लगे काहे न कुचल जा, आंख में कोनो तरह के दर्द भी ना हुई और ऑपरेशन भी हो जाए।
7: आंखों से जुड़ी बीमारियों के सफल इलाज के लिए आज ही मिले सिवान के सुपर सिद्ध डॉक्टर इसराइल की सुपुत्री डॉक्टर एस हैदर से। साथ ही हर शुक्रवार को मिले ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट डॉक्टर MA अकबर जी से। ध्यान रहे, चेन्नई आई केयर अब चला गया है कमला राय कॉलेज रोड, यमहा शोरूम के सामने, रालसन होटल के पश्चिम, गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99053969015 पे।

छोटा सा ब्रेक हो गया खत्म और ब्रेक बाद पुनः आप सभी का स्वागत है रेडियो रामछिम 90.4 एफएम पे सोशल एसएमएस फरमाइश का। और समय हो रहे 9:47 आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और इस मैसेज को पहुंचाने वाले हैं गाने को चेंज करते हुए मैसेज किए हुए, तो गाना प्ले कीजिए। गाने का बोल है इश्क में हम तुम्हें क्या बताएं, किस कदर चोट खाए हुए हैं। इस मैसेज को करते हैं एमडी महमूद जी, तो बिल्कुल आपके गाने हम प्ले करेंगे। आगे कुछ मैसेज पहुंचे हुए तो मैसेज देखें। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है मस्त सुपर सॉन्ग मैसेज करती है मनीषा। आगे मैसेज राम राम सर जी, आज मुझे सॉन्ग सुनना है ए दिल तू उसे भूल जा। इस मैसेज को करते हैं बालापुर से सनोज कुमार जी, तो बिल्कुल आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में। और आगे मैसेज सर नमस्ते, मुझे गाना सुना दीजिए फिल्म करण अर्जुन का, तो बिल्कुल आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में। अंकुश कुमार एक डरवा गोपालगंज से जुड़े हुए हैं। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है सोनू भाई नमस्कार, सभी दोस्तों को नमस्कार बोलिएगा, बिल्कुल आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में। और इस मैसेज को करते हैं राजेश प्रसाद जी सूरत गुजरात से, कह रहे हैं कि आपको सुन रहे हैं, बिल्कुल सुनते रहिए और बने रहे हमारे साथ। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और लिखा गया है कि हम भी हैं, तो बिल्कुल आप भी हैं, लेकिन आप कौन हैं अपना परिचय दें। केवल हम भी हैं कहने से तो कोई जानेगा नहीं और ना ही कोई गाने की नाम बताई गई है, तो यदि आप लोग जुड़ना चाहते हैं तो पूरे परिचय के साथ जुड़े और गाने के साथ जुड़े ताकि आपकी फरमाइश भी हम सुनाएं और सुनकर कुछ इंजॉय किया जाए। तो फिलहाल आगे बढ़ते हैं और गाने को प्ले करते हैं और सुनते हैं अगली फरमाइश महमूद जी की और इंजॉय करते हैं हम सभी।

4FM सुन रहे हैं आप सब और कार्यक्रम चल रहा है SMS फरमाइश और सो चल रहा है SMS फरमाइश का और समय हो रहे हैं 9:54 और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और आगे गाने की फरमाइश करते हैं हमारे श्रोतागण बस्तरा राजा लालगंज उत्तर प्रदेश से और इस गाने की फरमाइश करते हैं सुजीत कुमार जी और गाने का बोल देते हैं आंखों में नींद ना दिल में करार मोहब्बत क्या चीज होती है यार प्लीज बजा दीजिएगा। तो चलिए आपके गाने हम बजाते हैं और सुनते हैं आपके पसंद के गाने। कुछ और भी मैसेज पहुंचे देखें आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और मैसेज करते हैं अरे फूल है गुलाब का खुशबू लिया करो मानते हैं कि दिल आपका अपना है पर कभी कभी गैरों को भी दिया करो दिल अपना। बड़रिया थाना क्षेत्र बालापुर से सनोज कुमार जी मैसेज करते हैं बिल्कुल। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है लिखा गया है कि बहुत अच्छा लागल गाना सुन के नमस्कार नमस्कार जीवन एक खेल है प्यार एक धोखा है इसमें ना पड़ो ये बहुत रुलाता है गाना दिल तो पागल है दिल दीवाना है। सभी श्रोताओं के साथ श्रावण शर्मा जी जुड़े हुए हैं तो बिल्कुल आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और मैसेज करते हैं हमें तो बहुत अच्छा लगा गाना सुनो भाई आपको कैसा लगा बिल्कुल बढ़िया गाना। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और मैसेज में कुछ से लाइनें भी हैं और इस मैसेज को करते हैं गुलाम हुसैन जी तो बिल्कुल आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में। और कहते हैं कि वादा करते हैं उम्र भर तेरा इंतजार कर लेंगे तेरे जाने के बाद भी तुझसे प्यार करने मना मेरी किस्मत में तू नहीं लेकिन खुदा से तुझे पाने की दुआ हर बार मांगी है। और इन्होंने गाने की भी फरमाइश करते हैं तो बिल्कुल आपकी भी फरमाइश प्ले करने की कोशिश रहेगा। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और गाने को प्ले करते हैं और सुनते हैं अगली फरमाइश।

0: अपने जिले के मशहूर डॉक्टर जे शरण एमडी फिजिशियन अब बैठ रहे हैं सुबह 10 बजे से आशा मेडिको जनता सिनेमा रोड गोपालगंज, और डॉक्टर जे शरण जी शाम 5 बजे से 7 बजे तक बैठ रहे हैं अपने निवास स्थान शबनम होटल के पीछे आजाद नगर गोपालगंज।
1: डॉक्टर साहब के यहाँ पर्ची का नंबर मोबाइल से भी लगाया जा सकता है।
2: आशा मेडिको में किसी भी प्रकार की लिखी दवाएं मिलती है, मोबाइल से दवा का ऑर्डर भी किया जा सकता है। मोबाइल नंबर है 7545 67666।
3: एक सूचना, डॉक्टर साहब रविवार को भी दोपहर 12 से 3 बजे तक बैठते हैं।
4: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है, रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
5: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
6: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल,
7: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
6: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
7: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
6: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी लैप्रोस्कोपिक सर्जन, और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
7: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
6: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा, NH 27 गोपालगंज।
7: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100, या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
8: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
9: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से, संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला गोरखपुर।
8: आज ही संपर्क करें 7388894700 या 9198886973।
10: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
6: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिनोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
7: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल।
6: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
7: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
6: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल अम्बेडकर चौक हॉस्पिटल रोड गोपालगंज, अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास बेतिया हाता गोरखपुर।
7: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
6: संपर्क करें 84710309 या 9765665750।
11: सुनिए सुनिए सुनिए,
12: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
11: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
12: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
11: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
13: टुडे MGM 90.4 FM सुन रहे आप सब, और कार्यक्रम चल रहा है SMS फरमाइश का, और काफ़ी प्यारे गाने सुन रहे थे हम सभी, और सो चल रहा है SMS फरमाइश के साथ। यदि आप बने हुए हैं तो बिल्कुल आप भी बने रहें, कहीं आपका गाना निकल ना जाए। और आगे बढ़ते हैं, और आगे गाने की फरमाइश यहाँ पे पहुँचा हुआ है, और इस गाने की फरमाइश करती हैं प्रीति रैदास, विलेज लकड़ी दरगाह, डिस्ट्रिक्ट सिवान, बिहार से, और इन्होंने गाने की फरमाइश की हैं तेरे वादे की मुलाकात अभी बाकी है। तो इनके गाने हम प्ले करेंगे, आगे कुछ मैसेज पहुँचे हुए थे, मैसेज देख ले। आगे मैसेज पहुँचा हुआ है, लिखा गया है कि सॉन्ग सुनना है इश्क न करना। बिल्कुल आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में, और इस मैसेज को पहुँचाने वाले रहमत अली फ्रॉम जगमलवार से, तो बिल्कुल आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। और आगे मैसेज पहुँचा हुआ है, और लिखा गया है कि सर मेरा गाना बजेगा कि नहीं बता दीजिए। तो बिल्कुल आपके भी गाने हम बजाने की कोशिश में हैं और एक एक करके फरमाइश तो पूरा कर ही रहे हैं। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, बहुत बहुत धन्यवाद सर जी आपका, बिल्कुल आपको भी धन्यवाद है रेडियो रिमझिम को सुनने के लिए और आगे भी सुनते रहिए, बने रहे हमारे साथ। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है मेरे गाने का बोल है, जीता था जिसके लिए मरता था, लाडली नवादा से जुड़ी हैं। तो बिल्कुल आपकी भी फरमाइश हम प्ले करेंगे और इन्होंने काफ़ी पहले मैसेज किए हैं और फिर से रिपीट किए हैं, तो खुश है कि तो इसके बाद आपके भी गाने हम प्ले कर पाएँ। आगे बढ़ते हैं और अगले गाने की फरमाइश प्ले करते हैं, सुनते हैं, फरमाइश को इंजॉय करते हैं हम सभी।

कभी प्यारा संग रेडियो रेमसिम 90.4 FM पे तेरे वादे की मुलाकात तभी बाकी है। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि नमस्ते, नमस्कार, प्रणाम, जय माता दी। सुनो भाई, कल का मेरा तो बिल्कुल आज तो थोड़े लेट कर दिए हैं और आगे कई श्रोतागण अपने लाइन में लगे हुए हैं, तो आप लोग जब भी मैसेज करें तो थोड़ा समय देखते हुए जीत करें। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, इस मैसेज को करते हैं शिव सागर जी। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और अगले गाने की फरमाइश करती हैं लाडली नवादा से, और गाने का बोल देती हैं, जीता था जिसके लिए मरता था। इन्होंने गाने की फरमाइश की, तो इनके गाने हम प्ले करते हैं और सुनते हैं, इंजॉय करते हैं हम सब।

काफी प्यारा सॉन्ग सुन रहे हम सभी रेडियो रामसीम 94.4 FM पे शो चल रहा है। इसमें इस फरमाइश का और समय जो है समाप्ति का हो गया है, तो इस कार्यक्रम को यहीं पे समाप्त करते हैं। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है और लिखा गया है कि सर मेरा गाना नहीं बजेगा क्या? बिल्कुल, आपके गाने बजाते हुए इस कार्यक्रम को हम समाप्त कर रहे हैं रहमत अली जी। आगे मैसेज पहुँचा हुआ लिखा गया है कि मज़ा आ गया, सुपर सॉन्ग सर जी। और मैसेज करते हैं सुजीत कुमार बस्तरा राजा लालगंज से। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और मैसेज करते हैं कि आज मेरा SMS फॉर माई सॉन्ग मत सुनाइए, बुक कर लीजिए, अगले सप्ताह सुना दीजिएगा। बिल्कुल कोशिश रहेगा सुनोज कुमार जी। आगे बढ़ते हैं, अब गाने को प्ले करते हुए इस कार्यक्रम को समाप्त करते हैं। फिर मिलते हैं अगले सप्ताह। आप सब सुनते रहें रेडियो रामझिम 94.4 FM, जो हमेशा से कहता है सुनो दिल से। नमस्कार।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।
1: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
2: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
1: श्री गोपाल मोटर्स, गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस सिर्फ 86,168 रुपए में, HF डिलक्स सिर्फ 75,405 रुपए में, ग्लैमर एक्स सिर्फ 97,456 रुपए में, एक्सट्रीम 125R सिर्फ 110,881 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
2: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
1: या अभी कॉल कीजिए 92899-22567 या 97-714-86-164।
3: ठक ठक
4: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
5: अच्छा मिला ही नहीं।
4: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
5: जी हाँ, कमल श्री, याद रखें सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
4: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
5: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
6: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
7: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
5: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
8: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
5: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम RR रोड, गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।

0: क्या चाहते हो? मैं ना जाऊँ अपनी दोस्त की शादी में।
1: क्यों, क्या हुआ है?
0: तुम्ही ने तो कहा था मुझे डिजाइनर लहंगा, साड़ी और गाउन दिलाओगे।
1: अरे तो कौन सी बड़ी बात है, आज ही चलते हैं गोपालगंज में लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स। वहाँ तुम्हें तुम्हारी मन पसंद के अच्छे अच्छे कपड़े मिल जाएंगे।
0: फिर ये भी ठीक है, चलो चलते हैं लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स।
2: शादी विवाह या किसी भी शुभ अवसर पर एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स जो है मेन रोड गोपालगंज में।
3: अगर आप चाहते हैं अपने बच्चों के लिए स्मार्ट एजुकेशन, सुरक्षित एवं संस्कार के साथ शिक्षा, साफ सुथरा माहौल, एसी हॉस्टल की उत्तम व्यवस्था और अपने बच्चों का उज्जवल भविष्य, तो गोपालगंज में एक ही नाम,
4: बाबू भगवान सहाय सेंट्रल स्कूल। सीबीएसई पैटर्न पर आधारित एक कंप्लीट को एजुकेशनल स्कूल, क्लास 10th तक। सेशन 2026 से 27 के लिए प्ले ग्रुप से लेकर कक्षा 8वीं तक एडमिशन ओपन।
3: यहां मिलती है वेल क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी, स्मार्ट क्लासेस, मॉडर्न फैसिलिटीज, कंप्यूटर क्लासेस विद लैब और इंग्लिश स्पोकन क्लासेस।
4: कमजोर छात्रों के लिए एक्स्ट्रा क्लासेस की विशेष व्यवस्था, नीट एंड क्लीन एटमॉस्फेयर और सीसीटीवी कैमरा की सुविधा,
3: बस एवं आवासीय हॉस्टल सुविधा उपलब्ध, साथ ही सैनिक स्कूल, नवोदय, नेतरहाट और अलीगढ़ जामिया की तैयारी की सुविधा 100% सफलता की गारंटी के साथ। पता, हरखुआ भगवान नगर, वार्ड नंबर 24, विष्णु शुगर मिल के पश्चिम, गोपालगंज।
4: संपर्क करें 800-222-1969 या 9117018350।
5: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।

0: जो लोग डायबिटीज से परेशान हैं, वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलतापूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य एसपी त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज जैसे
1: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टैबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, साइटिका, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु छिनताई और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस तथा
0: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलतापूर्वक करते हैं।
2: वैद्य एसपी त्यागी जी से मिलने का पता
0: प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में।
2: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 99554943
0: और 90971602।

0: पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।
1: 21 वर्षों से सिर्फ पढ़ाई नहीं, भविष्य गढ़ने की पहचान है एक नाम, सेंट जॉन स्कूल, सासा मूसा गोपालगंज, शाखा राजापुर बाजार गोपालगंज।
2: और अब 30 अप्रैल तक एडमिशन बिल्कुल फ्री।
1: CBSE पैटर्न पर आधारित शिक्षा, नर्सरी से क्लास 10वीं तक, कंप्यूटर एजुकेशन, बस फैसिलिटी, रेगुलर टेस्ट और पेरेंट मीटिंग्स, एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ सेफ और पीसफुल कैंपस।
2: सेंट जॉन स्कूल में बच्चों को सिर्फ सिखाया नहीं जाता, उन्हें तराशा जाता है।
1: तो देर मत कीजिए, 30 अप्रैल तक फ्री एडमिशन का लाभ उठाइए।
2: सेंट जॉन स्कूल, सासा मूसा गोपालगंज। कॉल अस 9939721308।

0: ओ मेरी चांदनी, तू मेरी चांदनी।
1: इतना परेशान क्यों दिख रही हो मेघा?
2: आसपास हर जगह चाचा जी का इलाज करा लिया, अब लगता है उन्हें दिल्ली लेकर ही जाना पड़ेगा।
1: अरे अपने गोपालगंज में गोरखपुर, पटना और दिल्ली जैसे बेहतर मेडिकल सुविधाओं के साथ खुल गया है एम्स के पूर्व चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक रंजन जी के देखरेख में जिले का पहला वेंटिलेटर युक्त सक्षम हॉस्पिटल, जहां पर 24 घंटे ICU इमरजेंसी सेवा, एक्सपर्ट मेडिकल टीम द्वारा विभिन्न रोग जैसे हृदय रोग, शुगर, दमा, नस रोग, लकवा और पेट से जुड़ी गंभीर बीमारियों का अत्याधुनिक मशीनों के द्वारा सफलतापूर्वक इलाज किया जा रहा है।
2: आज विजिट करें सक्षम हॉस्पिटल, कमला राय कॉलेज रोड, इंडियन गैस एजेंसी के बगल में, गांधी टेक्निकल कॉलेज के सामने, डॉक्टर कॉलोनी, गोपालगंज। कॉल करें 7050061444 या 7870331444।
3: रामू हरिया, कल तैयार रही लो पराली जलाए चले के बा?
4: ठीक बा भैया।
5: ए भैया, एगो सूचना सुन ला हा। कृषि विभाग द्वारा एगो सूचना दियल जा रहल बा कि खेत के अवशेष यानी पराली नहीं खे जरावे के, ना तो कृषि विभाग के कोनो योजना के लाभ ना मिली और ऊपर से जुर्माना भी लगी।
6: ऐसन का है, जरावला से काहे मना होता?
5: फसल के अवशेष जरला से हमनी के माटी, पर्यावरण और हमनी के खुद के स्वास्थ्य के बहुत नुकसान होता। फसल के अवशेष के जरे से माटी के उर्वरता कम हो जाला, जरूरी सूक्ष्म जीव भी नष्ट हो जाला और पर्यावरण में हानिकारक गैस निकलेला। 1 टन ठूठ जरला से 60 किलो कार्बन मोनोऑक्साइड और 1460 किलो कार्बन डाइऑक्साइड नियर जहरीला गैस वायुमंडल में निकलेला।
6: अरे हमरा तो जानकारी ना रहला कि एकरा से हमनी के पर्यावरण पर इतना नुकसान बा, लेकिन बतावा तू हमरा के एकर बढ़िया विकल्प का सरकार बतावता?
5: एकर बढ़िया विकल्प ये बाटे कि फसल के अवशेष के जराए के बजाय ओकरा के माटी में ही मिला ली। ऐसे हमनी के माटी में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम जैसन पोषक तत्व मिली, जोना से पैदावार में बढ़ोतरी हुई।
6: अच्छा, तो अब से ठूठ के हमनी के जराए जा ना, एकरा के हमनी के माटी में मिलाएम जा, ताकि हमनी के माटी के उर्वरता बढ़ जाए और हमनी के पर्यावरण भी सुरक्षित रही। बहुत अच्छा कैलू भाई जानकारी दे के।
5: याद रखी, ठूठ कूड़ा ना हा, खेती के गहना नहा, एकरा के जराई मत माटी में मिलाई। जिला कृषि विभाग गोपालगंज द्वारा जनहित में जारी।
7: दिल बोले म्यूजिक, म्यूजिक म्यूजिक बोले दिल, दिल की फ्रीक्वेंसी 90.4
8: रेडियो एमजेम।
7: सुनो दिल।

0: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: सुनिए,
2: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
1: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
2: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
1: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
3: ठक ठक।
4: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
5: अच्छा, मिला ही नहीं
4: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें। अब चलिए सीधे कमल श्री में।
1: जी हाँ, कमल श्री, याद रखे सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
4: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
1: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
6: कुल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
7: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला, गोरखपुर।
6: आज ही संपर्क करें 7388894700 या 9198886973।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।
8: और

0: गोपालगंज अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
1: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
0: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
1: और एक्सट्रीम 125R स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
0: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
0: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
1: कॉल नाउ 9656 59536 या 9656 57902।
2: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
3: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
4: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
3: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
4: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
3: आज ही आएं डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99 554 97 644।
5: आप सुन रहे हैं जिले की आवाज़, रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो।

0: अब बेटा बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
1: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
2: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
3: आज ही आएं गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्रगोखो लोड गोपालगंज, मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।
4: ठक ठक।
5: काजी आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
6: अच्छा मिला ही नहीं।
5: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
6: जी हाँ कमल श्री, याद रखें सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
5: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट गोपालगंज।
6: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
3: 21 वर्षों से सिर्फ पढ़ाई नहीं, भविष्य गढ़ने की पहचान है एक नाम, सेंट जॉन स्कूल, सासा मूसा गोपालगंज, शाखा राजापुर बाजार गोपालगंज।
2: और अब 30 अप्रैल तक एडमिशन बिल्कुल फ्री।
3: CBSE पैटर्न पर आधारित शिक्षा, नर्सरी से क्लास 10वीं तक, कंप्यूटर एजुकेशन, बस फैसिलिटी, रेगुलर टेस्ट और पेरेंट मीटिंग्स, एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ सेफ और पीसफुल कैंपस।
2: सेंट जॉन स्कूल में बच्चों को सिर्फ सिखाया नहीं जाता, उन्हें तराश आ जाता है।
3: तो देर मत कीजिए, 30 अप्रैल तक फ्री एडमिशन का लाभ उठाइए।
2: सेंट जॉन स्कूल, सासा मूसा गोपालगंज, कॉल अस 9939721308।
7: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
8: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से, संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला गोरखपुर।
7: आज ही संपर्क करें 7388-89470 या 9198886973।
9: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: आपका फर्नीचर डोलता है और बोलता है तो एक्सचेंज तो मांगता है।
1: संतोष फर्नीचर लेकर आ गए हैं ग्रेट एक्सचेंज ऑफर।
2: ग्रेट एक्सचेंज ऑफर, अपने घर के पुराने सोफा और डाइनिंग को ले आएं और नए सोफा तथा डाइनिंग को ले जाएं और बनाएं अपने घर को सुंदर तथा आकर्षक।
1: आज ही विजिट करें संतोष फर्नीचर, चिराईगढ़ पेट्रोल पंप के सामने, कॉलेज रोड, गोपालगंज। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 82 101 87 952। नियम और शर्तें लागू।
3: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
4: अरे तो उसे डांटते क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
5: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
6: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
5: आज ही आए जेबी हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
3: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
7: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा, अब मैं क्या करूँ?
8: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में। आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
7: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
8: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99-399-66-999।
9: ध्वनि के तरंग 90.4 पर आप जिले की आवाज रेडियो रिमझिम को सुन रहे हैं।

0: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
1: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
0: श्री गोपाल मोटर्स गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस सिर्फ 86,168 रुपए में, HF डिलक्स सिर्फ 75,405 रुपए में, ग्लैमर एक्स सिर्फ 97,456 रुपए में, एक्सट्रीम 125R सिर्फ 110,881 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
1: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी चैन पट्टी गोपालगंज,
0: या अभी कॉल कीजिए 92899-22567 या 97714-86164।
2: अरे स्टीयरिंग हिल क्यों रहा है और ये टायर जल्दी घिस क्यों रहे हैं?
0: अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा तो समझ जाइए, टायर को चाहिए अलाइनमेंट और बैलेंसिंग।
1: और इसके लिए जिले में भरोसे का एक ही नाम है, मिश्रा टायर्स, अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग।
0: यहाँ होता है कंप्यूटराइज्ड व्हील अलाइनमेंट, व्हील बैलेंसिंग, 3D अलाइनमेंट, डिजिटल बैलेंसिंग, सब कुछ आधुनिक मशीनों से।
1: साथ ही सभी कंपनी के टायर ट्यूब बेहद किफायती दाम पर उपलब्ध हैं।
0: एक बार सेवा का मौका जरूर दें। विजिट करें मिश्रा टायर्स कंप्यूटराइज्ड अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग, शिव मंदिर पोखरा के सामने, NH 27 बंजारी गोपालगंज।
1: रोड सपोर्ट या जानकारी के लिए कॉल करें 8825214946।
3: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं, श्रृंगार वाटिका।
4: आज ही आए चंद्रगोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज, या कॉल करें 86034-48652 पे।
5: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपने भाषा की पहचान, रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।

0: प्रसाद क्लिनिक।
1: स्त्री रोग, ल्यूकेरिया, यूट्रस का बाहर निकल जाना, कान का बहना, गठिया, साइटिका, कमर दर्द, अधेड़ी, थनैली, चर्म रोग के सफल इलाज के लिए मिले
0: डॉक्टर श्रीमती कुंती देवी। रोगी देखने का स्थान बुधवार और शनिवार को मिंज स्टेडियम, LIC ऑफिस के पास, गोपालगंज।
1: बाकी दिन जादवपुर बाजार।
2: नन्ना मुन्ना लाही देश का सिपाही हूँ।
3: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
2: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
3: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
2: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
4: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
5: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
4: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
5: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम एक डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
4: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
5: जानकारी है तो कॉल करे 6052 62112 पे।
6: सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता, रेडियो रिमझिम 90.4 FM जो हर पल कहे सुनो दिल से।

0: अगर आप चाहते हैं अपने बच्चों के लिए स्मार्ट एजुकेशन, सुरक्षित एवं संस्कार के साथ शिक्षा, साफ सुथरा माहौल, एसी हॉस्टल की उत्तम व्यवस्था और अपने बच्चों का उज्जवल भविष्य, तो गोपालगंज में एक ही नाम,
1: बाबू भगवान सहाय सेंट्रल स्कूल। सीबीएसई पैटर्न पर आधारित एक कंप्लीट को एजुकेशनल स्कूल, क्लास 10th तक। सेशन 2026 से 27 के लिए प्ले ग्रुप से लेकर कक्षा 8वीं तक एडमिशन ओपन।
0: यहां मिलती है वेल क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी, स्मार्ट क्लासेस, मॉडर्न फैसिलिटीज, कंप्यूटर क्लासेस विद लैब और इंग्लिश स्पोकन क्लासेस।
1: कमजोर छात्रों के लिए एक्स्ट्रा क्लासेस की विशेष व्यवस्था, नीट एंड क्लीन एटमॉस्फेयर और सीसीटीवी कैमरा की सुविधा,
0: बस एवं आवासीय हॉस्टल सुविधा उपलब्ध, साथ ही सैनिक स्कूल, नवोदय, नेतरहाट और अलीगढ़ जामिया की तैयारी की सुविधा 100% सफलता की गारंटी के साथ। पता: हरखुआ भगवान नगर, वार्ड नंबर 24, विष्णु शुगर मिल के पश्चिम, गोपालगंज।
1: संपर्क करें 800-222-1969 या 911-7018-350।
2: जो लोग डायबिटीज से परेशान हैं, वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलतापूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य एसपी त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज, जैसे
3: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टेबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, टीका, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंता और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस तथा
2: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलतापूर्वक करते हैं।
0: वैद्य एसपी त्यागी जी से मिलने का पता:
2: प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड, थावे रोड, भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में।
0: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 99554-94-53
2: और 90-97-61-60-02।
4: इतना परेशान क्यों दिख रही हो मेघा?
5: आसपास हर जगह चाचा जी का इलाज करा लिया, अब लगता है उन्हें दिल्ली लेकर ही जाना पड़ेगा।
4: अरे अपने गोपालगंज में गोरखपुर, पटना और दिल्ली जैसे बेहतर मेडिकल सुविधाओं के साथ खुल गया है एम्स के पूर्व चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक रंजन जी के देखरेख में जिले का पहला वेंटिलेटर युक्त सक्षम हॉस्पिटल, जहां पर 24 घंटे आईसीयू इमरजेंसी सेवा, एक्सपर्ट मेडिकल टीम द्वारा विभिन्न रोग जैसे हृदय रोग, शुगर, दमा, नस रोग, लकवा और पेट से जुड़ी गंभीर बीमारियों का अत्याधुनिक मशीनों के द्वारा सफलतापूर्वक इलाज किया जा रहा है।
5: आज विजिट करें सक्षम हॉस्पिटल, कमला राय कॉलेज रोड, इंडियन गैस एजेंसी के बगल में, गांधी टेक्निकल कॉलेज के सामने, डॉक्टर कॉलोनी, गोपालगंज। कॉल करें 7050061444 या 7870331444।
1: घर पर बैठे बेरोजगार युवाओं के लिए अब इंतजार नहीं, एक सुनहरा मौका आपका इंतजार कर रहा है।
0: छत्रपति शिवाजी महाराज फायर एंड सेफ्टी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गोपालगंज लाया है आपके लिए शानदार करियर बनाने का अवसर।
1: अगर आप 10+2 डिप्लोमा या ग्रेजुएट पास है तो बनिए एक प्रोफेशनल सेफ्टी ऑफिसर और पाए अपने भविष्य को एक नई दिशा।
0: यहां उपलब्ध है 1 साल का सेफ्टी

0: श्रोताओं, आप सुन रहे रेडियो रिमझिम 90.4 FM। अभी आप कुछ ही देर में सुनेंगे आकाशवाणी के नई दिल्ली केंद्र से दोपहर 4:15।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री बने। उनके साथ 5 कैबिनेट मंत्रियों ने भी शपथ ली। तमिलनाडु में सरकार गठन को लेकर राजनीतिक गतिरोध जारी। टीवीके को अब तक बहुमत नहीं मिला। राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण विवादों के सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए देश भर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन कर रहा है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के लिए त्रिनिदाद और टोबैगो के प्रधानमंत्री से मुलाकात की। और जयपुर में आईपीएल क्रिकेट में आज शाम राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। अब समाचार विस्तार से। शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बन गए हैं। राज्य में पहली बार भाजपा की सरकार बनी है। भाजपा ने विधानसभा चुनावों में ऐतिहासिक जीत दर्ज करते हुए तृणमूल कांग्रेस के 15 साल के शासन का अंत किया है। कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में राज्यपाल आरएन रवि ने श्री शुभेंदु को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। एक रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित देश के कई मुख्यमंत्रियों की मौजूदगी में शुभेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री और राज्य के पहले बीजेपी मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया।
3: आमी शुभेंदु अधिकारी ईश्वर नामे शपथ करते जे विधि द्वारा स्थापित भारत संविधान प्रति आमी अकृत्रिम निष्ठा और आनुगत्य पोषण करिब। आमी भारत सार्वभौमत्व और अखंडता रक्षा करिब।
2: शपथ ग्रहण की प्रक्रिया के अनुसार सबसे पहले शुभेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। उसके बाद एक एक कर मंत्री के रूप में दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल, अशोक कीर्तनिया, खुदीराम टुडू और निशित प्रामाणिक ने शपथ ली। आकाशवाणी समाचार कोलकाता से कश्मीर नाहर।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शपथ ग्रहण समारोह में भाजपा के शुरुआती दिनों के सबसे वरिष्ठ राज्य नेताओं में से एक 97 वर्षीय मक्खनलाल सरकार का आशीर्वाद लिया। प्रधानमंत्री ने उन्हें गले लगाया और उनके पैर छुए। मक्खनलाल सरकार भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सहयोगी थे। इससे पहले प्रधानमंत्री ने ब्रिगेड ग्राउंड पहुंचने से पहले एक रोड शो किया। प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कृषि अधिकारी ने जनता से गहराई से जुड़े रहने और उनकी आकांक्षाओं को करीब से समझने वाले नेता के रूप में पहचान बनाई है। प्रधानमंत्री ने 5 मंत्रियों को भी बधाई दी। उन्होंने कहा कि इन नेताओं ने जमीनी स्तर पर

0: अथक परिश्रम किया है और जनता की सेवा की है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी के आदर्शों पर आधारित राजनीतिक दल को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। उन्होंने कहा कि जो लोग अब भी नतीजों पर चर्चा कर रहे हैं उन्हें विवेक से काम लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में शिक्षा और संस्कृति को जो भारी नुकसान हुआ है उसे संवारने की जिम्मेदारी भाजपा पर है। श्री अधिकारी ने कहा कि गुरूदेव की जयंती के शुभ अवसर पर पार्टी ने शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया।
1: आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है देश के लिए, बंगाल के लिए। इसलिए प्रधानमंत्री का इच्छा था नया सरकार रविंद्र जयंती का दिन अपना कार्यकाल शुरू करे। इसलिए हम लोग प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व में गोभी गुरु को प्रणाम करते हुए आज संविधान को मानते हुए ओथ टेकिंग किया।
0: आज गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर की 165वीं जयंती है। इस अवसर पर शांति निकेतन, विश्व भारती विश्वविद्यालय और बांग्लादेश सहित दुनिया भर में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पौचिशे वैशाख के अवसर पर गुरूदेव को श्रद्धांजलि अर्पित की। एक रिपोर्ट।

0: उपराष्ट्रपति ने कहा कि गुरुदेव टैगोर का योगदान साहित्य के क्षेत्र से कहीं अधिक व्यापक था और आने वाली पीढ़ियों पर उनका अमिट प्रभाव रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि गुरुदेव असाधारण प्रतिभा के धनी लेखक, विचारक और कवि थे। श्री मोदी ने कहा कि गुरुदेव ने एक दार्शनिक, शिक्षाविद, कलाकार और भारत की सभ्यतागत आत्मा की शाश्वत आवाज के रूप में अपनी छाप छोड़ी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि गुरुदेव ने एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को मजबूत किया और भारत की सांस्कृतिक विरासत को दुनिया के सामने प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि गुरुदेव टैगोर ने साहित्य, संगीत और दर्शन के माध्यम से स्वतंत्रता की भावना को नई दिशा दी। समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
1: संसद के सदस्यों, पूर्व सांसदों और लोकसभा के महासचिव उत्पल कुमार सिंह ने आज नई दिल्ली में संविधान सदन के केंद्रीय हॉल में गुरुदेव के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। लोकसभा सचिवालय ने कहा कि गुरुदेव टैगोर की रचनाओं ने देशवासियों में देशभक्ति की भावना को प्रेरित किया। तमिलनाडु में बहुमत हासिल नहीं करने के कारण नई सरकार के गठन में और देरी हो रही है। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव बेबी ने कहा कि राज्यपाल का यह कर्तव्य है कि सबसे बड़ी पार्टी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया जाए। चेन्नई में उन्होंने आरोप लगाया कि राज्यपाल केंद्र के इशारों पर काम कर रहे हैं। एक अन्य घटनाक्रम में अम्मा मक्कल मुनेत्रा कड़गम प्रमुख टीटीवी दिनाकरन ने राज्यपाल से अपनी पार्टी के विधायक द्वारा टीवीके को सौंपी गई समर्थन पत्र पर कार्रवाई की मांग की है। वीसीके पार्टी आज शाम 4 बजे टीवीके के साथ औपचारिक बैठक के बाद समर्थन के बारे में घोषणा करेगी। केरलम में भी नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस कल तक नेता की घोषणा करेगी। कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि विधायक दल के नेता के बारे में राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को होगा। पार्टी विधायक दल की बैठक कल होगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने भारत तथा त्रिनिदाद और टोबैगो के बीच पारंपरिक संबंधों की सराहना की है। त्रिनिदाद और टोबैगो के विदेश तथा कैरिकॉम मामलों के मंत्रालय के समारोह में डॉ जयशंकर ने दोनों देशों के बीच गहरे सांस्कृतिक संबंध और ऐतिहासिक जुड़ाव का उल्लेख किया।
0: भारत के त्रिनिदाद और टोबैगो के साथ परंपरागत रूप से मैत्रीपूर्ण संबंध रहे हैं और ये संबंध साझा इतिहास, उपनिवेश के खिलाफ हमारे संघर्ष और क्रिकेट के हमारे विशेष रिश्तों पर आधारित हैं। दोनों देशों के लोग पहनावे और खेलकूद से लेकर खानपान की आदतों और परंपराओं तक कई मामलों में एक दूसरे से समानता रखते हैं।
1: डॉक्टर जयशंकर ने प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर से मुलाकात में द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने के बारे में चर्चा की। यात्रा के दौरान पर्यटन, विदेश और कैरिकॉम मामलों के मंत्रालय के भवन का सौर ऊर्जा से संचालन, विभिन्न परियोजनाओं और आयुर्वेद केंद्र की स्थापना सहित कई समझौतों पर सहमति बनी। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण आज देशभर में इस वर्ष की दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन कर रहा है। प्राधिकरण के सदस्य सचिव संजीव पांडे ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि लोक अदालत में समझौता योग्य आपराधिक मामलों, चेक बाउंस और बैंक वसूली विवादों सहित कई प्रकार के मामलों की सुनवाई की जाती है।
2: आज राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन पूरे देश में एक ही समय पे किया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि न्यायालय में लंबित मामलों का बोझ कम किया जाए तथा जो मामले, जो विवाद न्यायालय में और प्री लिटिगेशन स्टेज पे लंबित है उनको समझौते के आधार पर निस्तारित किया जाए।
1: श्री पांडे ने बताया कि वर्ष 2023 से 2025 के बीच 12 राष्ट्रीय लोक अदालतों का आयोजन कर 26 करोड़ मामलों का निपटारा किया गया। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और अटल पेंशन योजना ने 11 वर्ष पूरे कर लिए हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि सामाजिक सुरक्षा की इन योजनाओं का उद्देश्य सभी को, विशेष रूप से समाज के वंचित और कमजोर वर्गों को किफायती वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत 27 करोड़ से अधिक नामांकन, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में 58 करोड़ और अटल पेंशन योजना में 9 करोड़ नामांकन हो चुके हैं। चुके हैं और जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत 21,500 करोड़ रुपए और पीएम सुरक्षा योजना के अंतर्गत लगभग 3,660 करोड़ रुपए के दावों का निपटारा किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कर्नाटक के बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग के 45वीं वर्षगांठ समारोह में शामिल होंगे। श्री मोदी आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर में नवनिर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन भी करेंगे। बाद में प्रधानमंत्री हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। श्री मोदी हैदराबाद पणजी आर्थिक गलियारे पर गुडेबेलूर से महबूब नगर तक राष्ट्रीय राजमार्ग 167 के 4 लेन के निर्माण की आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री वारंगल में पीएम मित्र पार्क का भी उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी हैदराबाद में अत्याधुनिक कैंसर अस्पताल का भी लोकार्पण करेंगे। सोमनाथ अमृत पर्व का आधिकारिक रूप से कल से शुभारंभ हो गया है। ये मंदिर के पुनर्निर्माण की 75वीं वर्षगांठ का प्रतीक है। 5 दिन के इस उत्सव ने मंदिर परिसर को वैदिक मंत्रों और दिव्य ऊर्जा के केंद्र के रूप में बदल दिया है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
3: सोमनाथ महादेव मंदिर में आज आस्था और भक्तिमय वातावरण छाया हुआ है। मंदिर में आज से ही 3 दिवसीय होमात्मक महारुद्र यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें लगभग 1,25,000 आहुतियां अर्पित की जा रही है। यह महायज्ञ वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों में शांति और मानव कल्याण के लिए आयोजित किया जा रहा है। अमृत पर्व का मुख्य आकर्षण 11 मई को होगा, जब मंदिर के शिखर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 11 पवित्र तीर्थों के जल से कुंभाभिषेक किया जाएगा। इस ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बनने के लिए देश के कोने कोने से श्रद्धालुओं का सैलाब सोमनाथ उमड़ पड़ा है। गुजरात के उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने आज सोमनाथ में उच्च अधिकारियों के साथ बैठक की और सोमनाथ अमृत पर्व के आयोजन की समीक्षा की। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। हुरमुज जल डमरू मध्य के पास कल एक नौका में आग लगने से एक भारतीय नागरिक की मौत हो गई और 4 अन्य झुलस गए। सरकारी सूत्रों ने बताया कि एक जहाज के चालक दल ने नौका में सवार लोगों को बचा लिया। घायलों का दुबई में इलाज चल रहा है और वे सुरक्षित हैं। आग लगने के कारण का पता लगाया जा रहा है। भारतीय वाणिज्य दूतावास के अधिकारियों ने बचाए गए भारतीय नागरिकों से मुलाकात की। दूतावास हर संभव सहायता प्रदान कर रहा है। पाकिस्तान मानवाधिकार परिषद ने देश में पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में हाल में की गई वृद्धि की कड़ी निंदा करते हुए इसे जनता पर सीधा हमला बताया है। मानवाधिकार संस्था ने सरकार से मूल्य वृद्धि तुरंत वापस लेने और जनता को राहत प्रदान करने का आग्रह किया। परिषद ने परिवहन किराए और आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में मनमानी वृद्धि पर रोक लगाने की भी मांग की। हिंद महासागर संवाद 10 कल नई दिल्ली में संपन्न हो गया। 2 दिन के इस आयोजन का विषय था परिवर्तनशील विश्व में हिंद महासागर क्षेत्र। संवाद में इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन सदस्य देशों के वरिष्ठ अधिकारियों, नीति निर्माताओं, विद्वानों और विशेषज्ञों ने हिंद महासागर क्षेत्र में महत्वपूर्ण क्षेत्रीय घटनाक्रमों और उभरती चुनौतियों पर विचार विमर्श किया। लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणि को अगला प्रमुख रक्षा अध्यक्ष सीडीएस नियुक्त किया गया है। वे जनरल अनिल चौहान का स्थान लेंगे। उनका कार्यकाल 30 मई को समाप्त हो रहा है। इस बीच वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन को नौसेना प्रमुख नियुक्त किया गया है। आकाशवाणी की स्थापना के 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में देश भर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। पंजाब के जालंधर और पटियाला स्टेशन पर आज वॉकेथॉन का आयोजन किया गया। एक रिपोर्ट।
4: पंजाब में आकाशवाणी ने हरित क्रांति के दौरान एक अहम भूमिका निभाई है और आज भी कृषि पर विशेष रूप से तैयार किए गए कार्यक्रम के जरिए किसानों को जानकारियां उपलब्ध करवा रहा है। आज के वॉकथॉन के दौरान आकाशवाणी के श्रोताओं, पूर्व कर्मचारियों और अन्य लोगों ने एफएम स्टूडियो में एंकर्स द्वारा बजाए जा रहे बेहतरीन गानों के बीच सीधे प्रसारण के जरिए अपने अनुभव साझा किए। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के अपने आदर्शों पर खरा उतरते हुए यह राष्ट्रीय प्रसारक विभिन्न कार्यक्रमों और समाचार बुलेटिन के माध्यम से जानकारी, शिक्षा और मनोरंजन प्रदान करते हुए बीते 9 दशकों से देश की सेवा में तत्पर है। राजेश बाली, आकाशवाणी समाचार, जलंधर।
1: आकाशवाणी शिलांग में भी मैराथन का आयोजन किया गया। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। अंक तालिका में राजस्थान चौथे और गुजरात पांचवें नंबर पर है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री बने। उनके साथ 5 कैबिनेट मंत्रियों ने भी शपथ ली। तमिलनाडु में सरकार गठन को लेकर राजनीतिक गतिरोध जारी। टीवीके को अब तक बहुमत नहीं मिला। राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण विवादों के सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए देश भर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन कर रहा है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के लिए त्रिनिदाद और टोबैगो के प्रधानमंत्री से मुलाकात की। और जयपुर में आईपीएल क्रिकेट में आज शाम राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: समाचार के बाद आप सभी का स्वागत है रेडियो रमजी 90.4 एफएम पर। आइए सुनते हैं अब आगे का प्रसारण।
6: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
7: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
6: श्री गोपाल मोटर्स गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस सिर्फ 86,168 रुपए में, HF डिलक्स सिर्फ 75,405 रुपए में, ग्लैमर एक्स सिर्फ 97,456 रुपए में, एक्सट्रीम 125R सिर्फ 1,10,881 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
7: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी चैन पट्टी गोपालगंज,
6: या अभी कॉल कीजिए 92899225 67 या 97714861 64।
8: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
9: अरे तो उसे डांटती क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
10: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
11: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
10: आज ही आए JB हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
8: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
6: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
7: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
6: ग्लैमर एक्स दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
7: और एक्सट्रीम 125R स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
6: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
7: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
6: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
7: कॉल नाउ 9656-59536 या 9656-57902।
12: ध्वनि के तरंग 90.4 पर आप जिले की आवाज रेडियो रिमझिम को सुन रहे हैं।

0: गोपालगंज अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
1: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
0: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
1: और एक्सट्रीम 125R स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
0: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
0: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
1: कॉल नाउ 9656 59536 या 9656 57902।
2: ठक ठक।
3: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
4: अच्छा मिला ही नहीं।
3: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
5: जी हाँ, कमल श्री, याद रखे सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
3: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
5: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
3: क्या चाहते हो, मैं ना जाऊँ अपनी दोस्त की शादी में?
4: क्यों, क्या हुआ है?
3: तुम्ही ने तो कहा था मुझे डिजाइनर लहंगा, साड़ी और गाउन दिलाओगे।
4: अरे तो कौन सी बड़ी बात है, आज ही चलते हैं गोपालगंज में लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स, वहाँ तुम्हें तुम्हारी मन पसंद के अच्छे अच्छे कपड़े मिल जाएंगे।
3: फिर ये भी ठीक है, चलो चलते हैं लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स।
5: शादी विवाह या किसी भी शुभ अवसर पर एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स, जो है मेन रोड गोपालगंज में।
6: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपने भाषा की पहचान, रेडियो रिद्म 90.4 FM। सुनो दिल से।

0: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे, और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
1: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
0: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
1: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99399-66999।
2: 21 वर्षों से सिर्फ पढ़ाई नहीं, भविष्य गढ़ने की पहचान है एक नाम, सेंट जॉन स्कूल, सासा मूसा, गोपालगंज। शाखा राजापुर बाजार, गोपालगंज।
3: और अब 30 अप्रैल तक एडमिशन बिल्कुल फ्री।
2: CBSE पैटर्न पर आधारित शिक्षा, नर्सरी से क्लास 10वीं तक, कंप्यूटर एजुकेशन, बस फैसिलिटी, रेगुलर टेस्ट और पेरेंट मीटिंग्स, एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ सेफ और पीसफुल कैंपस।
3: सेंट जॉन स्कूल में बच्चों को सिर्फ सिखाया नहीं जाता, उन्हें तराशा जाता है।
2: तो देर मत कीजिए, 30 अप्रैल तक फ्री एडमिशन का लाभ उठाइए।
3: सेंट जॉन स्कूल, सासा मूसा, गोपालगंज। कॉल अस 9939721308।
4: अरे स्टीयरिंग हिल क्यों रहा है और ये टायर जल्दी घिस क्यों रहे हैं?
2: अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा तो समझ जाइए, टायर को चाहिए अलाइनमेंट और बैलेंसिंग।
3: और इसके लिए जिले में भरोसे का एक ही नाम है, मिश्रा टायर्स, अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग।
2: यहाँ होता है कंप्यूटराइज्ड व्हील अलाइनमेंट, व्हील बैलेंसिंग, 3D अलाइनमेंट, डिजिटल बैलेंसिंग, सब कुछ आधुनिक मशीनों से।
3: साथ ही सभी कंपनी के टायर ट्यूब बेहद किफायती दाम पर उपलब्ध हैं।
2: एक बार सेवा का मौका जरूर दें। विजिट करें मिश्रा टायर्स कंप्यूटराइज्ड अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग, शिव मंदिर पोखरा के सामने, NH 27 बंजारी, गोपालगंज।
3: रोड सपोर्ट या जानकारी के लिए कॉल करें 8825214946।
5: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं, दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
6: और दुल्हन का लहंगा, साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ। इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
7: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा,
8: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
9: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
7: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा, साड़ी, सूट पीस, हर डिजाइन, हर रंग, हर बजट में।
6: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
7: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
3: कॉल करें 87894-18744।
10: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
11: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
10: सुनो दिल से।

0: Click on the bell icon to get regular updates from Venus.
1: For more entertainment, log on and subscribe to www.youtube.com/Venus.
2: अरे स्टीयरिंग हिल क्यों रहा है और ये टायर जल्दी घिस क्यों रहे हैं?
3: अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा तो समझ जाइए, टायर को चाहिए अलाइनमेंट और बैलेंसिंग।
4: और इसके लिए जिले में भरोसे का एक ही नाम है, मिश्रा टायर्स, अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग।
3: यहाँ होता है कंप्यूटराइज्ड व्हील अलाइनमेंट, व्हील बैलेंसिंग, 3D अलाइनमेंट, डिजिटल बैलेंसिंग, सब कुछ आधुनिक मशीनों से।
4: साथ ही सभी कंपनी के टायर ट्यूब बेहद किफायती दाम पर उपलब्ध हैं।
3: एक बार सेवा का मौका जरूर दें। विजिट करें मिश्रा टायर्स कंप्यूटराइज्ड अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग, शिव मंदिर पोखरा के सामने, NH 27 बंजारी गोपालगंज।
4: रोड सपोर्ट या जानकारी के लिए कॉल करें 8825214946।
5: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
6: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से, संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला गोरखपुर।
5: आज ही संपर्क करें 7388889470 या 9198886973।
7: हई इलेक्ट्रिक के इतना सारा सामान कहाँ से खरीद के ले आओ तनी?
8: ये सब सामान संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से लेके आओ तनी बाबू।
7: अरे ये सामान तो एक नंबर बुझाता और काफी डिजाइनदार भी बा।
8: अरे हाँ बाबू, अपना गोपालगंज में इतना अच्छा दुकान कहाँ बा? संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स में सस्ता में एक नंबर के सामान मिलेला।
7: हम तो अपना नौका घरवा खातिर इलेक्ट्रॉनिक के सारा सामान दिल्ली से लेके आवे के सोचत रहनी, लेकिन हम काले संतोष इलेक्ट्रॉनिक से जाके अपन पूरा सामान ले आए।
8: अरे हाँ बबुआ, संतोष इलेक्ट्रॉनिक से ही लिया, दिल्ली जाके पैसा बर्बाद कैले से का फायदा।
9: संतोष इलेक्ट्रॉनिक हाउस, जहाँ सस्ते दामों में बेस्ट क्वालिटी के इलेक्ट्रिक के सारे सामान मिलते हैं।
10: हमारा पता है चिराई घर पेट्रोल पंप के सामने, संतोष फर्नीचर के नीचे, कॉलेज रोड, गोपालगंज।

0: वो का नाम बाबू है।
1: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
2: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
1: श्री गोपाल मोटर्स गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस सिर्फ 86,168 रुपए में, HF डिलक्स सिर्फ 75,405 रुपए में, ग्लैमर एक्स सिर्फ 97,456 रुपए में, एक्सट्रीम 125R सिर्फ 110,881 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
2: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
1: या अभी कॉल कीजिए 92899-22567 या 97-714-86-164।
3: दिल बोले म्यूजिक, म्यूजिक म्यूजिक बोले दिल, दिल की फ्रीक्वेंसी 90.4
4: रेडियो रिमझिम,
3: सुनो दिल से।

0: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
2: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
1: सिर्फ एक से दो सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
2: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512111001।

0: अपने जिले के मशहूर डॉक्टर जे शरण एमडी फिजिशियन अब बैठ रहे हैं सुबह 10 बजे से आशा मेडिको जनता सिनेमा रोड गोपालगंज, और डॉक्टर जे शरण जी शाम 5 बजे से 7 बजे तक बैठ रहे हैं अपने निवास स्थान शबनम होटल के पीछे आजाद नगर गोपालगंज।
1: डॉक्टर साहब के यहाँ पर्ची का नंबर मोबाइल से भी लगाया जा सकता है।
2: आशा मेडिको में किसी भी प्रकार की लिखी दवाएं मिलती है, मोबाइल से दवा का ऑर्डर भी किया जा सकता है। मोबाइल नंबर है 7545 67666।
3: एक सूचना, डॉक्टर साहब रविवार को भी दोपहर 12 से 3 बजे तक बैठते हैं।
4: रामू हरिया, कल तैयार रही लो पराली जलाए चले के बा।
5: ठीक बा भैया।
6: ए भैया, एगो सूचना सुन ला हा। कृषि विभाग द्वारा एगो सूचना दिया जा रहा बा कि खेत के अवशेष यानी पराली नहीं खे जरावे के, ना तो कृषि विभाग के कोनो योजना के लाभ ना मिली और ऊपर से जुर्माना भी लगी।
4: ऐसन का है, जरावला से काहे मना होता।
6: फसल के अवशेष जरला से हमनी के माटी, पर्यावरण और हमनी के खुद के स्वास्थ्य के बहुत नुकसान होता। फसल के अवशेष के जरे से माटी के उर्वरता कम हो जाला, जरूरी सूक्ष्म जीव भी नष्ट हो जाला और पर्यावरण में हानिकारक गैस निकलेला। 1 टन ठूठ जरला से 60 किलो कार्बन मोनोऑक्साइड और 1460 किलो कार्बन डाइऑक्साइड नियर जहरीला गैस वायुमंडल में निकलेला।
4: अरे हमरा तो जानकारी ना रहला कि एकरा से हमनी के पर्यावरण पर इतना नुकसान बा, लेकिन बतावा तू हमरा के एकर बढ़िया विकल्प का सरकार बतावता।
6: एकर बढ़िया विकल्प ये बाटे कि फसल के अवशेष के जराए के बजाय ओकरा के माटी में ही मिला ली। ऐसे हमनी के माटी में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम जैसन पोषक तत्व मिली, जोना से पैदावार में बढ़ोतरी हुई।
4: अच्छा, तो अब से ठूठ के हमनी के जराए जाना, एकरा के हमनी के माटी में मिलाएम जा, ताकि हमनी के माटी के उर्वरता बढ़ जाए और हमनी के पर्यावरण भी सुरक्षित रही। बहुत अच्छा कर लू भाई जानकारी दे के।
6: याद रखी, ठूठ कूड़ा ना,

0: हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।

0: अरे ए चाची, जब आँख से साफ नहीं खेलो को तो रोड पर लड़खड़ा के कहे चलतनी, और तहार मोतियाबिंद का ऑपरेशन होके वाला रहे नू, ओकर का भइल?
1: अरे ए बबू, परेशानी तो बा लेकिन ऑपरेशन से हमके बहुते डर लागेला। सुनले बानी की आँख में सुई लागेला, काफी दर्द होत होई नू।
0: अरे बाग चाची, तू कावना दुनिया में बारू। अब अपना गोपालगंज में चेन्नई के डॉक्टर एस हैदर जी आ गइल बनी। यहाँ के आँख में बिना सुई लगौले, बिना चीर फाड़ कइले और बिना टाका लगौले फेको मशीन के द्वारा आँख के ऑपरेशन करतनी। तो तू इनके लगे काहे न कुचल जा, आँख में कोनो तरह के दर्द भी ना होई और ऑपरेशन भी हो जाए।
2: आंखों से जुड़ी बीमारियों के सफल इलाज के लिए आज ही मिले सिवान के सुपर सिद्ध डॉक्टर इसराइल की सुपुत्री डॉक्टर एस हैदर से। साथ ही हर शुक्रवार को मिले ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट डॉक्टर एम ए अकबर जी से। ध्यान रहे, चेन्नई आई केयर अब चला गया है कमला राय कॉलेज रोड यमहा शोरूम के सामने रालसन होटल के पश्चिम गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99053 69 015 पे।
3: तब भौजी, आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नू सारा मार्केट, देख लेनी नू सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
1: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है पर कोनो जचल है ना।
3: ई बात बा, तो ऐसन करी कि अब चली सीधे हमरा साथे कमल श्री में।
2: महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आएं और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
4: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट फर्स्ट फ्लोर। तू
5: जो है। आप सुन रहे हैं जिले की आवाज रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो

0: अब बेटा बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
1: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
2: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
3: आज ही आएं गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्रगोखो लोड गोपालगंज, मोबाइल नंबर 94 3945 651 या 97 0 97 0 6 575।

0: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा।
1: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद है अनुभवी डॉक्टर डॉक्टर स्वाति के गुप्ता MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन SVBPN न्यू दिल्ली।
0: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
2: यहां सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
0: संपर्क 99-393-65-930।
3: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: Click on the bell icon to get regular updates from Venus.
1: For more entertainment, log on and subscribe to www.youtube.com/Venus.
2: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
3: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
4: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल,
2: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
4: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
2: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
4: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
2: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
4: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा NH 27 गोपालगंज।
2: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
5: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5 से 25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं श्रृंगार वाटिका।
6: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज या कॉल करें 86034 48652 पे।
7: ध्वनि के तरंग 90.4 पर आप जिले की आवाज रेडियो रिमझिम को सुन रहे हैं।

0: Click on the bell icon to get regular updates from Venus.
1: For more entertainment, log on and subscribe to www.youtube.com/venus.
2: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
3: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला गोरखपुर।
2: आज ही संपर्क करें 7388894700 या 9198886973।
4: अरे मुन्नी तुम आ गई, चल मेरे कान का झुमका ला।
5: ओ माय गॉड, आज फिर से भूल गई।
4: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
5: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
6: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी,
5: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
6: तो अगर आपको कुछ अच्छा, कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड, एक्सिस बैंक के सामने, तड़कुल के पास, गोपालगंज।
5: याद रहे, शादी विवाह, जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है।
6: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।
7: जिले का गौरव, संतोष मेडिकल हॉल, घोष मोड़, दरगाह रोड, गोपालगंज।
8: गोपालगंज जिले का प्रतिष्ठित अंग्रेजी दवा की दुकान संतोष मेडिकल हॉल।
9: हमारे यहाँ भारत के प्रसिद्ध डॉक्टरों द्वारा लिखी गई सभी प्रकार की अंग्रेजी दवाएं उपलब्ध हैं, जैसे गोरखपुर, पटना, कलकत्ता, लखनऊ, बनारस, चेन्नई और मुंबई के डॉक्टरों द्वारा लिखी गई दवाइयाँ भी मिलती हैं।
6: एक सूचना, संतोष मेडिकल हॉल अब चला गया है कॉलेज रोड चिराई घर के पहले, गोपालगंज। संपर्क सूत्र है 6200042403, 6200042403।
10: शादी की ज्वेलरी लेनी है? हाँ,
11: भरोसे वाले से लेंगे,
10: पर दिया की पसंद भी जरूरी है
11: और कीमत भी।
10: प्योरिटी का सर्टिफिकेशन तो चाहिए ही।
12: एसपी ज्वेलर्स पे हमें पूरा भरोसा है।
13: प्योरिटी यानी मामी सर्टिफाइड, भरोसा और सही प्राइस यानी पापा सर्टिफाइड, और डिजाइंस तो मेरा सर्टिफिकेशन।
6: गहनों की खरीदारी के लिए आप भी आए एसपी ज्वेलर्स, क्योंकि रिश्ते हर रोज नहीं बनते।
5: 22 कैरेट, 18 कैरेट के जेवर, शादी सेट और साथ ही पुराने जेवर बदलकर नए जेवर के करे खरीदारी।
6: आज यहाँ एसपी ज्वेलर्स, जो है डीएवी गर्ल्स स्कूल के सामने, स्टेशन रोड, गोपालगंज।
14: और अब एसपी ज्वेलर्स का नया ब्रांच मेन रोड गोपालगंज, इन फ्रंट ऑफ बासु गारमेंट्स। सभी प्रकार के गहनों के मेकिंग चार्ज पर 25% की भारी छूट।
6: कॉल करे 8570-32042 पे।
15: सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता, रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल कहे सुनो दिल से।

0: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
1: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
2: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल,
0: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूर्व भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
2: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
0: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
2: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
2: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा NH 27 गोपालगंज।
0: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com। अगर आप चाहते हैं अपने बच्चों के लिए स्मार्ट एजुकेशन, सुरक्षित एवं संस्कार के साथ शिक्षा, साफ सुथरा माहौल, AC हॉस्टल की उत्तम व्यवस्था और अपने बच्चों का उज्जवल भविष्य, तो गोपालगंज में एक ही नाम
2: बाबू भगवान सहाय सेंट्रल स्कूल। CBSE पैटर्न पर आधारित एक कंप्लीट को एजुकेशनल स्कूल क्लास 10th तक। सेशन 2026 से 27 के लिए प्ले ग्रुप से लेकर कक्षा 8वीं तक एडमिशन ओपन।
0: यहां मिलती है वेल क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी, स्मार्ट क्लासेस, मॉडर्न फैसिलिटीज, कंप्यूटर क्लासेस विद लैब और इंग्लिश स्पोकन क्लासेस।
2: कमजोर छात्रों के लिए एक्स्ट्रा क्लासेस की विशेष व्यवस्था, नीट एंड क्लीन एटमॉस्फेयर और CCTV कैमरा की सुविधा,
0: बस एवं आवासीय हॉस्टल सुविधा उपलब्ध, साथ ही सैनिक स्कूल नवोदय नेतरहाट और अलीगढ़ जामिया की तैयारी की सुविधा 100% सफलता की गारंटी के साथ। पता हरखुआ भगवान नगर वार्ड नंबर 24 विष्णु शुगर मिल के पश्चिम गोपालगंज।
2: संपर्क करें 800-222-1969 या 9117011835।
3: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
4: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL जियो एयरटेल VI जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
3: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
4: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF लेमिनेशन प्रिंट फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ 1 रुपए प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल सिनेमा रोड शिव मंदिर के ठीक सामने गोपालगंज, प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99399-66999।
5: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
6: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
7: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
6: सुनो दिल से।

0: अरे ए चाची, जब आँख से साफ नहीं लोग को तो रोड पर लड़खड़ा के कहे चलतनी, और तहार मोतियाबिंद का ऑपरेशन होके वाला रहनु, ओकर का भइल?
1: अरे ए बबू, परेशानी तो बा, लेकिन ऑपरेशन से हमके बहुते डर लागेला। सुनले बानी की आँख में सुई लागेला, काफी दर्द होत होइनु।
0: अरे बाग चाची, तू कावना दुनिया में बारू। अब अपना गोपालगंज में चेन्नई के डॉक्टर एस हैदर जी आगल बनी, यहाँ के आँख में बिना सुई लगौले, बिना चीड़ फाड़ कइले और बिना टाका लगौले फेको मशीन के द्वारा आँख के ऑपरेशन करत नी। तो तू इनके लगे काहे न कुचल जा, आँख में कोनो तरह के दर्द भी ना होई और ऑपरेशन भी हो जाए।
2: आंखों से जुड़ी बीमारियों के सफल इलाज के लिए आज ही मिले सिवान के सुप्रसिद्ध डॉक्टर इसराइल की सुपुत्री डॉक्टर एस हैदर से, साथ ही हर शुक्रवार को मिले ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट डॉक्टर एम ए अकबर जी से। ध्यान रहे, चेन्नई आई केयर अब चला गया है कमला राय कॉलेज रोड यमहा शोरूम के सामने रालसन होटल के पश्चिम गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99053 69015 पे।
3: रामू हरिया, कल तैयार रहिया लो पराली जलाए चले के बा?
4: ठीक बा भैया।
5: ए भैया, एगो सूचना सुन ला हा। कृषि विभाग द्वारा एगो सूचना दिया जा रहा बा कि खेत के अवशेष यानी पराली नहीं खे जरावे के, ना तो कृषि विभाग के कोनो योजना के लाभ ना मिली और ऊपर से जुर्माना भी लगी।
3: ऐसन का है, जरावला से काहे मना होता?
5: फसल के अवशेष जरला से हमनी के माटी, पर्यावरण और हमनी के खुद के स्वास्थ्य के बहुत नुकसान होता। फसल के अवशेष के जरे से माटी के उर्वरता कम हो जाला, जरूरी सूक्ष्म जीव भी नष्ट हो जाला और पर्यावरण में हानिकारक गैस निकलेला। 1 टन ठूठ जरला से 60 किलो कार्बन मोनोऑक्साइड और 1460 किलो कार्बन डाइऑक्साइड नियत जहरीला गैस वायुमंडल में निकलेला।
3: अरे हमरा तो जानकारी ना रहला कि एकरा से हमनी के पर्यावरण पर इतना नुकसान बा, लेकिन बतावा तू हमरा के एकर बढ़िया विकल्प का सरकार बतावता?
5: एकर बढ़िया विकल्प ये है बाटे कि फसल के अवशेष के जराए के बजाय ओकरा के माटी में ही मिला ली। ऐसे हमनी के माटी में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम जैसन पोषक तत्व मिली, जोना से पैदावार में बढ़ोतरी हुई।
3: अच्छा, तो अब से ठूठ के हमनी के जराए जा ना, एकरा के हमनी के माटी में मिलाएम जा, ताकि हमनी के माटी के उर्वरता बढ़ जाए और हमनी के पर्यावरण भी सुरक्षित रही। बहुत अच्छा कैलू भाई जानकारी दे के।
5: याद रखी, ठूठ कूड़ा ना, खेती के गहना नहा, एकरा के जराई मत, माटी में मिलाई। जिला कृषि विभाग गोपालगंज द्वारा जनहित में जारी।

0: जिले का गौरव संतोष मेडिकल हॉल घोष मोड़ दरगाह रोड गोपालगंज।
1: गोपालगंज जिले का प्रतिष्ठित अंग्रेजी दवा की दुकान संतोष मेडिकल हॉल।
2: हमारे यहाँ भारत के प्रसिद्ध डॉक्टरों द्वारा लिखी गई सभी प्रकार की अंग्रेजी दवाएं उपलब्ध हैं, जैसे गोरखपुर, पटना, कलकत्ता, लखनऊ, बनारस, चेन्नई और मुंबई के डॉक्टरों द्वारा लिखी गई दवाइयाँ भी मिलती हैं।
3: एक सूचना, संतोष मेडिकल हॉल अब चला गया है कॉलेज रोड चिराई घर के पहले गोपालगंज। संपर्क सूत्र है 62042434003।
4: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर कमला राय कॉलेज रोड गोपालगंज।
5: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
4: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
5: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
4: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
5: पता, कमला राय कॉलेज रोड नियर रालसन होटल गोपालगंज।
4: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
6: इतना परेशान क्यों दिख रही हो मेघा?
7: आसपास हर जगह चाचा जी का इलाज करा लिया, अब लगता है उन्हें दिल्ली लेकर ही जाना पड़ेगा।
6: अरे अपने गोपालगंज में गोरखपुर, पटना और दिल्ली जैसे बेहतर मेडिकल सुविधाओं के साथ खुल गया है एम्स के पूर्व चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक रंजन जी के देखरेख में जिले का पहला वेंटिलेटर युक्त सक्षम हॉस्पिटल, जहां पर 24 घंटे ICU इमरजेंसी सेवा, एक्सपर्ट मेडिकल टीम द्वारा विभिन्न रोग जैसे हृदय रोग, शुगर, दमा, नस रोग, लकवा और पेट से जुड़ी गंभीर बीमारियों का अत्याधुनिक मशीनों के द्वारा सफलतापूर्वक इलाज किया जा रहा है।
7: आज विजिट करें सक्षम हॉस्पिटल, कमला राय कॉलेज रोड, इंडियन गैस एजेंसी के बगल में, गांधी टेक्निकल कॉलेज के सामने, डॉक्टर कॉलोनी, गोपालगंज। कॉल करें 7050061444 या 7870331444।
8: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं, दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
9: और दुल्हन का लहंगा, साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ, इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
10: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा,
11: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
12: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
10: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा, साड़ी, सूट पीस, हर डिजाइन, हर रंग, हर बजट में।
9: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
10: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
4: कॉल करे 87894 18744।
13: दिल बोले म्यूजिक, म्यूजिक, म्यूजिक बोले दिल, दिल की फ्रीक्वेंसी 90.4
14: रेडियो रिमझिम।
13: सुनो दिल से।

0: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
1: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला गोरखपुर।
0: आज ही संपर्क करें 7388889470 या 9198886973।
2: 21 वर्षों से सिर्फ पढ़ाई नहीं, भविष्य गढ़ने की पहचान है एक नाम, सेंट जॉन स्कूल सासा मूसा गोपालगंज, शाखा राजापुर बाजार गोपालगंज।
3: और अब 30 अप्रैल तक एडमिशन बिल्कुल फ्री।
2: CBSE पैटर्न पर आधारित शिक्षा, नर्सरी से क्लास 10वीं तक, कंप्यूटर एजुकेशन, बस फैसिलिटी, रेगुलर टेस्ट और पेरेंट मीटिंग्स, एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ सेफ और पीसफुल कैंपस।
3: सेंट जॉन स्कूल में बच्चों को सिर्फ सिखाया नहीं जाता, उन्हें तराश आ जाता है।
2: तो देर मत कीजिए, 30 अप्रैल तक फ्री एडमिशन का लाभ उठाइए।
3: सेंट जॉन स्कूल सासा मूसा गोपालगंज, कॉल अस 9939721308।
2: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
3: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
2: श्री गोपाल मोटर्स गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस सिर्फ 86,168 रुपए में, HF डिलक्स सिर्फ 75,405 रुपए में, ग्लैमर एक्स सिर्फ 97,456 रुपए में, एक्सट्रीम 125R सिर्फ 110,881 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
3: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी गोपालगंज,
2: या अभी कॉल कीजिए 9289922567 या 9779146164।
4: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, सुनो दिल से।

0: गोपालगंज अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
1: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
0: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
1: और एक्सट्रीम 125R स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
0: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
0: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
1: कॉल नाउ 9656 59536 या 9656 57902।
2: अगर आपका फर्नीचर डोलता है और बोलता है तो एक्सचेंज तो मांगता है।
3: संतोष फर्नीचर लेकर आ गए हैं ग्रेट एक्सचेंज ऑफर।
4: ग्रेट एक्सचेंज ऑफर, अपने घर के पुराने सोफा और डाइनिंग को ले आएं और नए सोफा तथा डाइनिंग को ले जाएं और बनाएं अपने घर को सुंदर तथा आकर्षक।
3: आज ही विजिट करें संतोष फर्नीचर, चिराईगर पेट्रोल पंप के सामने, कॉलेज रोड, गोपालगंज। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 82 101 87 952। नियम और शर्तें लागू।
5: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
6: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
5: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
6: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटो कॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99 399 66 999।
7: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
0: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
7: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
0: पता जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512 11001।
8: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं। दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
1: और दुल्हन का लहंगा साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ। इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
2: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा।
3: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
4: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
2: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा साड़ी सूट पीस, हर डिजाइन, हर रंग, हर बजट में।
1: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
2: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
4: कॉल करे 87894-18744।
5: अरे स्टीयरिंग हिल क्यों रहा है और ये टायर जल्दी घिस क्यों रहे हैं?
2: अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा तो समझ जाइए, टायर को चाहिए अलाइनमेंट और बैलेंसिंग।
4: और इसके लिए जिले में भरोसे का एक ही नाम है, मिश्रा टायर्स, अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग।
2: यहाँ होता है कंप्यूटराइज्ड व्हील अलाइनमेंट, व्हील बैलेंसिंग, 3D अलाइनमेंट, डिजिटल बैलेंसिंग, सब कुछ आधुनिक मशीनों से।
4: साथ ही सभी कंपनी के टायर ट्यूब बेहद किफायती दाम पर उपलब्ध हैं।
2: एक बार सेवा का मौका जरूर दें। विजिट करें मिश्रा टायर्स कंप्यूटराइज्ड अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग, शिव मंदिर पोखरा के सामने, NH 27 बंजारी गोपालगंज।
4: रोड सपोर्ट या जानकारी के लिए कॉल करें 8825214946।
2: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
4: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
2: श्री गोपाल मोटर्स गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस सिर्फ 86,168 रुपए में, HF डिलक्स सिर्फ 75,405 रुपए में, ग्लैमर एक्स सिर्फ 97,456 रुपए में, एक्सट्रीम 125R सिर्फ 1,10,881 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
4: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
2: या अभी कॉल कीजिए 92899-22567 या 97-7146-164।
6: ठक ठक
7: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
8: अच्छा मिला ही नहीं।
7: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
9: जी हाँ कमल श्री, याद रखें सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
7: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट गोपालगंज।
9: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है, जी हाँ सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
10: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपने भाषा की पहचान, रेडियो रिमझिम 90.4 FM, सुनो दिल से।

0: अरे स्टीयरिंग हिल क्यों रहा है और ये टायर जल्दी घिस क्यों रहे हैं?
1: अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा तो समझ जाइए, टायर को चाहिए अलाइनमेंट और बैलेंसिंग।
2: और इसके लिए जिले में भरोसे का एक ही नाम है, मिश्रा टायर्स, अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग।
1: यहाँ होता है कंप्यूटराइज्ड व्हील अलाइनमेंट, व्हील बैलेंसिंग, 3D अलाइनमेंट, डिजिटल बैलेंसिंग, सब कुछ आधुनिक मशीनों से।
2: साथ ही सभी कंपनी के टायर ट्यूब बेहद किफायती दाम पर उपलब्ध हैं।
1: एक बार सेवा का मौका जरूर दें। विजिट करें मिश्रा टायर्स कंप्यूटराइज्ड अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग, शिव मंदिर पोखरा के सामने, NH 27 बंजारी गोपालगंज।
2: रोड सपोर्ट या जानकारी के लिए कॉल करें 8825214946।
3: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
4: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
5: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
1: आज ही आएं गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्रगोखो लोड गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।
6: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
7: जो लोग डायबिटीज से परेशान हैं, वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य SP त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलता पूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य SP त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज, जैसे
8: सभी प्रकार के नशा, जैसे शराब, टेबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, टीका, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंता और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस तथा
7: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य SP त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलता पूर्वक करते हैं।
9: वैद्य SP त्यागी जी से मिलने का पता,
7: प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड, थावे रोड, भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में।
9: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 99-55-94-94-53
7: और 90-97-61-60-02।
10: सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता, रेडियो रिमझिम 90.4 FM जो हर पल कहे सुनो दिल से।

0: तब रामू काका हई इलेक्ट्रिक के इतना सारा सामान कहाँ से खरीद के ले आओ तनी?
1: ये सब सामान संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से लेके आओ तनी बाबू।
0: अरे ये सामान तो एक नंबर बुझाता और काफी डिजाइनदार भी बा।
1: अरे हाँ बाबू, अपना गोपालगंज में इतना अच्छा दुकान कहाँ बा? संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स में सस्ता में एक नंबर के सामान मिलेला।
0: हम तो अपना नौका घरवा खातिर इलेक्ट्रॉनिक के सारा सामान दिल्ली से लेके आवे के सोचत रहनी, लेकिन हम काले संतोष इलेक्ट्रॉनिक से जाके अपन पूरा सामान ले आए।
1: अरे हाँ बबुआ, संतोष इलेक्ट्रॉनिक से ही लिया, दिल्ली जाके पैसा बर्बाद कैले से का फायदा।
2: संतोष इलेक्ट्रॉनिक हाउस, जहाँ सस्ते दामों में बेस्ट क्वालिटी के इलेक्ट्रिक के सारे सामान मिलते हैं।
0: हमारा पता है चिराई घर पेट्रोल पंप के सामने, संतोष फर्नीचर के नीचे, कॉलेज रोड, गोपालगंज।
3: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
4: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
3: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
4: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
3: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
4: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
3: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
5: आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो, रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।
6: Now pick it up, pick it up.
7: Hello.
6: Now pick your phone up.
7: Hello.
6: Pick it up, pick it up.
7: Hello.
6: Now pick your phone up.

0: हेलो, नमस्ते, नमस्कार, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं हूं आप सबकी रेडियो दोस्त आरजे सोनी और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। और समय हो चुका है हेलो माय चॉइस के कार्यक्रम का, तो बिल्कुल समय के साथ हाजिर हूँ। यदि आप शो से जुड़ना चाहते हैं तो नंबर है 8029994911 पर कॉल करके जुड़ सकते हैं और अपनी फरमाइश सुन सकते हैं। और अब बढ़ते हैं आगे और लेते हैं पहला कॉल और सुनते हैं इनकी फरमाइश को।
1: नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम में। बदस्मो से आ रहे थे
2: जी। मैम सुनील कुशवाहा बात कर रहा हूँ, मैम मायर एमपी से।
1: जी जी, क्या हाल चाल है सुनील जी?
2: बस ठीक है मैम, बस बैठे थे मैम शो का इंतजार करते हुए मैम, तो टाइम हो गया तो हम सोचे चलो अभी फोन लगाते हैं, फोन भी लग गया मैम।
1: चलिए बढ़िया है। गाना कौन सा सुन रहा है आपको?
2: जी हमको सुनवा दीजिएगा फिल्म जीत से भगवान ने क्या बोले, तू धरती में जाए जहाँ पी रहे तेरी खुशबू से पहचान लूंगा। और सुनवाएंगे किसने रेडियो रिमझिम दोस्त लोग सुनते हैं, सभी दोस्तों के साथ सुनना चाहते हैं।
1: ओके, तो प्ले करेगा ना?
2: ओके मैम।
1: ओके, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, सो मैं कॉल किया।

0: हाँ अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजीम 90.4 FM में।
0: मैं मोहम्मद यूसुफ सिपाही डाला अपना मेडिकल हॉल से बोल रहा हूँ
1: जी। कैसे हैं?
0: बहुत बढ़िया है, अभी फोन लगाए थे तो कट गया, नेटवर्क नहीं था।
1: जी जी, बारिश हो रही है ना शायद इसकी वजह से नेटवर्क सही नहीं है।
0: यहाँ पर भी सिपाही डाला में बहुत जोरों से बारिश हो रही है, 2 घंटा हो गया लगभग।
1: हाँ यहाँ भी वही हाल है।
0: हाँ मौसम तो बहुत खराब है, अब क्या कीजिएगा,
1: क्या करेंगे, काम तो करना ही है।
0: ये है कि गेहूं वेहूं के दौरी हो गया।
1: हाँ हाँ हो गया, लेकिन बारिश हो गया तो खेत के लिए भी सही है। हाल हो जाएगा।
0: हाँ हाल हो जाएगा, बिचड़ा वगैरह गिरेगा गेहूं का, धान का।
1: हाँ जिसको गिराना होगा वो गिरा देगा, सही रहेगा उसके लिए।
0: तब हम यही कहेंगे कि आप हमको इसी बरसात में गाना सुनवा दीजिए।
1: जी बता दीजिए नाम।
0: ये कह रहे हैं कि बेमौसम बरसात हुई, अभी बरसात का मौसम नहीं है।
1: जी जी,
0: बेमौसम बरसात हुई है, कुछ तो ऐसी बात हुई है। अपना सब हम भूल गए जब से सोनी जी से बात हुई है। हाँ तो जारे उतारी बदरिया, यही
1: आवाज कट गया, एक बार और बताइए।
0: जारे वो कारी बदरिया
1: जी,
0: इसी गाने को सुनवाइएगा
1: और डेडिकेट भी करिएगा।
0: हाँ अपना मेडिकल हॉल के सभी स्टाफ और खासकर कन्हैया जी जो फौजी से रिटायर किए हैं उनको सुनवाइए।
1: चलिए तो प्ले कर रहे हैं गाना आपकी।
0: हाँ ठीक
1: ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सोना कॉल के जी।

0: रामू
1: हरिया कल तैयार रही लो पराली जलाए चले के बा।
2: ठीक बा भैया।
3: ए भैया एगो सूचना सुन ला हा। कृषि विभाग द्वारा एगो सूचना दिया जा रहा बा कि खेत के अवशेष यानी पराली नहीं खे जरावे के न तो कृषि विभाग के कोनो योजना के लाभ ना मिली और ऊपर से जुर्माना भी लगी।
1: ऐसन का है जरावला से काहे मना होता।
3: फसल के अवशेष जरला से हमनी के माटी पर्यावरण और हमनी के खुद के स्वास्थ्य के बहुत नुकसान होता। फसल के अवशेष के जरे से माटी के उर्वरता कम हो जाला, जरूरी सूक्ष्म जीव भी नष्ट हो जाला और पर्यावरण में हानिकारक गैस निकलेला। एक टन ठूठ जरला से 60 किलो कार्बन मोनोऑक्साइड और 1460 किलो कार्बन डाइऑक्साइड नियर जहरीला गैस वायुमंडल में निकलेला।
1: अरे हमरा तो जानकारी ना रहला कि एकरा से हमनी के पर्यावरण पर इतना नुकसान बा, लेकिन बतावा तू हमरा के एकर बढ़िया विकल्प का सरकार बतावता।
3: एकर बढ़िया विकल्प ये बाटे कि फसल के अवशेष के जराए के बजाय ओकरा के माटी में ही मिला ली। ऐसे हमनी के माटी में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम जैसन पोषक तत्व मिली, जोना से पैदावार में बढ़ोतरी हुई।
1: अच्छा तो अब से ठूठ के हमनी के जराए जा ना, एकरा के हमनी के माटी में मिलाएम जा, ताकि हमनी के माटी के उर्वरता बढ़ जाए और हमनी के पर्यावरण भी सुरक्षित रही। बहुत अच्छा कैलू भाई जानकारी दे के।
3: याद रखी ठूठ कूड़ा ना हा, खेती के गहना नहा, एकरा के जराई मत माटी में मिलाई। जिला कृषि विभाग गोपालगंज द्वारा जनहित में जारी।
4: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
5: अरे तो उसे डांटती क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
6: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
7: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
6: आज ही आए जेबी हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
4: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91 626 64 498 पे।

0: इतना परेशान क्यों दिख रही हो मेघा?
1: आसपास हर जगह चाचा जी का इलाज करा लिया, अब लगता है उन्हें दिल्ली लेकर ही जाना पड़ेगा।
0: अरे अपने गोपालगंज में गोरखपुर, पटना और दिल्ली जैसे बेहतर मेडिकल सुविधाओं के साथ खुल गया है एम्स के पूर्व चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक रंजन जी के देखरेख में जिले का पहला वेंटिलेटर युक्त सक्षम हॉस्पिटल, जहाँ पर 24 घंटे आईसीयू इमरजेंसी सेवा, एक्सपर्ट मेडिकल टीम द्वारा विभिन्न रोग जैसे हृदय रोग, शुगर, दमा, नस रोग, लकवा और पेट से जुड़ी गंभीर बीमारियों का अत्याधुनिक मशीनों के द्वारा सफलतापूर्वक इलाज किया जा रहा है।
1: आज विजिट करें सक्षम हॉस्पिटल, कमला राय कॉलेज रोड, इंडियन गैस एजेंसी के बगल में, गांधी टेक्निकल कॉलेज के सामने, डॉक्टर कॉलोनी, गोपालगंज। कॉल करें 7050061444 या 7870331444।
2: ठक ठक।
3: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
4: अच्छा मिला ही नहीं।
3: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
5: जी हाँ कमल श्री, याद रखें सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
3: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
5: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
6: Now pick your phone up.

0: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029494911। जी हाँ, 8029494911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
1: हेलो
2: जी, बहुत है आपका रेडियो रिमझिम नंबर से आ रहे सुनने।
1: सोनी मैम प्रणाम।
2: जी प्रणाम,
1: क्या हाल रहा है?
2: बिल्कुल बढ़िया, रो बताए कैसा बानी?
1: ठीक बानी। आज क्या बात, कभी स्विच ऑफ, कभी नेटवर्क या कभी चालू, क्या हो रहा है?
2: पता ना, बारिश होता तो शायद नेटवर्क इशू हुई।
1: कभी बंद बता रहा है, कभी नेटवर्क
2: ना, रिकॉर्डिंग तो शुरू ही हुआ है 11:05 में बारिश की वजह से, लेकिन उसके बाद अगर बंद चालू बता रहे तो प्रॉब्लम नेटवर्क इशू होगा।
1: तो ये बारिश हो रही है क्या अभी भी?
2: काफी भयानक वाला।
1: अच्छा, सुनाई कोई सलवार?
2: सब बढ़िया, धनेश मिश्रा बात करते हैं।
1: हाँ हाँ हाँ हाँ, आई कौनी है भोजपुरी में बात करेगा बात।
2: चलिए बढ़िया बात,
1: लौड़ो भोजपुरी में कमेंट करनी बड़ा बढ़िया लगे ला।
2: अच्छा,
1: अभी हमने तो मजबूरी बना की हिंदी आदमी बोले ला तो भोजपुरी। अच्छा, इतना अच्छा कौन शब्द बा?
2: कोनो भाषा नहीं है भोजपुरी नहीं
1: है, लेकिन मजबूरी बाकी आदमी हिंदी आदत पड़ गई है, भोजपुरी बतिया पड़ रहा था हिंदी में आ जाने को।
2: हाँ, सामने वाला जब हिंदी बोली तब बोलेंगे पड़ जा। कल ड्यूटी में बनी की रूम पे?
1: ना जी, ड्यूटी में बनी है, हमने सोमवार का छुट्टी रहा।
2: आज कौन गाना सुनने को बता दी?
1: आज काजल सहनी का सुना दी।
2: अच्छा, काजल सहनी के
1: और ये दाज गहरा मिलल बा प्यार के।
2: अच्छा,
1: ये आज सुना दी।
2: और सुनवाई के भी बात?
1: हाँ, वही रवि भैया भाभी लिखना सुनने वाले सारे को। रवि फोन किया था कि नहीं?
2: ना, अभी तो रवि फोन ना के ले रहे हैं।
1: गाँव में भेज ना।
2: अच्छा, तो ये बात तो ना पता बा, कहीं गाँव आने के बाद अभी बात ना भेज।
1: चलिए, फिर ढेर बात हो गई।
2: जी जी, चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हें कॉल करने।

0: खोखो खांसी
1: खांसी खोखो खांसी
2: खांसी एक खांसी दो खांसी तीन बज गई भैया देश की बीन। टीबी के कारण को जानो, खांसी हो तो मुंह ढक कर खांसो। टीबी रोग हवा में फैले, रखो अपना औरों का ध्यान। घर में धूप रोशनी हवा मिले तो कीटाणु सब मर जाएंगे, रोग मुक्त हम हो जाएंगे। खांसी खोखो खांसी। बलगम में है भरे कीटाणु, रख कागज में इसे जला दो या डाल राख में इसे दबा दो, रहे न टीबी नाम मिटा दो। खांसी खोखो खांसी। टीबी मुक्त भारत बनाए,
3: खुद भी बचे देश भी बचाए।
4: टीबी हारेगा देश जीतेगा। घर

0: पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।
1: अगर आपका फर्नीचर डोलता है और बोलता है तो एक्सचेंज तो मांगता है।
2: संतोष फर्नीचर लेकर आ गए हैं ग्रेट एक्सचेंज ऑफर।
3: ग्रेट एक्सचेंज ऑफर, अपने घर के पुराने सोफा और डाइनिंग को ले आएं और नए सोफा तथा डाइनिंग को ले जाएं और बनाएं अपने घर को सुंदर तथा आकर्षक।
2: आज ही विजिट करें संतोष फर्नीचर, चिराईगढ़ पेट्रोल पंप के सामने, कॉलेज रोड, गोपालगंज। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 82101 87952। नियम और शर्तें लागू।
4: क्या चाहते हो? मैं ना जाऊं अपने दोस्त की शादी में।
5: क्यों, क्या हुआ है?
4: तुम्हीं ने तो कहा था मुझे डिजाइनर लहंगा, साड़ी और गाउन दिलाओगे।
5: अरे तो कौन सी बड़ी बात है, आज ही चलते हैं गोपालगंज में लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स। वहाँ तुम्हें तुम्हारी मन पसंद के अच्छे अच्छे कपड़े मिल जाएंगे।
4: फिर ये भी ठीक है, चलो चलते हैं लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स।
5: शादी विवाह या किसी भी शुभ अवसर पर एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स जो है मेन रोड गोपालगंज में।
6: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
7: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
8: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल,
6: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा में, NH 27 पर दक्षिण साइड, गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
8: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
6: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
8: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन, और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
6: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब, फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
8: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा, NH 27 गोपालगंज।
6: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
9: Now pick it up,
10: hello.
9: Now pick your phone up,
10: hello.
9: Pick it up,
10: hello.
9: Now pick your phone up.

0: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029294911। जी हाँ, 8029294911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
1: नमस्कार सोनी जी।
2: नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
1: धर्मेंद्र तिवारी बोल रहे हैं
2: जी। कैसे हैं धर्मेंद्र जी?
1: भैया
2: तो क्या हो रहा था अभी?
1: अभी तो घर तो पाए हैं, बारिश हो रही, घर में कुछ काम है वही कर रहे थे।
2: अच्छा, तो गाना कौन सा सुनना है आपको?
1: शादी वाला कोई गाना सुनवा दीजिए।
2: शादी वाला और सुनवाना भी है?
1: हाँ, रेडियो रिमझिम सोता सुनेंगे सारे आदमी।
2: चलिए तो प्ले कर रहे हैं गाना आपकी
1: जी। नमस्कार।
2: नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद समय कॉल किया।

0: हेलो,
1: बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
0: नमस्ते मैम।
1: नमस्ते, नाम बता दीजिए अपना और कहाँ से?
0: जी, कुमारी गोपालगंज से।
1: जी, कैसे हैं खुशी जी?
0: अच्छे हैं, अपना बताइए।
1: मैं भी बढ़िया हूँ। क्या हो रहा था अभी?
0: अभी कुछ नहीं, बारिश हो रहा है, बैठे हैं।
1: तो गाना कौन सा सुनना है खुशी जी आपको?
0: गाना बज सका है।
1: कौन सा गाना?
0: भोजपुरी गाना बज सका है
1: जी। बिल्कुल बज सकता है भोजपुरी गाना।
0: लाए जाता माई हमारे मारे लगी हो।
1: अच्छा, प्यार के बुखार उतारे लगी हो, ये वाला गाना ना?
0: हाँ, यही।
1: अच्छा, और सुनाना भी है?
0: हाँ, तिरजी कुमारी, शिवम कुमार, सलोनी कुमारी को और आपको, जितने रेडियो सुने सब कुछ।
1: ओके, चलिए तो प्ले करे गाना आपकी।
0: हाँ, कर दीजिए।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय कॉल के।

0: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं, दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
1: और दुल्हन का लहंगा साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ। इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
2: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा,
3: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
4: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
2: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा साड़ी सूट पीस, हर डिजाइन हर रंग हर बजट में।
1: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
2: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
4: कॉल करे 87894-18744।
5: अरे स्टीयरिंग हिल क्यों रहा है और ये टायर जल्दी घिस क्यों रहे हैं?
2: अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा तो समझ जाइए, टायर को चाहिए अलाइनमेंट और बैलेंसिंग,
4: और इसके लिए जिले में भरोसे का एक ही नाम है, मिश्रा टायर्स, अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग।
2: यहाँ होता है कंप्यूटराइज्ड व्हील अलाइनमेंट, व्हील बैलेंसिंग, 3D अलाइनमेंट, डिजिटल बैलेंसिंग, सब कुछ आधुनिक मशीनों से।
4: साथ ही सभी कंपनी के टायर ट्यूब बेहद किफायती दाम पर उपलब्ध हैं।
2: एक बार सेवा का मौका जरूर दें, विजिट करें मिश्रा टायर्स कंप्यूटराइज्ड अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग, शिव मंदिर पोखरा के सामने, NH 27 बंजारी गोपालगंज।
4: रोड सपोर्ट या जानकारी के लिए कॉल करें 8825214946।
6: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
7: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से, संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला गोरखपुर।
6: आज ही संपर्क करें 7388-89470 या 9198886973।
8: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है।
4: अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
2: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है, चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से।
4: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें, आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
2: पता जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
9: एडमिशन फ्री, एडमिशन फ्री।
4: कहाँ पर?
9: अरे CBSE न्यू दिल्ली से एफिलिएटेड ज्ञानदा इंटरनेशनल स्कूल, छवही खास, गोपालगंज,
4: जहाँ मिलता है क्वालिटी एजुकेशन, स्मार्ट लर्निंग एनवायरनमेंट, एक्सलेंट एकेडमिक गाइडेंस और गोपालगंज के टॉप परफॉर्मर्स तैयार करने की परंपरा।
9: यहाँ नर्सरी से 12th तक आधुनिक और रिजल्ट ओरिएंटेड एजुकेशन सिस्टम। फिलहाल नर्सरी से 9th और 11th क्लास में एडमिशन शुरू है,
4: तो देर ना करें, ऑफिस टाइम सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
9: ज्ञानदा इंटरनेशनल स्कूल, पता छवही खास, NH 27, गोपालगंज। कॉन्टैक्ट 9852636537 और 9835569650।
4: अगर आप चाहते हैं अपने बच्चों के लिए स्मार्ट एजुकेशन, सुरक्षित एवं संस्कार के साथ शिक्षा, साफ सुथरा माहौल, AC हॉस्टल की उत्तम व्यवस्था और अपने बच्चों का उज्जवल भविष्य, तो गोपालगंज में एक ही नाम,
2: बाबू भगवान सहाय सेंट्रल स्कूल। CBSE पैटर्न पर आधारित एक कंप्लीट को एजुकेशनल स्कूल, क्लास 10th तक, सेशन 2026 से 2027 के लिए प्ले ग्रुप से लेकर कक्षा 8वीं तक एडमिशन ओपन।
4: यहां मिलती है वेल क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी, स्मार्ट क्लासेस, मॉडर्न फैसिलिटीज, कंप्यूटर क्लासेस विद लैब और इंग्लिश स्पोकन क्लासेस।
2: कमजोर छात्रों के लिए एक्स्ट्रा क्लासेस की विशेष व्यवस्था, नीट एंड क्लीन एटमॉस्फेयर और CCTV कैमरा की सुविधा,
4: बस एवं आवासीय हॉस्टल सुविधा उपलब्ध, साथ ही सैनिक स्कूल, नवोदय, नेतरहाट और अलीगढ़ जामिया की तैयारी की सुविधा, 100% सफलता की गारंटी के साथ। पता हरखुआ भगवान नगर, वार्ड नंबर 24, विष्णु शुगर मिल के पश्चिम, गोपालगंज।
2: संपर्क करें 8002221969 या 9117018350।
10: तू जो है,
11: आप सुन रहे हैं जिले की आवाज, रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।

0: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029494911। जी हाँ, 8029494911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
1: हेलो
2: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
1: हाँ सर जी, हमारा संगठन होता का है।
2: जी जी, क्या होता है बताए।
1: फोन था के कट गया है, नेटवर्क
2: ना जी सबके संगे होता है। शायद बारिश के मौसम बनो, बारिश काफी तेज आवा था तो मैं नेटवर्क था फंसा था।
1: हम जाने की हमारे संगे होता है कभी।
2: आज काफी भयानक वाला बारिश होता, आज 2 घंटा हो गया अभी बारिश होता।
1: हम नहीं कहता अभी नीचे
2: ना, यहाँ तो होता बारिश खुला रहता महीने आज ऐसे अंदर पैर रखनी फिर बारिश हो गए। बात करता नहीं
1: ना। हाँ जी हाँ जी
2: जी, तब बताए जी।
1: तब बढ़िया बा, हमने कहा 29 तारीख के खूब भयंकर बारिश भइल है, नहीं पानी वही तरी
2: ओ दिन तेहू जी भइ रहे, शाम के बारिश भइ रहे।
1: हाँ शाम के पूरा टेंट समझाने अपना लोग के लागल रहे, दिया भी रहे
2: सब लेके चल गए।
1: हमने के पूरी खाई बैठल है यार, मतलब शाम के ही अभी मतलब 2-4 कवर तक खाई नहीं रखा, तब तक पतल उतल में दिया
2: बोला की ना खाए दे आज
1: ना मिला।
2: अब सब उदिया ले गए तो कैसे आदमी खाए।
1: हाँ पूरा टेंट समझाना में पानी लग रहा है, एक फीट तक पानी लग रहा है तो मैं अभी कहाँ बैठी हूँ, कहाँ खाई है
2: ना खा पाई है। सही बात बा।
1: हाँ खाना में कुछ देख जो ड्रम छोल है ओकरा में पानी देखते देखती जो रहे ओकरा में पानी भर गया।
2: वही बात बटे, खाना भी बर्बाद हो गई।
1: हाँ
2: जी, तो बता दी गाना कौन सुने के बाद।
1: अच्छा सुने के चाहत पड़ोन यहाँ पवन सिंह के सनहिया लगावल बहुत बात नहीं है।
2: और सुनवाए के भी बा।
1: हाँ सुनवावे का पूरा रेडियो काल फैमिली बार हुआ बानी हम बानी। अरे घर तो बोले जानती संगे तनी छटक गई बड़न पटक गई बड़न जानते बनी उनका घरेलू मैटर बनी।
2: अच्छा अच्छा, क्या वहाँ के श्रीमती जी ने किया आवेदन का।
1: श्रीमती जी कहते थे कि 24 घंटा में 23 घंटा तू उनके संग रहो तो हमारा संग रहो।
2: 24 घंटा में 23 घंटा ना रखी।
1: हाँ तू अब बड़न की बार बार हमारे कहे चले जाए बोलन,
2: तब तक लड़ाई होके के बाद बटे।
1: हाँ वही से लड़ाई हो जाता है। बुधे के दिन से खदल बने की तू हमारा संग भाई मत रहा।
2: चली बढ़िया के ले बनी ऐसा बात बता।
1: हां कहते बनी कि हमारा संग रहबो, हम अपन जा बनी चाहे ठीक बनी, हमारा से जब जरूरत पड़े तब हमारा से मिल ली है।
2: जब काम पड़े तब मिल ली है। ठीक
1: बा। हां काम पड़े तब मिल ली है।
2: चली बढ़िया,
1: काम पड़े तब मम्मी के बिना मतलब कि हमारा संग रहलो भी ठीक नहीं है।
2: बिल्कुल
1: हां, उनको मेरा भी कहना है।
2: चली ठीक बा, बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हें कॉल करने।
3: काहे आखिर काहे काहे रोवलू जब हंसावे के ना रहे, काहे गुनगुनौलू जब गावे के ना रहे। आज आंसू पोछतनी एगो प्रश्न बन के, काहे कैलू मोहब्बत जब निभावे के ना रहे।

0: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: अरे स्टीयरिंग हिल क्यों रहा है और ये टायर जल्दी घिस क्यों रहे हैं?
2: अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा तो समझ जाइए, टायर को चाहिए अलाइनमेंट और बैलेंसिंग।
3: और इसके लिए जिले में भरोसे का एक ही नाम है, मिश्रा टायर्स, अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग।
2: यहाँ होता है कंप्यूटराइज्ड व्हील अलाइनमेंट, व्हील बैलेंसिंग, 3D अलाइनमेंट, डिजिटल बैलेंसिंग, सब कुछ आधुनिक मशीनों से।
3: साथ ही सभी कंपनी के टायर ट्यूब बेहद किफायती दाम पर उपलब्ध हैं।
2: एक बार सेवा का मौका जरूर दें। विजिट करें मिश्रा टायर्स कंप्यूटराइज्ड अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग, शिव मंदिर पोखरा के सामने, NH 27 बंजारी, गोपालगंज।
3: रोड सपोर्ट या जानकारी के लिए कॉल करें 8825214946।
4: जिले का गौरव संतोष मेडिकल हॉल, घोष मोड़, दरगाह रोड, गोपालगंज।
5: गोपालगंज जिले का प्रतिष्ठित अंग्रेजी दवा की दुकान संतोष मेडिकल हॉल।
6: हमारे यहाँ भारत के प्रसिद्ध डॉक्टरों द्वारा लिखी गई सभी प्रकार की अंग्रेजी दवाएं उपलब्ध हैं, जैसे गोरखपुर, पटना, कलकत्ता, लखनऊ, बनारस, चेन्नई और मुंबई के डॉक्टरों द्वारा लिखी गई दवाइयाँ भी मिलती हैं।
7: एक सूचना, संतोष मेडिकल हॉल अब चला गया है कॉलेज रोड चिराई घर के पहले, गोपालगंज। संपर्क सूत्र है 6200042403, 6200042403।
8: अरे ए चाची, जब आँख से साफ नहीं खेलो को तो रोड पर लड़खड़ा के कहे चलतनी, और तहार मोतियाबिंद का ऑपरेशन होके वाला रहनु, ओकर का भइल?
9: अरे ए बबू, परेशानी तो बा, लेकिन ऑपरेशन से हमके बहुते डर लागेला। सुनले बानी की आँख में सुई लागेला, काफी दर्द होत होइनु।
8: अरे बाग चाची, तू कावना दुनिया में बारू। अब अपना गोपालगंज में चेन्नई के डॉक्टर एस हैदर जी आ गइल बनी। यहाँ के आँख में बिना सुई लगौले, बिना चीड़ फाड़ कइले और बिना टाका लगौले फेको मशीन के द्वारा आँख के ऑपरेशन करत तनी। तो तू इनके लगे काहे न कुचल जा, आँख में कोनो तरह के दर्द भी ना होई और ऑपरेशन भी हो जाए।
7: आंखों से जुड़ी बीमारियों के सफल इलाज के लिए आज ही मिले सिवान के सुपर सिद्ध डॉक्टर इसराइल की सुपुत्री डॉक्टर एस हैदर से। साथ ही हर शुक्रवार को मिले ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट डॉक्टर MA अकबर जी से। ध्यान रहे, चेन्नई आई केयर अब चला गया है कमला राय कॉलेज रोड यमहा शोरूम के सामने, रालसन होटल के पश्चिम, गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 9903569015 पे।
10: तरंग 90.4 पर आप जिले की आवाज रेडियो रिमझिम को सुन रहे हैं।
11: Now pick it up, pick it up.
12: Hello.
11: Now pick your phone up.
12: Hello.
11: Pick it up, pick it up.
12: Hello.
11: Now pick your phone up.
13: बात आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
14: हेलो मैडम, नमस्कार।
13: नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
14: जी मैं मन्नान बोल रहा हूँ कपूरथोड़ा से।
13: जी कैसे हैं मन्नान जी?
14: बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, आज टाइम मिल गया है फोन करने के लिए। नाश्ता पानी हो गया?
13: जी जी बिल्कुल हो गया है।
14: हो गया कि हो रहा?
13: नहीं नहीं हो गया है
14: ना, हमको तो लगता है कि हो रहा है।
13: ना ना आज तो सुबह में ही हो गया है।
14: तो गाना सुना दीजिए मैडम आज।
13: जी
14: बन के दुल्हनिया मैं चली तेरे द्वार। तो गाना हमको वही सुनना था।
13: और सुनवाना भी है?
14: और सुनवाना है क्या है, वही जो आसाम वाले लोग आए हैं तो उन लोगों को सुनाना है, जैसे बेनजीर नाम है, बाबुल नाम है ना, आलिया नाम है
13: ना,
14: इन लोगों को सुनवाना है और आपको सुनवाना है। बाकी रेडियो में जितने रिमझिम के साथ प्रेमी है लोग लो सुनेंगे
13: तो प्ले करे गाना।
14: बिल्कुल शौक से प्ले कीजिए, ज्यादा सुने आपका प्ले किए हुए गाना।
13: जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हेलो माय चॉइस में कॉल किया।

0: गुड मॉर्निंग मैम।
1: गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंगटोन 90.4 FM में।
0: थैंक यू मैम, आपको भी बरसात मुबारक।
1: जी जी, बरसात आपके उधर भी हो रही है क्या?
0: बहुत अधिक, आज तो रेनकोट पहन के आए हैं काम पे।
1: अच्छा,
0: टाइम पे ही आ गए थे, बारिश हो रहा था।
1: जब रेनकोट पहन के आना है तो आदमी टाइम पे आएगा।
0: हाँ, और आज हमें एक भजन सुनना है।
1: जी बिल्कुल, बताइए कौन सा भजन सुनना है।
0: संजय मित्तल का गाया हुआ है, प्रेम तुमसे किया तो गलत क्या किया, जिंदगी अब तेरे नाम है सांवरे।
1: जी, और सुनाना भी है।
0: हाँ, सारे मिसनर्स लोग को। और जमाना बहुत खराब चल रहा है, लग रहा है कि अब भगवत भक्ति ही आदमी का

0: अरे ए चाची, जब आँख से साफ नहीं खेलो को तो रोड पर लड़खड़ा के कहे चलतनी, और तहार मोतियाबिंद का ऑपरेशन होके वाला रहनु, ओकर का भइल?
1: अरे ए बबू, परेशानी तो बा, लेकिन ऑपरेशन से हमके बहुते डर लागेला। सुनले बानी की आँख में सुई लागेला, काफी दर्द होत होइनु।
0: अरे बाग चाची, तू कावना दुनिया में बारू। अब अपना गोपालगंज में चेन्नई के डॉक्टर एस हैदर जी आगल बनी, यहाँ के आँख में बिना सुई लगौले, बिना चीड़ फाड़ कइले और बिना टाका लगौले फेको मशीन के द्वारा आँख के ऑपरेशन करत नी। तो तू इनके लगे काहे न कुचल जा, आँख में कोनो तरह के दर्द भी ना होई और ऑपरेशन भी हो जाए।
2: आंखों से जुड़ी बीमारियों के सफल इलाज के लिए आज ही मिले सिवान के सुप्रसिद्ध डॉक्टर इसराइल की सुपुत्री डॉक्टर एस हैदर से, साथ ही हर शुक्रवार को मिले ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट डॉक्टर एम ए अकबर जी से। ध्यान रहे, चेन्नई आई केयर अब चला गया है कमला राय कॉलेज रोड यमहा शोरूम के सामने रालसन होटल के पश्चिम गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99053 69015 पे।
3: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
4: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा।
5: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद है अनुभवी डॉक्टर, डॉक्टर स्वाति के गुप्ता MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर पी के गुप्ता MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन SVBPN न्यू दिल्ली।
4: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
6: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
4: संपर्क 99393965930।
7: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
8: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
2: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
9: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
2: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम RR रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 9974434468 पे। सुनिए सुनिए सुनिए,
10: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
2: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
10: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
2: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
11: Now pick your phone up.

0: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सब इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029494911। जी हाँ, 8029494911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
1: हेलो,
2: बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंगिन 90.4 FM में।
1: नमस्कार मैडम।
2: नमस्कार, नाम बता दीजिए अपना और कहाँ से?
1: नाम मनोज कुमार
2: जी,
1: हम मुंगेर जिला से बोल रहे हैं।
2: कैसे हैं?
1: ठीक है।
2: तो क्या हो रहा था?
1: क्या हो रहा था, बगीचा में बैठे हैं, रखवाली करते हैं। अपने क्षेत्र का कुछ जानकारी हम आपसे साझा कर सकते हैं?
2: जी बिल्कुल कर सकते हैं।
1: देखिए, हमारे गांव के बगल में एक घोड़ाखुर पहाड़ है, जिसका पौराणिक गाथा है कि जब दशरथ जी घोड़ा छोड़े थे तो वो घोड़ा जो था वही पहाड़ पे आके रुका था, तो उसका पदचिन्ह अभी तक यहाँ है।
2: अच्छा अच्छा,
1: उसी के नाम पे इस पहाड़ का नाम घोड़ाखुर रखा गया है। और वहाँ पर एक भोले बाबा का मंदिर है, वहाँ का मनोकामना सिद्ध होता है, जो भी कोई वहाँ जाके मांगते है ना, का मनोकामना सिद्ध होता है उस मंदिर में। बगल में झील है, बहुत सुंदर जी, बहुत अच्छा देखने में लगता है। 1 जनवरी को लोग वहाँ पिकनिक करने भी जाते हैं।
2: ये बढ़िया जानकारी दी है, कभी घूमना हुआ तो फिर आदमी आ सकता है उधर।
1: हाँ आइए, बहुत अच्छा घूमने का जगह है यहाँ पर। पानी इतना अच्छा गिरता है ना ऊपर से झरना, कहते हैं कि अगर किसी को खुजली उजली हो गया है कुंड में नहा लीजिए तो ठीक हो जाएगा।
2: अच्छा,
1: हाँ हमारे पहाड़ का यही विशेषता है मैडम।
2: चलिए
1: गाना हमको सुना दीजिए आज
2: जी,
1: दोस्ती का। गुड़िया कब तक रूठी रहोगी?
2: सुनवाना भी है।
1: सुनवाना है आपको, सरिता देवी को और सिंधिन के सारे श्रोतागण को। ठीक है, प्रणाम मैडम, गाना सुना दीजिए
2: जी। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद कॉल किया।

0: रामू हरिया कल तैयार रहिए लो पराली जलाए जले के बा।
1: ठीक बा भैया।
2: ए भैया एगो सूचना सुन ला हा। कृषि विभाग द्वारा एगो सूचना दिया जा रहा बा कि खेत के अवशेष यानी पराली नहीं खे जरावे के ना तो कृषि विभाग के कोनो योजना के लाभ ना मिली और ऊपर से जुर्माना भी लगी।
0: ऐसा का है जरावला से काहे मना होता।
2: फसल के अवशेष जरला से हमनी के माटी पर्यावरण और हमनी के खुद के स्वास्थ्य के बहुत नुकसान होता। फसल के अवशेष के जरे से माटी के उर्वरता कम हो जाला, जरूरी सूक्ष्म जीव भी नष्ट हो जाला और पर्यावरण में हानिकारक गैस निकलेला। एक टन ठूठ जरला से 60 किलो कार्बन मोनोऑक्साइड और 1460 किलो कार्बन डाइऑक्साइड नियर जहरीला गैस वायुमंडल में निकलेला।
0: अरे हमरा तो जानकारी ना रहला कि एकरा से हमनी के पर्यावरण पर इतना नुकसान बा, लेकिन बतावा तू हमरा के एकर बढ़िया विकल्प का सरकार बतावता।
2: एकर बढ़िया विकल्प ये बाटे कि फसल के अवशेष के जराए के बजाय ओकरा के माटी में ही मिला ली। ऐसे हमनी के माटी में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम जैसन पोषक तत्व मिली, जोना से पैदावार में बढ़ोतरी हुई।
0: अच्छा तो अब से ठूठ के हमनी के जराएब जा ना, एकरा के हमनी के माटी में मिलाएब जा, ताकि हमनी के माटी के उर्वरता बढ़ जाए और हमनी के पर्यावरण भी सुरक्षित रही। बहुत अच्छा करी भाई जानकारी दे के।
2: याद रखी, ठूठ कूड़ा ना, खेती के गहना हा, एकरा के जराई मत माटी में मिलाई। जिला कृषि विभाग गोपालगंज द्वारा जनहित में जारी।
3: इतना परेशान क्यों दिख रही हो मेघा?
4: आसपास हर जगह चाचा जी का इलाज करा लिया, अब लगता है उन्हें दिल्ली लेकर ही जाना पड़ेगा।
3: अरे अपने गोपालगंज में गोरखपुर, पटना और दिल्ली जैसे बेहतर मेडिकल सुविधाओं के साथ खुल गया है एम्स के पूर्व चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक रंजन जी के देखरेख में जिले का पहला वेंटिलेटर युक्त सक्षम हॉस्पिटल, जहां पर 24 घंटे आईसीयू इमरजेंसी सेवा, एक्सपर्ट मेडिकल टीम द्वारा विभिन्न रोग जैसे हृदय रोग, शुगर, दमा, नस रोग, लकवा और पेट से जुड़ी गंभीर बीमारियों का अत्याधुनिक मशीनों के द्वारा सफलतापूर्वक इलाज किया जा रहा है।
4: आज विजिट करें सक्षम हॉस्पिटल, कमला राय कॉलेज रोड, इंडियन गैस एजेंसी के बगल में, गांधी टेक्निकल कॉलेज के सामने, डॉक्टर कॉलोनी, गोपालगंज। कॉल करें 7050061444 या 7870331444।
5: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं, दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
6: और दुल्हन का लहंगा साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ। इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
7: मम्मी पापा मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा,
8: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
9: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
7: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा साड़ी सूट पीस, हर डिजाइन, हर रंग, हर बजट में।
6: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
7: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
9: कॉल करे 87894 18744।
7: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
9: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
7: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
9: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
7: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
9: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
7: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
9: कॉल नाउ 9056569536 या 9056557902।
10: ठक ठक।
11: काजी आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
12: अच्छा मिला ही नहीं।
11: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
13: जी हाँ कमल श्री, याद रखें सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
11: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट गोपालगंज।
13: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
14: अब बेटा बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
15: माँ अब घबराइए नहीं,
1: चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
10: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने। सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
7: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-0-97-06-575।
15: Now pick it up,
16: hello.
15: Now pick your phone up,
16: hello.
15: Pick it up,
16: hello.
15: Now pick your phone up,
16: hello.
17: Jab phone kehte bajti hai to kehte hain hello.
18: Hello, hello, hello, hello, hello.
17: Bhage bhage firte hain.
19: Break ke baad aap sabhi ka ek bar fir se swagat hai Hello My Choice ke show mein. आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029-94-911। जी हाँ, 8029-94-911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
20: हेलो मैम, सलाम अलैकुम।
19: वालेकुम सलाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंकिन 90.4 FM में।
20: थैंक यू
19: जी। नाम बता दीजिए अपना और कहाँ से?
20: जी रियाज अंसारी, सिवान।
19: जी जी, क्या हाल चाल है?
20: हाल चाल बढ़िया है, यहाँ तो कंपटीशन हो रहा है कॉल लगाने के लिए।
19: ये तो कंपटीशन में आप जीत गए लग रहा है।
20: मैं फोन किया।
19: चलिए बढ़िया है, तो बता दीजिए।
20: पहली बार भी किया था तो 75, अभी 76।
19: चलिए बढ़िया है, लग गया ना?
20: हाँ लग गया जी, लग गया। लड़ाई पे जा रहे हैं, मार कर देंगे, मार कर देंगे।
19: चलिए, तो आपको उधर भी बारिश हो रही है?
20: नहीं, हमारे और इधर हम बेंगलोर में है ना, अभी फर्स्ट टाइम कॉल किया आपको, सेकंड टाइम है। तो इधर तो दिन में धूप होता है पर माशाल्लाह रात को बहुत अच्छा मौसम हो जाता है। अब बारिश भी रात को ही होती है, दिन में कमाओ रात को सो जाओ।
19: बढ़िया है, रात को बारिश होती है तो कोई टेंशन नहीं रहता, अपने घर में सब कुछ रहता है।
20: उधर तो गाँव में तो पूरा आंधी तूफान, क्या क्या किसी का समय आना, टेंट सब उड़ जाए।
19: आज तो बहुत सारा इधर लगन है और देख रहे हैं कि सुबह 10 बजे से बारिश इतनी कंटिन्यू हो रही है।
20: हम भी मिस कर रहे हैं यार बहुत अपने गाँव सुबह।
19: चलिए, तो गाना कौन सा सुनना है?
20: गाना हमें सुनना है वो मेरे आने पे खिल जाना तेरा, और मेरे जाने पे रुक जाना तेरा याद है ना।
19: जी, और डेडिकेट भी करिएगा।
20: हाँ करेंगे, आकाश, सैनुल्ला, मुस्कान और शहजादी।
19: चलिए, तो प्ले करे गाना आपकी।
20: और एक बात मैम, कुछ बोल सकते हैं शायरी वगैरह? क्योंकि
19: बिल्कुल कुछ भी बोल सकते हैं जिससे सुन के किसी को आपत्ति नहीं हो, किसी को
20: नहीं, नहीं, नहीं,
19: नहीं, नहीं, मतलब मैं आपको बोल रही हूँ किसी को दुख ना हो, बाकी आप सब कुछ बोल सकते हैं। और गाने में भी कोई ये नहीं है, गाना बस जातिवाद नहीं होना चाहिए, धार्मिक गाना नहीं होना चाहिए, बस
20: वो सबसे दूर रहते हम लड़ाई झगड़ा से, क्या मतलब। तो हम यही कहना चाहते कि हमारे हेड सॉन्ग के साथ में एक भी बज जाए, मांगा था खुशी आशियाने की चल पड़ी आधिया जमाने की, मांगा था खुशी आशियाने की चल पड़ी आधिया जमाने की, मेरा दर्द कोई समझ ना सका क्योंकि हम याद रहते हमेशा मुस्कुराने।
19: जी जी,
20: बस इतना ही, थैंक यू।
19: वेलकम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, हमारी चॉइस में कॉल।
20: थैंक यू मैम,
19: वेलकम।

0: दोस्तों, आप लोग अभी कार्यक्रम हेलो माय चॉइस को मेरे साथ यानी आरजे सोनी के साथ सुन रहे थे। अब समय हो चुका है इस कार्यक्रम से विदा लेने का, तो मुझे दीजिए अब जाने की इजाज़त और ऐसे ही सुनते रहिए रेडियो रिंजन 90.4 FM। मिलते हैं अगले कार्यक्रम में। नमस्कार।
1: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
2: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
1: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
2: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99-399-66-999।
3: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
4: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
3: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
4: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
3: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
5: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
6: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
5: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
6: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
5: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमान गढ़ी गोपालगंज में है।
6: जानकारी है तो कॉल करें 62052-62112 पे।
1: कान में दर्द के मारे जान ही निकल रही है, कहाँ जाऊँ, किससे इलाज कराऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा।
7: इसमें इतना समझना क्या, आज ही चलो डॉक्टर MD सादाब के पास जो है ENT स्पेशलिस्ट।
6: जी हाँ, उत्तर भारत के सबसे विश्वसनीय कान नाक एवं गले के विशेषज्ञ डॉक्टर MD शादाब पिछले 10 वर्षों से सिवान में सेवा दे रहे हैं, जो कि 10,000 से भी ज्यादा कान नाक गले के सर्जरी का अनुभव रखते हैं। साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड धारक मरीजों का निःशुल्क में इलाज किया जाता है। तो आज ही पहुँचिए इस्मत ENT केयर सेंटर सिसवन ढाला के उत्तर RK मॉडल स्कूल के बगल सिवान में।
1: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
8: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला गोरखपुर।
1: आज ही संपर्क करें 7388-89470 या 9198-88-6973।
9: कब भौजी, आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नु सारा मार्केट, देख लेनी नु सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
10: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है, पर कोनो जचल है ना?
9: ई बात बा, तो ऐसन करी कि अब चली सीधे हमारा साथे कमल श्री में।
5: महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
11: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर,

0: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है। लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है।
1: अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
2: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
1: सिर्फ एक से दो सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
2: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
3: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
4: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
2: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल,
1: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा में, NH 27 पर दक्षिण साइड, गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
2: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
1: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
2: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता, MBBS, MS, सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन, और डॉक्टर डेजी सिन्हा, MBBS, MD, DNB, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
1: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD, IPD, ICU, मॉड्यूलर OT, अल्ट्रासाउंड, पैथोलॉजी लैब, फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
2: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा, भोजपुरवा, NH 27, गोपालगंज।
1: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
5: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं, दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने।
6: और दुल्हन का लहंगा, साड़ी, कुछ भी तय नहीं हुआ। इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
7: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा।
8: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
9: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
2: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा, साड़ी, सूट पीस, हर डिजाइन, हर रंग, हर बजट में।
6: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
2: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
1: कॉल करें 87 8 94 18 7 44।

हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।

0: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
1: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
2: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल।
0: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
2: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
0: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
2: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
2: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा NH 27 गोपालगंज।
0: कॉल करे 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
2: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
0: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
2: श्री गोपाल मोटर्स गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस सिर्फ 86,168 रुपए में, HF डिलक्स सिर्फ 75,405 रुपए में, ग्लैमर एक्स सिर्फ 97,456 रुपए में, एक्सट्रीम 125R सिर्फ 1,10,881 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
0: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स NH 27 बंजारी चैन पट्टी गोपालगंज,
2: या अभी कॉल कीजिए 92899225 67 या 97 714 86 164।
3: प्रसाद क्लिनिक
4: स्त्री रोग ल्यूकेरिया यूट्रस का बाहर निकल जाना कान का बहना गठिया साइटिका कमर दर्द अधेड़ी थनैली चर्म रोग के सफल इलाज के लिए मिले
3: डॉक्टर श्रीमती कुंती देवी। रोगी देखने का स्थान बुधवार और शनिवार को मिंज स्टेडियम LIC ऑफिस के पास गोपालगंज
4: बाकी दिन जादवपुर बाजार।
2: 21 वर्षों से सिर्फ पढ़ाई नहीं भविष्य गढ़ने की पहचान है एक नाम सेंट जॉन स्कूल सासा मूसा गोपालगंज शाखा राजापुर बाजार गोपालगंज।
0: और अब 30 अप्रैल तक एडमिशन बिल्कुल फ्री।
2: CBSE पैटर्न पर आधारित शिक्षा नर्सरी से क्लास 10वीं तक, कंप्यूटर एजुकेशन, बस फैसिलिटी, रेगुलर टेस्ट और पेरेंट मीटिंग्स, एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ सेफ और पीसफुल कैंपस।
0: सेंट जॉन स्कूल में बच्चों को सिर्फ सिखाया नहीं जाता, उन्हें तराशा जाता है।
2: तो देर मत कीजिए, 30 अप्रैल तक फ्री एडमिशन का लाभ उठाइए।
0: सेंट जॉन स्कूल सासा मूसा गोपालगंज, कॉल अस
5: 9939721308।
6: नन्ही सी जान है, काफी गाढ़ा है, मारिए मत, हमें दे दीजिए।
7: कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो हमें जोड़ कर रखते हैं और कुछ करते हैं हमें आजाद।

कहीं ना कहीं आजाद को एहसास है कि उसकी जान विक्रम ठाकुर की दी हुई है। आजाद उनके लिए जान दे सकता है। इस जन्म में तो आजाद सिर्फ विक्रम ठाकुर का बन के रहेगा। किसी और का नहीं होगा बच्चे।

0: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
1: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं।
0: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
1: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
0: आज ही आएं डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99554-97644।
2: जो लोग डायबिटीज से परेशान हैं, वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलतापूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य एसपी त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज, जैसे
3: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टेबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, टीका, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंता और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस तथा
2: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलतापूर्वक करते हैं।
1: वैद्य एसपी त्यागी जी से मिलने का पता
2: प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में।
1: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 99554-94453
2: और 90-97-61-60-02।
4: अपने जिले के मशहूर डॉक्टर जे शरण एमडी फिजिशियन अब बैठ रहे हैं सुबह 10 बजे से आशा मेडिको जनता सिनेमा रोड गोपालगंज, और डॉक्टर जे शरण जी शाम 5 बजे से 7 बजे तक बैठ रहे हैं अपने निवास स्थान शबनम होटल के पीछे आजाद नगर गोपालगंज।
5: डॉक्टर साहब के यहाँ पर्ची का नंबर मोबाइल से भी लगाया जा सकता है।
6: आशा मेडिको में किसी भी प्रकार की लिखी दवाएं मिलती है, मोबाइल से दवा का ऑर्डर भी किया जा सकता है। मोबाइल नंबर है 76545-67666।
7: एक सूचना, डॉक्टर साहब रविवार को भी दोपहर 12 से 3 बजे तक बैठते हैं।
8: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।
9: सही मंजिल तक पहुंचने के लिए रास्ते चुनना होगा।

0: अरे ए चाची, जब आँख से साफ नहीं खेलो को तो रोडवा पर लड़खड़ा के कहे चलते नहीं, और तहार मोतियाबिंद का ऑपरेशन होके वाला रहे नू, ओकर का भइल?
1: अरे ए बबुओ, परेशानी तो बा, लेकिन ऑपरेशन से हमके बहुते डर लगेला। सुनले बानी की आँख में सुई लगेला, काफी दर्द होत होई नू।
0: अरे बाग चाची, तू कावना दुनिया में बारू। अब अपना गोपालगंज में चेन्नई के डॉक्टर एस हैदर जी आगल बनी, यहाँ के आँख में बिना सुई लगौले, बिना चीड़ फाड़ कैले और बिना टाका लगौले फेको मशीन के द्वारा आँख के ऑपरेशन करतनी। तो तू इनके लगे काहे नहीं कुचल जा, आँख में कोनो तरह के दर्द भी ना होई और ऑपरेशन भी हो जाए।
2: आंखों से जुड़ी बीमारियों के सफल इलाज के लिए आज ही मिले सिवान के सुपरसिद्ध डॉक्टर इसराइल की सुपुत्री डॉक्टर एस हैदर से, साथ ही हर शुक्रवार को मिले ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट डॉक्टर एम ए अकबर जी से। ध्यान रहे, चेन्नई आई केयर अब चला गया है कमला राय कॉलेज रोड यमहा शोरूम के सामने रालसन होटल के पश्चिम गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99053 69 015 पे।
3: अगर आपका फर्नीचर डोलता है और बोलता है तो एक्सचेंज तो मांगता है।
4: संतोष फर्नीचर लेकर आ गए हैं ग्रेट एक्सचेंज ऑफर।
5: ग्रेट एक्सचेंज ऑफर, अपने घर के पुराने सोफा और डाइनिंग को ले आएं और नए सोफा तथा डाइनिंग को ले जाएं और बनाएं अपने घर को सुंदर तथा आकर्षक।
4: आज ही विजिट करें संतोष फर्नीचर, चिराईगर पेट्रोल पंप के सामने कॉलेज रोड गोपालगंज। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 82 101 87 952। नियम और शर्तें लागू।
6: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
7: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
6: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलता पूर्वक किया है।
7: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
6: आज ही आएं डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99 554 97 644।

0: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट, KGMU, लखनऊ।
0: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
1: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
0: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
1: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
2: एडमिशन फ्री, एडमिशन फ्री।
0: कहाँ पर?
2: अरे CBSE न्यू दिल्ली से एफिलिएटेड ज्ञानदा इंटरनेशनल स्कूल, छवही खास, गोपालगंज,
0: जहाँ मिलता है क्वालिटी एजुकेशन, स्मार्ट लर्निंग एनवायरनमेंट, एक्सलेंट एकेडमिक गाइडेंस और गोपालगंज के टॉप परफॉर्मर्स तैयार करने की परंपरा।
2: यहाँ नर्सरी से 12th तक आधुनिक और रिजल्ट ओरिएंटेड एजुकेशन सिस्टम। फिलहाल नर्सरी से 9th और 11th क्लास में एडमिशन शुरू है,
0: तो देर ना करें। ऑफिस टाइम सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
2: ज्ञानदा इंटरनेशनल स्कूल, पता, छवही खास, NH

0: तब रामू काका हई इलेक्ट्रिक के इतना सारा सामान कहाँ से खरीद के ले आओ तनी?
1: ई सब सामान संतोष इलेक्ट्रॉनिक से लेके आओ तनी बाबू।
0: अरे ई सामान तो एक नंबर बुझाता और काफी डिजाइनदार भी बा।
1: अरे हाँ बाबू, अपना गोपालगंज में इतना अच्छा दुकान कहाँ बा? संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स में सस्ता में एक नंबर के सामान मिलेला।
0: हम तो अपना नौका घरवा खातिर इलेक्ट्रॉनिक के सारा सामान दिल्ली से लेके आवे के सोचत रहनी, लेकिन हम काले संतोष इलेक्ट्रॉनिक से जाके अपन पूरा सामान ले आए।
1: अरे हाँ बबुआ, संतोष इलेक्ट्रॉनिक से लिए या दिल्ली जाके पैसा बर्बाद कर ले से का फायदा?
2: संतोष इलेक्ट्रॉनिक हाउस, जहाँ सस्ते दामों में बेस्ट क्वालिटी के इलेक्ट्रिक के सारे सामान मिलते हैं।
0: हमारा पता है चिराई घर पेट्रोल पंप के सामने, संतोष फर्नीचर के नीचे, कॉलेज रोड, गोपालगंज।
3: सुनिए सुनिए सुनिए,
4: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
3: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
4: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
3: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
5: अपने जिले के मशहूर डॉक्टर जे.जे. शरण एम.डी. फिजिशियन अब बैठ रहे हैं सुबह 10 बजे से आशा मेडिको जनता सिनेमा रोड गोपालगंज, और डॉक्टर जे.जे. शरण जी शाम 5 बजे से 7 बजे तक बैठ रहे हैं अपने निवास स्थान शबनम होटल के पीछे, आजाद नगर, गोपालगंज।
6: डॉक्टर साहब के यहाँ पर्ची का नंबर मोबाइल से भी लगाया जा सकता है।
7: आशा मेडिको में किसी भी प्रकार की लिखी दवाएं मिलती है, मोबाइल से दवा का ऑर्डर भी किया जा सकता है। मोबाइल नंबर है 76545 67666।
3: एक सूचना, डॉक्टर साहब रविवार को भी दोपहर 12 से 3 बजे तक बैठते हैं।
8: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
9: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
3: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
10: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
3: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम आरआर रोड, गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
11: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपने भाषा की पहचान, रेडियो रिद्म 90.4 FM। सुनो दिल से।

0: अगर आप चाहते हैं अपने
1: कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। भाजपा के शुभेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री की शपथ ली। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी शपथ ग्रहण में हुए शामिल। लोक भवन ने प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों को शैक्षणिक सत्र सुधारने के लिए कार्य योजना बनाने का दिया निर्देश। पटना उच्च न्यायालय समेत प्रदेश की सभी अदालतों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन, आपसी सहमति के आधार पर मामलों का हुआ निपटारा। और पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से गया, औरंगाबाद और रोहतास समेत राज्य के दक्षिणी हिस्सों में तेज हवा के साथ मूसलाधार बारिश। अब समाचार विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी के नेता शुभेंदु अधिकारी ने आज कोलकाता के बिग्रेड परेड ग्राउंड में आयोजित समारोह में पश्चिम बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। मुख्यमंत्री के साथ 5 मंत्रियों ने भी शपथ ली। राज्यपाल आरएन रवि ने मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ कई केंद्रीय मंत्री और बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी समेत भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री उपस्थित थे। इधर बिहार विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार ने शुभेंदु अधिकारी को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने पर बधाई दी है। नगर विकास मंत्री नीतीश मिश्रा ने कहा कि शहरों में नागरिक सुविधाओं को बेहतर करना उनकी प्राथमिकता होगी। पदभार संभालने के बाद पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि भविष्य को देखते हुए शहरों के विस्तार पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।
2: जो नए टाउनशिप की कल्पना है, जो माननीय मुख्यमंत्री जी का मिशन है, और उसके तहत हमको नए शहरों को एक वृहद रूप से भविष्य को देखते हुए उसको हमें विस्तार के साथ साथ उसमें सुविधाएं भी बढ़ानी है। उसके अलावा हमारी जितने भी अभी वर्तमान में शहरी क्षेत्र हैं, जहां नगर निकाय है, नगर निगम है, नगर परिषद है, नगर पंचायत है, तो उनमें भी बेटर सुविधाएं फैसिलिटीज हमको पहुंचानी है। लोगों को आसानी से सरकार की सुविधाएं मिले, योजनाओं का लाभ मिले और पूरी पारदर्शिता के साथ मिले, तो मेरी पूरी कोशिश होगी कि अपनी क्षमता के अनुसार 100% देते हुए बिहार की प्रगति के लिए और बिहार के लोगों के कल्याण के लिए काम कर सकूं।
1: जल संसाधन मंत्री संतोष कुमार सुमन ने आज पदभार ग्रहण कर लिया। संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि उनकी प्राथमिकता हर खेत तक पानी पहुंचाने की है।
3: हमारी प्राथमिकता है कि हर खेत तक कैसे सिंचाई का पानी पहुंचाया जाए, एक एक गांव में, एक एक खेतों तक, हमारे किसान के खेतों तक पानी पहुंच जाए, इसके लिए हम लोग कार्य कर रहे हैं, कार्य योजना बना रहे हैं, सर्वे हो रहा है और हम लोग का टारगेट है कि 30 तक एक भी खेत नहीं छूटे, किसान के खेतों तक पानी पहुँचे।
1: राजस्व और भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा कि विभागीय चुनौतियों को अवसर में बदला जाएगा। उन्होंने कहा कि अधिकारियों की लोगों के प्रति जवाबदेही तय की जाएगी। पटना में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि जो भी गलत करेंगे उनके खिलाफ विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी।
4: कल मैंने पदाधिकारी को, कर्मचारी को स्पष्ट निर्देश भी दिया कि मुझे ज्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं पड़े, इस चीज को याद रखना। तो इसलिए आने वाले समय में एक एक लोग जनता के प्रति जिम्मेवार बने, इसके लिए पदाधिकारी, कर्मचारी, सारा सिस्टम ईमानदारी से और जिम्मेवारी से काम करे तो मैं उसको सम्मान करूंगा। और जो आदमी सिस्टम में कहीं ना कहीं गलत करेंगे, या तो वो सुधरेंगे या जेल के सलाखे के अंदर रहेंगे।
1: प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों में शैक्षणिक सत्र सुधारने के लिए कार्य योजना बनाई जाएगी। लोक भवन ने इस संबंध में सभी विश्वविद्यालयों के कुल सचिवों को लिखे पत्र में कार्य योजना की रूपरेखा मांगी है। लोक भवन ने कहा है कि जून महीने में सभी विश्वविद्यालयों के अकादमिक सत्र की भी समीक्षा की जाएगी। इसके अलावा विश्वविद्यालयों को वित्तीय स्थिति भी अद्यतन रखने के निर्देश दिए गए हैं। केंद्र सरकार ने मंत्रिमंडल सचिवालय के विशेष सचिव के पाठक को बिहार में नियम कानूनों को सरल बनाने की जिम्मेदारी सौंपी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार उन्हें पुराने कानूनों को समाप्त करने के उद्देश्य से शुरू किए गए डीरेगुलेशन के दूसरे चरण के तहत लंबित मामलों को निपटाकर पोर्टल पर अपलोड करने को कहा गया है। इस सिलसिले में उन्होंने राज्य के वरीय अधिकारियों के साथ पटना में उच्च स्तरीय बैठक भी की है। पटना उच्च न्यायालय समेत प्रदेश की सभी अदालतों में आज राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। लोक अदालत में आपसी समझौते के आधार पर विभिन्न प्रकार के दीवानी और कुछ प्रकार के आपराधिक मामलों का निपटारा किया गया। पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश संगम कुमार साहू ने पटना व्यवहार न्यायालय परिसर में आयोजित लोक अदालत का उद्घाटन किया। लोक अदालतों में बैंक ऋण, बिजली वाद, वाहन दुर्घटना बीमा और श्रम जैसे मामले आपसी सहमति के आधार पर निष्पादित किए गए। पहली बार लोक अदालत में ट्रैफिक चालान से जुड़े मामलों की भी सुनवाई की गई। लोक अदालतों में 90 दिन से अधिक पुराने ट्रैफिक चालान से जुड़े मामलों की सुनवाई के लिए अलग पीठ का गठन किया गया था। हमारे संवाददाताओं ने बताया कि अररिया में 1227, शेखपुरा में 545 और शिवहर में 287 मामलों का निष्पादन किया गया। सुपौल में ट्रैफिक चालान से जुड़े 163 से अधिक मामलों का निपटारा किया गया। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और अटल पेंशन योजना ने 11 वर्ष पूरे कर लिए हैं। वित्त मंत्रालय ने कहा कि सामाजिक सुरक्षा की इन योजनाओं का उद्देश्य सभी को, विशेष रूप से समाज के वंचित और कमजोर वर्गों को किफायती वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। शिक्षक नियुक्ति के चौथे चरण की परीक्षा का विज्ञापन शीघ्र प्रकाशित किए जाने की मांग को लेकर कल पटना में हुए विरोध प्रदर्शन के मामले में 5000 छात्रों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। गांधी मैदान थाना अध्यक्ष अखिलेश मिश्र ने बताया कि इस मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अभ्यर्थियों पर ट्रैफिक बाधित करने, विधि व्यवस्था भंग करने और पुलिस कर्मियों के साथ बदसलूकी करने का आरोप है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने पटना में शिक्षक अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज की निंदा की है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार को युवाओं की कोई परवाह नहीं है। इधर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने बिहार सरकार पर युवाओं की उपेक्षा का आरोप लगाया है। पटना में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि सरकार रोजगार देने की जगह सिर्फ सत्ता बचाने और राजनीतिक समीकरण साधने में जुटी है।
0: हमारे TRE के घोर के बच्चों को मारने का जो प्रवृत्ति सरकार ने अपनाई है, मैं उसको लेकर के घोर निंदा करता हूं और बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के तमाम नेता और लीडर और हमारे नेता राहुल गांधी जी ने इसे गंभीरता से लिया है और हम उन TRE के बच्चों को साथ और उनके संघर्ष के साथ देने के लिए हम तैयार हैं।
1: शेष समाचार एक अंतराल के बाद। लघु जल संसाधन मंत्री संतोष कुमार सुमन ने आज पदभार ग्रहण कर लिया। संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि उनकी प्राथमिकता हर खेत तक पानी पहुंचाने की है।

0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_पटना को फॉलो कर सकते हैं। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से प्रदेश में पिछले एक सप्ताह से बारिश का सिलसिला जारी है। आज गया, नवादा, औरंगाबाद, कैमूर और रोहतास समेत राज्य के दक्षिणी हिस्सों में कई स्थानों पर तेज हवा के साथ मूसलाधार बारिश हुई है। रोहतास जिले में कई जगहों पर ओलावृष्टि भी हुई है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान समस्तीपुर में सबसे अधिक 51.6 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। पटना में 135 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा के साथ बारिश हुई। मौसम पूर्वानुमान में कहा गया है कि कल राज्य के उत्तरी हिस्सों में कुछ स्थानों पर बारिश की संभावना है। इस दौरान 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा भी चल सकती है।
1: दिनांक 10 मई उत्तर बिहार के जिलों के एक या दो स्थानों पर वर्षा की संभावना है, जबकि शेष भाग का मौसम आमतौर से शुष्क बने रहने की संभावना है। राज्य के उत्तर पश्चिम, उत्तर मध्य एवं उत्तर पूर्व भाग के जिलों में मेघ गर्जन वज्रपात के साथ हवा की गति 40 से 50 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है।
0: सोमनाथ अमृत पर्व का आधिकारिक रूप से कल से शुभारंभ हो गया। यह मंदिर के पुनर्निर्माण के 75वीं वर्षगांठ का प्रतीक है। 5 दिन के इस उत्सव में मंदिर परिसर को वैदिक मंत्रों और दिव्य ऊर्जा के केंद्र में बदल दिया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: सोमनाथ महादेव मंदिर में आज आस्था और भक्तिमय वातावरण छाया हुआ है। मंदिर में आज से ही 3 दिवसीय होमात्मक महारुद्र यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें से लगभग 1.25 लाख आहुतियाँ अर्पित की जा रही है। यह महायज्ञ वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों में शांति और मानव कल्याण के लिए आयोजित किया जा रहा है। अमृत पर्व का मुख्य आकर्षण 11 मई को होगा, जब मंदिर के शिखर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 11 पवित्र तीर्थों के जल से कुंभाभिषेक किया जाएगा। इस ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बनने के लिए देश के कोने कोने से श्रद्धालुओं का सैलाब सोमनाथ उमड़ पड़ा है। गुजरात के उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने आज सोमनाथ में उच्च अधिकारियों के साथ बैठक की और सोमनाथ अमृत पर्व की आयोजन की समीक्षा की। अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: कृतज्ञ राष्ट्र आज वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जयंती पर उन्हें श्रद्धापूर्वक याद कर रहा है। राजधानी पटना में आयोजित राजकीय समारोह में मंत्री लेसी सिंह और रामकृपाल यादव समेत कई गणमान्य लोगों ने महाराणा प्रताप की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर प्रदेश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार ने महाराणा प्रताप को श्रद्धांजलि देते हुए उनके व्यक्तित्व और कृतित्व को याद किया। भागलपुर जिले के सुल्तानगंज नगर परिषद कार्यालय में पिछले दिनों अपराधियों की गोलीबारी में घायल सभापति राजकुमार कुट्टू का आज पटना में निधन हो गया। उनका पटना के एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा था। गौरतलब है कि अपराधियों की गोलीबारी में कार्यपालक पदाधिकारी कृष्ण भूषण कुमार की भी मौत हो गई थी। पूर्वी चंपारण जिले के ढाका प्रखंड अंतर्गत बराड़वा फतेह मोहम्मद गांव में एक दुकान में आग लग जाने से 2 बच्चों समेत 3 लोगों की झुलसकर मौत हो गई। घटना में 2 लोग घायल हो गए। अररिया आरएस थाना क्षेत्र स्थित एक किराना गोदाम में आग लग जाने से लाखों रुपए मूल्य की संपत्ति जलकर नष्ट हो गई। कटिहार रेलवे स्टेशन पर खीरे को हरे रंग में डुबोकर बेचने के वायरल वीडियो के मामले में रेलवे सुरक्षा बल ने 9 महिला हॉकरों को गिरफ्तार किया है। IIT पटना परिसर में क्रिकेट खेलते समय करंट लगने से 1 छात्र की मौत हो गई। मृतक छात्र तेलंगाना का रहने वाला था। वैशाली जिले के हाजीपुर टाउन थाना क्षेत्र से पुलिस ने 1 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य के मादक पदार्थ हेरोइन के साथ 4 तस्करों को गिरफ्तार किया है। सीतामढ़ी जिले के कन्होली थाना क्षेत्र से पुलिस ने 7 किलोग्राम मादक पदार्थ के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। पटना के सुल्तानगंज थाना क्षेत्र से पुलिस ने नशीला इंजेक्शन बेचने के आरोप में 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से भारी मात्रा में प्रतिबंधित इंजेक्शन बरामद किए गए हैं। सुपौल जिले की SSB सीमा चौकी न्योर ने स्थानीय पुलिस की मदद से भारत नेपाल सीमा क्षेत्र से 2 महिलाओं को नेपाली शराब और 1,08,000 भारतीय रुपए के साथ गिरफ्तार किया है। भागलपुर के विक्रमशिला सेतु पर आवागमन बंद होने के कारण लगातार लग रहे जाम को देखते हुए मुंगेर के तारापुर नगर पंचायत में प्रशासन ने अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। जहानाबाद की जिलाधिकारी अलंकृता पांडे ने स्केटिंग प्रतियोगिता के विजेता लव और कुश को सम्मानित किया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भाजपा के शुभेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री की शपथ ली। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी शपथ ग्रहण में हुए शामिल। लोक भवन ने प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों को शैक्षणिक सत्र सुधारने के लिए कार्य योजना बनाने का दिया निर्देश। पटना उच्च न्यायालय समेत प्रदेश की सभी अदालतों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन, आपसी सहमति के आधार पर मामलों का हुआ निपटारा। और पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से गया, औरंगाबाद और रोहतास समेत राज्य के दक्षिणी हिस्सों में तेज हवा के साथ मूसलाधार बारिश। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: सवा चार के बाद आप सभी का स्वागत है रेडियो रमजिम 90.4 एफएम पर। आइए सुनते हैं अब आगे का प्रसारण। अगर आप चाहते हैं अपने बच्चों के लिए स्मार्ट एजुकेशन, सुरक्षित एवं संस्कार के साथ शिक्षा, साफ सुथरा माहौल, एसी हॉस्टल की उत्तम व्यवस्था और अपने बच्चों का उज्जवल भविष्य, तो गोपालगंज में एक ही नाम
1: बाबू भगवान सहाय सेंट्रल स्कूल। सीबीएसई पैटर्न पर आधारित एक कंप्लीट को एजुकेशनल स्कूल। क्लास 10th तक सेशन 2026 से 27 के लिए प्ले ग्रुप से लेकर कक्षा 8वीं तक एडमिशन ओपन।
0: यहां मिलती है वेल क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी, स्मार्ट क्लासेस, मॉडर्न फैसिलिटीज, कंप्यूटर क्लासेस विथ लैब और इंग्लिश स्पोकन क्लासेस।
1: कमजोर छात्रों के लिए एक्स्ट्रा क्लासेस की विशेष व्यवस्था, नीट एंड क्लीन एटमॉस्फेयर और सीसीटीवी कैमरा की सुविधा,
0: बस एवं आवासीय हॉस्टल सुविधा उपलब्ध, साथ ही सैनिक स्कूल, नवोदय, नेतरहाट और अलीगढ़ जामिया की तैयारी की सुविधा 100% सफलता की गारंटी के साथ। पता हरखुआ भगवान नगर, वार्ड नंबर 24, विष्णु शुगर मिल के पश्चिम, गोपालगंज।
1: संपर्क करें 8002221969 या 9117018350।
2: तब भौजी, आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नु सारा मार्केट, देख लेनी नु सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
3: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है, पर कोनो जचल है ना।
2: ई बात बा, तो ऐसन करी कि अब चली सीधे हमरा साथे कमल श्री में।
4: महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
5: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
6: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है, रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
7: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
1: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल,
0: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा में, NH 27 पर दक्षिण साइड, गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
1: यहां आयुष्मान कार्ड से 5,00,000 रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
0: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
1: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता, MBBS, MS, सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन, और डॉक्टर डेजी सिन्हा, MBBS, MD, DNB, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD, IPD, ICU, मॉड्यूलर OT, अल्ट्रासाउंड, पैथोलॉजी लैब, फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
1: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा, भोजपुरवा, NH 27, गोपालगंज।
0: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
8: जिले का गौरव संतोष मेडिकल हॉल, घोष मोड़, दरगाह रोड, गोपालगंज।
9: गोपालगंज जिले का प्रतिष्ठित अंग्रेजी दवा की दुकान संतोष मेडिकल हॉल।
10: हमारे यहाँ भारत के प्रसिद्ध डॉक्टरों द्वारा लिखी गई सभी प्रकार की अंग्रेजी दवाएं उपलब्ध हैं, जैसे गोरखपुर, पटना, कलकत्ता, लखनऊ, बनारस, चेन्नई और मुंबई के डॉक्टरों द्वारा लिखी गई दवाइयाँ भी मिलती हैं।
9: एक सूचना, संतोष मेडिकल हॉल अब चला गया है कॉलेज रोड चिराई घर के पहले, गोपालगंज। संपर्क सूत्र है 62042434003, 62042434003।
6: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
1: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
0: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
1: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
0: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
1: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलो फेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
0: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
1: संपर्क करें 84710309 या 9765065750।
11: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: पके पेड़ पर पका पपीता, पका पेड़ या पका पपीता, पके पेड़ को पकड़े पिंकू, पिंकू पकड़े पका पपीता, बोलो।
1: पके पेड़ पर पका पपीता, पकड़ा पिंकी पति का कपड़ा।
0: कपड़ा।

0: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
1: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
0: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
1: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
0: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
2: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
3: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
2: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
3: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
2: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
3: जानकारी हेतु कॉल करे 6052 62112 पे।
4: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा।
5: तो फिर देर क्यों, चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद हैं अनुभवी डॉक्टर स्वाति के गुप्ता MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन SVBPN न्यू दिल्ली।
4: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
6: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
4: संपर्क 99393965930।
7: क्या चाहते हो? मैं ना जाऊँ अपनी दोस्त की शादी में।
8: क्यों, क्या हुआ है?
7: तुम्ही ने तो कहा था मुझे डिजाइनर लहंगा, साड़ी और गाउन दिलाओगे।
8: अरे तो कौन सी बड़ी बात है, आज ही चलते हैं गोपालगंज में लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स। वहाँ तुम्हें तुम्हारी मन पसंद के अच्छे अच्छे कपड़े मिल जाएंगे।
7: फिर ये भी ठीक है, चलो चलते हैं लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स।
8: शादी विवाह या किसी भी शुभ अवसर पर एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स जो है मेन रोड गोपालगंज में।
9: ठक ठक।
7: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
8: अच्छा मिला ही नहीं।
7: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
8: जी हाँ, कमल श्री, याद रखे सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
7: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट गोपालगंज।
8: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
10: तू जो है।
11: आप सुन रहे हैं जिले की आवाज, रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो

0: कान में दर्द के मारे जान ही निकल रही है, कहाँ जाऊँ, किससे इलाज कराऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा।
1: इसमें इतना समझना क्या, आज ही चलो डॉक्टर MD सादाब के पास, जो है ENT स्पेशलिस्ट।
2: जी हाँ, उत्तर भारत के सबसे विश्वसनीय कान नाक एवं गले के विशेषज्ञ डॉक्टर MD सादाब पिछले 10 वर्षों से सिवान में सेवा दे रहे हैं, जो कि 10,000 से भी ज्यादा कान नाक गले के सर्जरी का अनुभव रखते हैं। साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड धारक मरीजों का निःशुल्क में इलाज किया जाता है। तो आज ही पहुँचिए इस्मत ENT केयर सेंटर सिसवन ढाला के उत्तर RK मॉडल स्कूल के बगल सिवान में।
3: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
4: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
3: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
4: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।

0: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: सुनिए,
2: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
1: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
2: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
1: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को। आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।

0: हिम्मत कैसे हुई तेरी? दिमाग ठीक है तेरा?
1: Bro, please try to understand यार।
0: अगर ऐसी बात होती तो कीर्ति मुझसे शादी के लिए हाँ क्यों करती?
1: ये देख, हमारे पिछले 5 साल की फोटोग्राफ्स, वो अपने पेरेंट्स के लिए सब कुछ सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार है। Bro, please help me. Please help me out.

0: क्या? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
1: अरे तो उसे डांटती क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
2: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
3: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
2: आज ही आए जेबी हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
0: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
4: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
5: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
4: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
5: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
4: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
5: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
4: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
5: कॉल नाउ 9656-59536 या 9656-57902।
4: 21 वर्षों से सिर्फ पढ़ाई नहीं, भविष्य गढ़ने की पहचान है एक नाम, सेंट जॉन स्कूल, सासा मूसा, गोपालगंज। शाखा राजापुर बाजार, गोपालगंज।
5: और अब 30 अप्रैल तक एडमिशन बिल्कुल फ्री।
4: CBSE पैटर्न पर आधारित शिक्षा, नर्सरी से क्लास 10वीं तक, कंप्यूटर एजुकेशन, बस फैसिलिटी, रेगुलर टेस्ट और पेरेंट मीटिंग्स, एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ सेफ और पीसफुल कैंपस।
5: सेंट जॉन स्कूल में बच्चों को सिर्फ सिखाया नहीं जाता, उन्हें तराशा जाता है।
4: तो देर मत कीजिए।

0: पुलिस ने जब्त कर लिया है। इधर थाने थाना की पुलिस ने हत्या के प्रयास कांड में फरार चल रहे प्राथमिकी अभियुक्त रामानंद महतो को गिरफ्तार कर लिया। यह आरोपी जगमलवा गांव के चंद्रिका महतो का पुत्र बताया जा रहा है, जो थावे थाना क्षेत्र के अंतर्गत ही आता है। गिरफ्तार आरोपी को आज पुलिस ने पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 33 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। सड़क हादसे में एक वृद्ध व्यक्ति की मौत, परिजनों में मचा कोहराम। 3 महीने की गर्भवती नवविवाहिता की भी संदिग्ध परिस्थिति में हो गई मौत। और एक युवक का भी संदिग्ध स्थिति में लाश पुलिस ने किया बरामद। गोपालगंज में होने वाले निशांत कुमार के कार्यक्रम को किया गया रद्द। और लोक अदालत में सैकड़ों मामलों का हुआ निष्पादन। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे, और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
2: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
1: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
2: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटो कॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ। फोटो स्टेट सिर्फ 1 रुपए प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99-399-66-999।
3: क्या चाहते हो? मैं ना जाऊँ अपने दोस्त की शादी में?
4: क्यों, क्या हुआ है?
3: तुम्ही ने तो कहा था मुझे डिजाइनर लहंगा, साड़ी और गाउन दिलाओगे।
4: अरे तो कौन सी बड़ी बात है, आज ही चलते हैं गोपालगंज में लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स। वहाँ तुम्हें तुम्हारी मन पसंद के अच्छे अच्छे कपड़े मिल जाएंगे।
3: फिर ये भी ठीक है, चलो चलते हैं लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स।
5: शादी विवाह या किसी भी शुभ अवसर पर एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स, जो है मेन रोड गोपालगंज में।
6: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं श्रृंगार वाटिका।
7: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज, या कॉल करें 86034-48652 पे।
8: रियाज रेट्रो।
9: सब बोलते हैं, सब सुनते हैं, कारोबार है ये, व्यापार है ये, सब इसका हिस्सा है, सबका इसमें हिस्सा है। ये एक बिना ब्रेक्स की गाड़ी है, ये निरंतर बहता पानी है, इसमें सबका हाथ है, सबका साथ है, सब कंप्लिसिट हैं, सब कोलैबोरेटर्स हैं, झूठ सबकी जिंदगी का सच है। वी ऑल लाई एंड आई वंडर व्हाई। गुड ओवर इविल मना लिया हमने, रावण जला लिया हमने, दिवाली के दियों की तैयारी है, पर फिर भी देखो अंधेरे से यारी है।

वाह, सही मायने में टेमिंग ऑफ द श्रू है ना। फुल कॉन्फिडेंस से जो कह रही थी मैं मायके चली जाऊंगी, उसको घुटनों पर ला दिया ये कहकर मैं तेरी सौतन लाऊंगा, तुम देखते रहियो। शैलेंद्र सिंह, लता जी, लक्ष्मी प्यारे, आनंद बख्शी, यस, ऑल इन जेस्ट एंड गुड फन। पता है मुझे, बस हंसी मजाक है और फिल्म में एक बहुत हल्का फुल्का मोमेंट है, हर चीज को ओवरथिंक, ओवर इंटेलेक्चुअलाइज करने की जरूरत नहीं है ना। पर झूठ अपने आप में एक बहुत कमाल की चीज है। इजाद हमारी होती है, पैदा हमसे होती है और फिर अपनी आकृति खुद बना लेती है, acquires a life of its own। और वो जो बहुत बड़े साइज के डॉग्स को ओनर्स जब वॉक के लिए ले जाते हैं तो देखकर हंसी नहीं आती कि समझ में नहीं आ रहा कौन किसको चला रहा है। झूठ कुछ ऐसा ही होता है। गले की पट्टी चाहे हमारे हाथ में ही क्यों ना हो, ये कुत्ता इतना बड़ा, इतना शक्तिशाली, इतना विशाल हो उठता है कि थोड़ी देर बाद वो हमें चला रहा होता है। हम बस घसीटते हुए जाते हैं आउट ऑफ कंट्रोल, और देर नहीं लगती उसके गले के पट्टे को हमारे गले की रस्सी बनने में। आपका पता नहीं पर मुझे बहुत डर लगता है झूठ से, बिकॉज लाइज अक्वायर अ लाइफ ऑफ देयर ओन। हमारे काबू में नहीं रहते ये फ्रैंकेनस्टाइन्स, और एक पॉइंट के बाद ये हमें ही निगल जाते हैं। झूठ का सामना हम हर रोज करते हैं, हमने तो कैटेगरीज भी बना रखी है ना, खासकर ऐसी कैटेगरीज जो उनको जस्टिफाई कर दें, उनको हार्मलेस बना दे। जैसे झूठ क्यूट सा फेस बनाकर बोल रहा हो मेरी कच्ची मिट्टी, स्मॉल लाइज, व्हाइट लाइज, हार्मलेस लाइज, सोशल लाइज वगैरह वगैरह। वाह, इंडल्जेंट पेरेंट्स की तरह झूठ को प्यार पुचकार कर, उसकी नैपी चेंज कर, उसको नहला धुला कर, पाउडर लगा कर, हम उसे हानि रहित साबित करने की कोशिश करते रहते। पर मेरे हिसाब से देर इज नो सच थिंग। वो बिल्कुल छोटा सा, प्यारा सा, क्यूट सा झूठ जो शायद सच में किसी और को तकलीफ ना भी दे, हमें अंदर से फिर भी हार्म करता है, लाइक अ ड्रॉप ऑफ स्पिरिचुअल एसिड on our soul.

0: घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
1: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला गोरखपुर।
0: आज ही संपर्क करें 7388894 या 9198869।
2: टॉप रामू काका, हई इलेक्ट्रिक के इतना सारा सामान कहाँ से खरीद के ले आओ तनी?
3: ये सब सामान संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से लेके आओ तनी बाबू।
2: अरे ये सामान तो एक नंबर बुझाता और काफी डिजाइनदार भी बा।
3: अरे हाँ बाबू, अपना गोपालगंज में इतना अच्छा दुकान कहाँ बा? संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स में सस्ता में एक नंबर के सामान मिलेला।
2: हम तो अपना नौका घरवा खातिर इलेक्ट्रॉनिक के सारा सामान दिल्ली से लेके आवे के सोचत रहनी, लेकिन हम काले संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से जाके अपन पूरा सामान ले आए।
3: अरे हाँ बबुआ, संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से लिए या दिल्ली जाके पैसा बर्बाद कैले से का फायदा?
4: संतोष इलेक्ट्रॉनिक हाउस, जहाँ सस्ते दामों में बेस्ट क्वालिटी के इलेक्ट्रिक के सारे सामान मिलते हैं।
2: हमारा पता है चिराई घर पेट्रोल पंप के सामने, संतोष फर्नीचर के नीचे, कॉलेज रोड, गोपालगंज।
5: एडमिशन फ्री, एडमिशन फ्री।
6: कहाँ पर?
5: अरे CBSE न्यू दिल्ली से एफिलिएटेड ज्ञानदा इंटरनेशनल स्कूल, चवही खास, गोपालगंज,
6: जहाँ मिलता है क्वालिटी एजुकेशन, स्मार्ट लर्निंग एनवायरनमेंट, एक्सलेंट एकेडमिक गाइडेंस और गोपालगंज के टॉप परफॉर्मर्स तैयार करने की परंपरा।
5: यहाँ नर्सरी से 12th तक आधुनिक और रिजल्ट ओरिएंटेड एजुकेशन सिस्टम। फिलहाल नर्सरी से 9th और 11th क्लास में एडमिशन शुरू है,
6: तो देर ना करें। ऑफिस टाइम सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
5: ज्ञानदा इंटरनेशनल स्कूल, पता चवही खास, NH 27, गोपालगंज। कॉन्टैक्ट 9852636537 और 9835556965।
7: अच्छा आप मुझे सच बताइए, आपको झूठ से डर नहीं लगता? मुझे तो लगता है, जैसा मैंने कहा। पता है मेरा सबसे बड़ा डर क्या है? कि मुझ में इतनी एफिशिएंसी नहीं है कि मैं फॉल्सहुड को बरकरार रख सकूं। जेन्युइनली ना मेरी मेमोरी इतनी अच्छी है, भूल गई क्या झूठ बोला है तो? अब क्या कहीं लिख के रखेंगे कि फलां दिन फलां जन को ये कहा था? व्हाट इफ आई लूज ट्रैक? सच के साथ ये पंगा नहीं है ना, याद रखने की जरूरत नहीं होती। जब भी जिसको भी बोलो मुंह से सेम चीज ही निकलेगी। एक्चुअली बाकी सब गुरु ज्ञान को साइड रखो, द ट्रूथ इज ऑल्सो सिंपलर। गाइड से लता जी का स्टनिंग रेंडिशन सुना आपने, मुंह से छल किए जाए सैया बेईमान, SD शैलेंद्र। ट्वीट भी किया था मैंने इस गीत के वीडियो को लता जी के जन्मदिन पर। हमारा डैमेज्ड हीरो देवानंद विंग्स में खड़ा है और वहीदा जी का वो हर्ट और इन्फ्यूरिएशन मानो उनके डांस का एक पैरेलल रिदम ट्रैक हो। उससे पहले आनंद बख्शी याद दिला रहे थे कि सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के असूलों से, कि खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। वाह, किशोरदा की आवाज, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। जिम कैरी की फिल्म थी ना वो लायर लायर, जिसमें वो एक पैथोलॉजिकल लायर हैं जो एक पूरे दिन के लिए झूठ बोल ही नहीं पाते। सोचो कभी आपके मेरे साथ ऐसा हो तो, तब वो टाइनी लाइज, हार्मलेस लाइज, वाइट लाइज, सोशल लाइज, पोलाइट लाइज, ये जो किस्म किस्म के जस्टिफाइज लाइज हैं हमारे, उनका क्या होगा? आई थिंक एक दिन के लिए आई विल बी ओके। मैं कोई दूध की धुली हरिश्चंद्र सत्यवादी शायद नहीं हूँ, पर झूठ के साथ मेरा रिश्ता मोर ऑर लेस लॉन्ग डिस्टेंस तो है। एक दिन तो मैनेज हो ही जाएगा मेरे हिसाब से। आपका सीरियसली, ट्रैफिक कॉप से लेकर रोमांटिक पार्टनर टू वर्क कॉलीग्स, नेबर्स, अक्वेंटेंसेस, डोमेस्टिक हेल्प, डिलीवरी गाइज, सरकारी ऑफिसर्स, अगर आप किसी से कोई भी झूठ ना बोल पाए एक दिन के लिए, सिर्फ एक दिन के लिए, छोटा बड़ा जैसा भी, आप संभाल लेंगे? या दिन आपका आउट ऑफ कंट्रोल चला जाएगा जिम कैरी की तरह? मुझे मत बताइए, पर खुद को इस सवाल का जवाब सच सच देना।
8: तूने अभी देखा नहीं, देखा है तो जाना नहीं, जाना है तो माना नहीं, मुझे पहचाना नहीं। दुनिया दीवानी मेरी, मेरे पीछे पीछे भागे, किस में है दम, यहाँ ठहरे जो मेरे आगे, मेरे आगे आना नहीं, देखो टकराना नहीं, किसी से भी हारे नहीं हम।

देखा नहीं देखा है तो जाना नहीं जाना है तो माना नहीं मुझे पहचाना नहीं दुनिया दीवानी मेरी मेरे पीछे पीछे भागे किसी में है दम यहाँ ठहरे जो मेरे आगे आना नहीं देखो टकराना नहीं किसी से भी हारे नहीं हम।

है तो जाना, नहीं जाना है तो माना, नहीं मुझे पहचाना नहीं दुनिया दीवानी मेरी, मेरे पीछे पीछे भागे किस में है दम, यहाँ ठहरे जो मेरे आगे आना नहीं, देखो टकराना नहीं किसी से भी, हारे नहीं हम।

आशा जी आरडी गुलशन बावरा द ब्रीजी टाइटल ट्रैक ऑफ झूठा कहीं का, और उतना ही मस्त उससे पहले राजेश रोशन का मेगा हिट हम वो हैं जो दो और दो पांच बना दे, वो भी टाइटल ट्रैक ही किशोरदा की आवाज में बोल अनजान। मैं आपके साथ रिया, और मेरे ख्याल से ये दो और दो का पांच बनाना पहले फितरत होती है, बाद में आदत, और आखिर में लत। लत लग गई तो खुदा ही बचाए। मैं तो ऐसे लोगों को भी जानती हूँ जिनको अगर फोन पर पूछ लो कि किस रंग की कमीज पहनी है तो अगर नीली पहनी हो तो हरी कहेंगे। क्यों एमी? अब ऐसी आदत बन गई है कि जिह्वा पे सरस्वती नहीं झूठ ही बसता है। देयर इज नो लॉजिक एनी मोर टू द लाइन। यू नो पीपल लाइक दैट, राइट? इनसिक्योरिटी होती होगी ना शायद कोई, दैट द ट्रूथ इजंट गुड इनफ, सच काफी नहीं है, मेरा काम बनेगा नहीं सच से। क्यों नहीं बनेगा यार, काम भी बनेगा और नाम भी, और रात को चैन की नींद नसीब, वो एक्स्ट्रा बोनस। क्यों बोलते हैं लोग झूठ? तुम्हारे ही भले के लिए कहा था, ये भी सुन चुकी हूं मैं। क्यों नहीं समझते ऐसे वेल विशर्स हमारे कि उनके झूठ बोलने से भला नहीं बुरा ही होता है? हमें उस झूठ से डायरेक्टली नुकसान हो ना हो, उनके झूठ बोलने से तकलीफ जरूर होती है, खासकर तब जब वो कोई अपना हो जिसकी हम इज्जत करते हो। हमारी आंखों के सामने जब वो किसी लॉ इन्फोर्समेंट ऑफिसर को या रिश्तेदार को या फोन पर कॉलीग को कोई बेयर फेस्ड लाई सुनाए, तो उस लाई से हमारा कुछ लेना देना हो या ना हो, कहीं अंदर से हमें भी बुरा लगता है ना, क्योंकि जो करीब है उसकी तो हम रिस्पेक्ट करना चाहते हैं ना, उस पर भरोसा करना चाहते हैं। अब आज अगर वो हमारे सामने किसी और से झूठ बोल रहा है तो हमें झूठ नहीं बोलेगा किसी दिन, इसकी क्या गारंटी है? इनफैक्ट हम तो फिर पिछली बातों पर भी नजर डालने लगते हैं कि क्या पता हमसे झूठ ऑलरेडी कह दिया गया हो और हमें होश ही नहीं।

0: फिल्म का नाम सत्यकाम, जिसमें ऋषिकेश मुखर्जी की डायरेक्शन में धर्मेंद्र ने एक बेहतरीन किरदार निभाया था। एक ऐसा आदमी जिसको झूठ, फरेब, करप्शन से बहुत दिक्कत है, जो ये कॉम्प्रोमाइजेस कर ही नहीं पाते थे। गाना दो दिन की जिंदगी लता जी की आवाज में, बोल कैफी अजमी, धुन लक्ष्मी प्यारे। और उससे पहले गाइड से ही फिर से मुंह से छल का जुड़वा गाना, क्या से क्या हो गया, रफी साहब की आवाज में। दोनों गानों के मुखड़े की धुन सेम है एक्चुअली। एलके, आपने भी इसका जिक्र किया था ना ट्विटर पर। वैसे बड़ी मजेदार बातें होती हैं हम सब।
1: प्रसाद क्लिनिक,
2: स्त्री रोग, ल्यूकेरिया, यूट्रस का बाहर निकल जाना, कान का बहना, गठिया, साइटिका, कमर दर्द, अधेड़ी, थनैली, चर्म रोग के सफल इलाज के लिए मिले
1: डॉक्टर श्रीमती कुंती देवी। रोगी देखने का स्थान बुधवार और शनिवार को मिंग स्टेडियम, LIC ऑफिस के पास, गोपालगंज।
3: बाकी दिन जादवपुर बाजार।
4: सुनिए सुनिए सुनिए,
5: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
4: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
5: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
4: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
6: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
0: एवरीबॉडी लाइज। ह्यू लॉरी का यही मानना था एज डॉक्टर हाउस। काफी सिनिकल वर्ल्ड व्यू है मेरे हिसाब से, पर शायद रियलिस्टिक भी। शांति बनाए रखने के लिए, टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट, ये कारण मुझे सुनने को मिलता है खासकर महिलाओं से। पीसकीपर्स के रोल में उन्हें अक्सर लगता है कि झूठ का सहारा लेना ही बेहतर है मर्दों से। ऑफ कोर्स द मोस्ट पैट्रनाइजिंग, कॉन्डिसेंडिंग और कॉमन रिस्पॉन्स है, अरे यू डोंट अंडरस्टैंड हाउ द वर्ल्ड वर्क्स। इस दुनिया में ऐसे ही चलता है, सब अपना उल्लू सीधा करने में लगे हैं और तुम कहती हो घी निकालने के लिए उंगली टेढ़ी मत करो। यू आर जस्ट नाइव, यू डोंट नो हाउ द वर्ल्ड वर्क्स। बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं जी। हम तो पिछले 22-25 साल से हांडी के अंदर रह रहे हैं ना, हमें क्या पता कि ये दुनिया कैसे चलती है। ज्ञान का भंडार तो प्रभु बस आप ही हैं, हे परम पूज्य असत्य के इष्ट देव। ये डोंट वरी योर प्रिटी लिटिल हेड अबाउट इट का एक और कमाल का वेरिएंट है, जिसमें झूठ बोलने वाला एक अजीब डिल्यूजनल किस्म का सेल्फ राइचियसनेस भी दिखा देता है। आई मीन दैट्स इनक्रेडिबल। भारी आवाज में वो कहेंगे जैसे उन्हें किसी गूढ़ रहस्य के बारे में ज्ञान प्राप्त हुआ हो, जिसके बारे में हम मूर्ख अज्ञानी हैं। यू डोंट अंडरस्टैंड, इट्स फॉर द ग्रेटर गुड। ओहो, बकवास। मतलब पहले झूठ बोलो, ऊपर से खुद को एक्स्ट्रा नंबर भी दे दो झूठ बोलने के लिए। यही वो लोग हैं जो बार बार कहेंगे आई नेवर लाई। जैसे ही कोई ये आपको कई बार बोलता सुनाई देना, मान लो ये बहुत झूठ बोलता होगा। क्योंकि जो जेन्युइनली ट्रूथफुल लोग होते हैं, उनको इस बात का कोई खास एहसास नहीं होता कि वो झूठ नहीं बोलते।

0: मैं झूठ बोल लिया
1: कोई ना,
0: रखी मैं कुफर तोल लिया
1: कोई ना,
0: रखी मैं जहर घोल लिया
1: कोई ना, भाई कोई ना, भाई कोई ना।
0: ओ बल्ले बल्ले बल्ले बल्ले बल्ले।

0: बोलिया
1: कोई ना,
0: बेकी मैं कुकर तो लिया
1: कोई ना,
0: बेकी मैं जहर तो लिया
1: कोई ना भाई, कोई ना भाई, कोई ना।
2: ओ हट

कि मैं झूठ बोले हाँ, कोई ना। पंजाबी लोक गीत का स्वाद फिल्म जागते रहो से ट्रेडिशनल पंजाबी धुन और बोल में अपनी रचनात्मकता घोलते हुए सलिलदा और प्रेम धवन, शायद इस गाने के लिए शैलेंद्र ने बोल नहीं लिखे थे, प्रेम धवन ने लिखे थे। और लोक गीत की ही महक उससे पहले तीसरी कसम के गीत में भी, बस पंजाब से नहीं गंगा तट से। सजन रे झूठ मत बोलो, शैलेंद्र शंकर जयकिशन। मुझे नहीं पता हम झूठ क्यों बोलते हैं या सच को तोड़ मरोड़ कर उसको अपाहिज क्यों बना देते हैं। क्यों हम प्राइवेट में, पब्लिक में, मीडिया में ट्रूथ को मिसरिप्रेजेंट या डिस्टॉर्ट करते रहते हैं। क्यों हमें सच्चाई पर यकीन नहीं है। सोचकर देखो तो दो कहानियों में ही तो चुनना है ना, एक जो हकीकत है और एक जो फसाना। तो जो मनगढ़ंत है वो ज्यादा ब्यूटीफुल, इफेक्टिव, पावरफुल, सिडक्टिव, कन्विंसिंग, ग्लैमरस, वैलिडेटिंग ऐसा होगा, यूं क्यों लगता है हमें? असलियत से ज्यादा असरदार होगा, ऐसा क्यों मानते हैं हम? यानी हमें अपनी सच्चाई पसंद नहीं है। होगी, जरूर होगी, इफ वी डेयर टू ड्रीम, डेयर टू लव।

0: का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM
1: सुनो दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

0: पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के नेता शुभेंदु अधिकारी ने आज मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इसके साथ ही राज्य में पहली बार भाजपा सरकार का गठन हुआ। राज्यपाल आरएन रवि ने कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में श्री अधिकारी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। राज्यपाल ने मुख्यमंत्री के साथ 5 कैबिनेट मंत्रियों को भी शपथ दिलाई। इनमें दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल, अशोक कीर्तनिया, निशीत प्रामाणिक और खुदीराम टुडू शामिल हैं। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन और पार्टी के अन्य नेता उपस्थित थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बनने पर शुभेंदु अधिकारी को बधाई दी। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि श्री अधिकारी ने जनता से गहराई से जुड़े रहने और उनकी आकांक्षाओं को करीब से समझने वाले नेता के रूप में अपनी पहचान बनाई है। प्रधानमंत्री ने 5 मंत्रियों को भी शपथ लेने पर बधाई दी। तमिलनाडु में तमिलग्म वेत्री कड़गम टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय ने आज लोकभवन में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अलेकर से मुलाकात की और 120 विधायकों के समर्थन के साथ सरकार बनाने का दावा पेश किया। हमारी संवाददाता ने बताया कि श्री विजय कल तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे।
1: हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में टीवी के 108 सीट जीतकर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है। 234 सदस्यों वाली तमिलनाडु विधानसभा में पार्टी को नई सरकार के गठन के लिए 118 सीट की आवश्यकता है। चेन्नई में आज संवाददाताओं से बातचीत में टीवी के नेता अधव अर्जुन ने बताया कि वीसीके और आईयूएमएल दोनों ने सरकार गठन के लिए उसे बिना शर्त समर्थन दिया है। 2 विधानसभा क्षेत्रों से जीत हासिल करने वाले विजय को 1 सीट खाली करनी होगी, जिससे टीवीके की संख्या घटकर 107 रह जाएगी। हालांकि टीवीके पार्टी को कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, वीसीके और आईयूएमएल से कुल 13 विधायकों का समर्थन मिल चुका है। इनमें कांग्रेस के 5 और अन्य सहयोगी पार्टियों के 2-2 विधायक हैं। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कर्नाटक और तेलंगाना के दौरे पर रहेंगे। वे बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग की 45वीं वर्षगांठ और इसके संस्थापक गुरुदेव श्री श्री रविशंकर के 70वें जन्मदिन समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी आर्ट ऑफ लिविंग परिसर में नए ध्यान मंदिर और ध्यान कक्ष का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री आर्ट ऑफ लिविंग कार्यक्रम के लिए रवाना होने से पहले सभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री हैदराबाद में विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री वारंगल में पीएम मित्रा पार्क का भी उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी हैदराबाद में अत्याधुनिक कैंसर अस्पताल का भी लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री सिकंदराबाद के परेड ग्राउंड में एक जनसभा में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित भी करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री कल ही 2 दिन के गुजरात दौरे पर जाएंगे। दौरे के दूसरे दिन श्री मोदी सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्वार की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित सोमनाथ अमृत महोत्सव में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री कई धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में शामिल होंगे। भारतीय तटरक्षक बल ICGS ने आज गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में नई पीढ़ी के अदम्य श्रेणी के फास्ट पेट्रोल वेसल श्रृंखला के नवीनतम पोत ICGC अचल को सेवा में शामिल किया। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि ये पोत तटीय और अपतटीय निगरानी, अवरोधन गतिविधि, खोज और बचाव, तस्करी रोधी अभियान और समुद्री प्रदूषण से निपटने के अभियान में सहयोग करेगा। चीन के शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में साहिल जाधव ने पुरुषों की व्यक्तिगत कंपाउंड स्पर्धा में कांस्य पदक जीत लिया है। साहिल ने कांस्य पदक के लिए मुकाबले में डेनमार्क के मार्टिन डेम्सबो को हराया। भारतीय महिला रिकर्व टीम कल स्वर्ण पदक के लिए चीन का सामना करेगी, जबकि सिमरनजीत कौर अपना सेमीफाइनल मुकाबला खेलेंगी। भारत ने कल ओडिशा के डॉ APJ अब्दुल कलाम द्वीप से मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेड री एंट्री व्हीकल MTRV प्रणाली से लैस उन्नत अग्नि मिसाइल का सफल परीक्षण किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Renuka. Suvendu Adhikari took oath as the first BJP Chief Minister of West Bengal today. Governor R. N. Ravi administered the oath of office and secrecy to Mr. Adhikari at a grand ceremony held at the Brigade Parade Grounds in Kolkata. Along with him, five other MLAs including Dilip Ghosh, Agnimitra Paul, Ashok Kirtanya, Nisit Pramanik and Shuddhiram today were sworn in as cabinet ministers. Prime Minister Narendra Modi, Union Home Minister Amit Shah, Defence Minister Rajnath Singh, Chief Ministers of various NDA and BJP ruled states, BJP President Nitin Naben and several other leaders of BJP attended the ceremony. The swearing-in ceremony was held on Pochishe Boishak, marking the 165th birth anniversary of poet Guru Rabindranath Tagore. The BJP registered a decisive victory in the recent state assembly elections, securing 207 seats in the 294-member house and ending the 15-year rule of the Trinamool Congress, which was reduced to 80 seats. In Tamil Nadu, TVK Chief C. Joseph Vijay today met Governor Rajendra Arlekar at Lok Bhavan in Chennai and staked claim to form government with the support of 120 MLAs. Mr. Vijay is set to take oath as the Chief Minister of Tamil Nadu tomorrow. Tamilaga Vetri Karagam, TVK, which emerged as the single largest party with 108 seats in the recent assembly polls, achieved the majority mark of 118 in the 234-member house required to form a new government in the state by securing backing from Congress, left parties, Vidudalai Sirithagai Kachi, VCK and the Indian Union Muslim League, IUML. Vijay, who won from two assembly constituencies, will have to vacate one seat, reducing TVK's strength to 107. The combined strength of the supporting parties, including Congress with five MLAs and CPI, CPIM, VCK and IUML with two MLAs each, stands at 13. The top brass of the Congress party today held a meeting in New Delhi to discuss government formation in Kerala. The meeting convened by Congress Chief Mallikarjun Kharge at his residence was attended by senior party leader Rahul Gandhi, party general secretary in charge of the state, Deepa Dasmunshi, general secretary organization KC Venugopal and senior Kerala leaders Ramesh Chinnitala and VD Sathisan. The party said Congress Chief Mallikarjun Kharge and Rahul Gandhi will take the final decision on the new Kerala Chief Minister and the name will be announced very soon. Prime Minister Narendra Modi will visit Karnataka and Telangana tomorrow. Mr. Modi will first travel to Karnataka to participate in the 45th anniversary celebrations of the Art of Living in Bengaluru. He will also inaugurate the newly constructed Dhyan Mandir at the Art of Living International Centre. Thereafter, Prime Minister Modi will travel to Telangana to lay the foundation stone and inaugurate multiple development projects worth around 9,400 crore rupees in Hyderabad. These projects collectively aim to strengthen connectivity, improve logistics efficiency, enhance safety and provide a better travel experience for people. Later in the day, Mr. Modi will reach Jamnagar on a two-day visit to Gujarat. India has conducted a successful flight trial of an advanced Agni missile with MIRV, Multiple Independently Targeted Re-entry Vehicle System, from Dr. APJ Abdul Kalam Island in Odisha. In a social media post, the Defence Ministry said the missile was flight tested yesterday with multiple payloads targeted to different targets spatially distributed over a large geographical area in the Indian Ocean region. Defence Minister Rajnath Singh has complimented DRDO, Indian Army and industry on the successful flight test of Agni missile with MIRV capability. Mr. Singh said the achievement will add an incredible capability to the country's defense preparedness against the growing threat of perceptions. In archery, India's Sahil Jadhav won a bronze medal in the men's individual compound event at the World Cup 2026 Stage 2 in Shanghai, China today. The 25-year-old Maharashtra archer defeated Denmark veteran player-cum-coach Martin Damsbo 147-144 in the bronze medal playoff to secure India's first medal of the ongoing tournament. And with that, we end this news bulletin.
3: समाचार के बाद आप सभी का स्वागत है रेडियो रमजी 90.4 एफएम पर. आइए सुनते हैं अब आगे का प्रसारण.
4: था
3: रात्रि न्यूज के बाद रेडियो रिमझिम परिवार को दीजिए इजाजत केवल रेडियो से। आप हमें ऐप पर पूरी रात सुन सकते हैं। सो अगर आपने ऐप को इंस्टॉल नहीं किया है तो अभी गूगल के प्ले स्टोर में जाएं, रेडियो रिमझिम लिख के सर्च करें और हमारे ऐप को डाउनलोड कर लें। उसके बाद पूरी रात आप रेडियो रिमझिम का आनंद ले सकते हैं सिर्फ और सिर्फ ऐप पर।

0: झेला।
1: उत्तर बिहार का गौरव,
2: सारण प्रमंडल की शान,
1: गोपालगंज की धड़कन
2: और अपने भाषा की पहचान।
1: रेडियो रिमझिम 90.4 FM
2: सुनो दिल से।

0: आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।
1: इतना सवाल एक बार पूछ लेबू, पहले अपन बताओ तो हम अपन बताओ तनी।
2: अच्छा तो सुन लो, खोल के ना बताई, बिचारा के बाद इशारे में समझ ली है।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: हेलो, नमस्ते, नमस्कार, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं हूं आप सबकी रेडियो दोस्त आरजे सोनिया और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। और समय हो चुका है हेलो माय चॉइस के कार्यक्रम का, तो बिल्कुल समय के साथ हाजिर हूं। यदि आप शो से जुड़ना चाहते हैं तो नंबर है 8029994911 पर कॉल करके जुड़ सकते हैं और अपनी फरमाइश सुन सकते हैं। और अब बढ़ते हैं आगे और लेते हैं पहला कॉल और सुनते हैं इनकी फरमाइश को।
1: हेलो
2: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में। जी नाम बता दीजिए अपना और कहाँ से?
1: बनारस से।
2: जी कैसे हैं?
1: बढ़िया है।
2: तो क्या हो रहा था?
1: ये पावर लोग चलाते हैं, वही काम हो रहा है।
2: तो गाना कौन सा सुनना है आपको?
1: बहुत बाजी का लोनी का निका निका ले आते
2: और सुनाना भी है।
1: जी हाँ, वो सुनेंगे आपको।
2: गाना आपकी
1: क्या बजेगा आज ही करो?
2: जी आज या कल दोनों में कभी भी आ सकता है, 5 से 7 के बीच में।
1: जी
2: बहुत बहुत धन्यवाद आपको।

0: आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।
1: Now pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
1: Pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
3: जब फोन रिंग दे बजती है तो कहते हैं हेलो
1: हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो
3: भागे भागे फिरते हैं।
4: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सब इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029494911। जी हाँ, 8029494911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
5: गुड मॉर्निंग सोनी मैम।
6: गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
5: कैसे हैं मैम?
6: बिल्कुल बढ़िया, आप बताइए आप कैसे हैं?
5: जी मैम, भी बिल्कुल ठीक हूँ मैम।
6: जी जी, तो क्या हो रहा था अभी?
5: समय हो गया तो ट्रैक करते करते अब लगी।
6: अच्छा अच्छा,
5: और अभी उधर क्लास ले रहे थे तो बच्चों की टिफिन हुई तो बोले के ट्रैक करके जल्दी लग जाती तो सुबह जल्दी लग गई।
6: ये बढ़िया है, लग गया ना।
5: जी
6: जी,
5: आज सुना दीजिए मैम नगीना फिल्म का गाना मोहम्मद अजीज और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में।
6: जी,
5: तूने बेचैन जितना ज्यादा किया, तेरा हो गया मीन तेरी हो गई। जी, सबसे पहले मैं आपको रेडियो रिमझिम के जितने भी प्यारे प्यारे लिसनर हैं देश विदेशों में सबको सुनाना चाहता हूँ दिल से।
6: चलिए, तो प्ले करेगा ना?
5: जी मैम, मैं कौन बोल रहा हूँ समझ गए ना मैम?
6: सुधीर कॉल बात कर रहे हैं।
5: जी जी जी, बिल्कुल मैम।
6: जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हेलो माय चॉइस में कॉल किया।
5: थैंक यू मैम।

0: बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंगम 90.4 FM में। चाहे पहले वहाँ से साइड हो जाइए जी। नाम बता दीजिए अपना और कहाँ से?
1: अनूप कुमार, ग्राम रेखा, तहसील सरीला, जिला हमीरपुर, बुंदेलखंड से बोल रहे हैं
0: जी। क्या हाल चाल है?
1: बढ़िया है।
0: क्या हो रहा था अभी?
1: खाना आना खा के लेती थी।
0: अच्छा अच्छा, तो गाना कौन सा सुनना आज आपको?
1: अख मेरी यार की दुखी, आँखों में आ गई लाल।
0: एक बार और बताइए नाम गाने का।
1: अख मेरी यार की दुखी, आँखों में आ गई लाल।
0: और सुनवाना भी है
1: ना?
0: गाना सुनवाना भी है?
1: हाँ सुनवाना है।
0: तो प्ले करे गाना आपके?
1: हाँ प्ले कर दूँ।
0: चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
1: रिकॉर्डिंग ना सर?
0: जी जी रिकॉर्डिंग हो रही है, शाम को चलेगी 5 से 7 के बीच में।
1: हाँ
0: जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। माय चॉइस में कॉल।
1: नमस्कार नमस्कार
0: नमस्कार।

0: के तरंग 90.4 पर आप जिले की आवाज रेडियो रिमझिम को सुन रहे हैं।
1: Now pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
1: Pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
3: जब फोन की घंटी बजती है तो कहते हैं हेलो
4: हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो
3: भागे भागे फिरते हैं।
5: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029494911। जी हाँ, 8029494911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
6: नमस्कार सर।
7: नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में।
6: हमको गाना सुनना है सर।
7: जी सुनवाएंगे, बता दीजिए नाम गाने का।
6: नाम गाने का है करीमा पांडे की आवाज में, नथिया नथिया लेला उधार राजा जी, रास्ता चली ले तो मांगेला सुनार राजा जी।
7: और सुनवाना भी है
6: जी। श्रवण साह एक दोस्त है बगल में, वो रेडियो भी बनाते है और रेडियो वो भी रखते है, हम दो रेडियो रखते है।
7: चलिए तो चेक कर रहे हैं गाना
6: जी। मेरा नाम है जोगी शर्मा और मेरा घर एक डरवा
7: जी।
6: जी नमस्कार।
7: नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो मैं कॉल

एकरा में राजन भैया मरद लोग के दोस्त नहीं थे। जब गहना नहीं थे गढ़ल रहत और जब उनका भी पैसा नहीं रहत मेरा भी पैसा उनका के पाल जानू इमोशनली ब्लैकमेल करत गहना खाती।

जब भी हम सब सवर के अपना सखी लोग के साथ बाजारे जाए ला आ जब भी वो देखे ला तो सबके सामने हमारे टोके लागे ला तातना सजल सवरल के का फायदा कि लोग कहे ला कर्जा कार के बने ले बड़ी तारा ढेर पता बा सच्ची।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, सुनो दिल से।
1: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029494911। जी हाँ, 8029494911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
2: जी नमस्कार।
3: नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन 90.4 FM में।
2: जी जी, सोनी जी, क्या हाल चाल?
3: बिल्कुल बढ़िया रहो, वो बताए कैसन बने?
2: ठीक बने, पहला कॉल लग रहा?
3: हाँ हाँ, पहले कॉल है।
2: दोबारा है कहीं ऐसा मन बता दे रहा है, चाहे कहीं देखे तो लग सब लगन चल रहा था बाकी ना लगन चल रहा है ना
3: लगन तो शुरू है भाई, तो बर्फ होता नहीं आवा।
2: आप लोग के तरफ बारिश भी बहुत हो रहा है एकदम पूरा एकदम
3: काले भाई रहे बारिश बढ़िया वाला एकदम
2: काला भाई ना हमने एकदम ठंडा रहा रात में। हमने तीन चार दिन से बहुत ठंडा रात लगा था, तो हमें क्या करते निकल के पड़ गई
3: सब
2: फिट
3: के रखा
2: गया,
3: लेकिन अब सोचल जाता रहे ना निकल जाए, बाकी इतनी ठंडा हुई तो रखा के उड़ाई के पड़ गए निकाल
2: के बर्दाश्त होगा ना कर।
3: चलिए तो बता दी गाना कौन सुने के बाद?
2: गाना सुने के बाद धर्मवीर मूवी के।
3: कौन मूवी के?
2: धर्मवीर।
3: अच्छा,
2: ओ मेरी महबूबा महबूबा महबूबा तुझे जाना है तो जा, तेरी मर्जी मेरा क्या। और सुना एक बार सबसे पहले रामा जी प्रसाद को और नूर आलम भाई को, सगीर आलम भाई को और मनान भाई को और के जितना वाला था सब कुछ सुना क्या है। हमने की जितना रोशन में धना काम करते हैं सब कुछ सुनो क्या। आई आर बोस चली कि ना आज
3: चली रिकॉर्डिंग के बाद?
2: ठीक है।
4: ओ मेरी महबूबा

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रिजर्वेशन
0: उमा शंकर, उमा शंकर दिल्ली से।
1: जी, कैसे हैं उमा शंकर जी?
0: ठीक बा
1: जी।
0: और सब मौसम कैसा बा?
1: तो बढ़िया बा। यहाँ
0: आज छुट्टी मरले रहेंगे, ऐसे करेंगे कि तनी बात कर ली।
1: जी, बिल्कुल बढ़िया कहनी है जी। तो गाना कौन सुने के बाद?
0: गाना हो भरत शर्मा के बा, होता है शरीर आत्मा है गौरैया
1: जी। और सुनवाई के भी बा?
0: सुनवाई के बारी हमारे धर्म पत्नी बारी सविता देवी।
1: अच्छा अच्छा।
0: भाई बा धनेश मिश्रा, रवि जहाँ हुई तहाँ रवि सुनी, और हमारा संगे बहुत लोग बा काम करे वाला वो लोग सुनेला।
1: अच्छा।
0: एगो बारन बैजनाथ शर्मा वो सुनेला
1: जी। चलिए,
0: और सब बढ़िया बना?
1: जी सब बढ़िया बा। तो गाना प्ले करी?
0: हाँ जी, सुना दी।
1: बहुत बहुत धन्यवाद। वेलकम।

0: आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।
1: Now pick it up, pick it up.
2: Hello.
1: Now pick your phone up.
2: Hello.
1: Pick it up, pick it up.
2: Hello.
1: Now pick your phone up.
2: Hello.
3: The phone ring, they bajte hai, to kehte hai hello.
4: Hello. Hello. Hello. Hello. Hello.
3: Bhage bhage firte hai.
5: Break ke baad aap sabhi ka ek baar fir se swagat hai Hello My Choice ke show mein. आप सब इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029494911। जी हाँ 8029494911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
6: दीदी नमस्ते।
7: नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
6: मैं सविता बोल रही हूँ दिल्ली से।
7: जी कैसी हैं सविता जी?
6: ठीक हूँ।
7: तो क्या हो रहा था अभी?
6: अभी काम धंधा करके बैठी हूँ, क्या होगा।
7: तो बता दीजिए गाना कौन सा सुनना है आपको?
6: रोटी रोटी बेलाई के परी।
7: और सुनवाना भी है?
6: सुनवाना भी है। हाँ धनेश कुमार मिश्रा।
7: जी जी चलिए तो प्ले कर रहे हैं गाना आपकी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका लाइक है इसमें कॉल।
8: We'll be right back.

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो नंबर
0: जी। बहना जी प्रणाम, नमस्कार।
1: नमस्कार
0: जी, मैं राजीव यादव, ग्राम प्रकाश श्रीरामपुर डेरा सरीला राठ मुस्कर हमीरपुर बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से, और दो महीने बाद हो सका है शामिल हो रहा हूँ
1: जी। तो क्या हाल चाल है?
0: हाँ बहना जी, तबीयत खराब हो गई थी तो थोड़ा व्यस्त रहे, अभी एकदम ठीक ठाक है। घर में मम्मी पत्नी बच्चे सब कुशल मंगल में है।
1: चलिए बढ़िया बात है। तो गाना कौन सा सुनना आज आपको?
0: गाना सुनेंगे उज्जैन के आगे जी, उज्जैन के पीछे जी, उज्जैन के आगे पीछे जी जी, मैं उनकी साली हूँ कसम से जी जा जी।
1: और सुनाना भी है?
0: हाँ बहना जी, हमारे मित्र हैं शारदा प्रसाद जी, मथुरा वृंदावन से हैं, राम संस्कर्मा जी हैं, श्री यादव जी हैं, उदय भान पाल जी हैं, अनुप कुमार राजपूत जी हैं, बलवान सिंह यादव हैं, पालन यादव हैं, और रेडियो झिमझिम की प्यारी बहना आपको इसी गीत में शामिल कर रहे हैं।
1: गाना
0: कुछ लाइनें कह दें बहन, इजाजत हो तो। हर पर्वत को झुका नहीं सके, हर दरिया को सुखा नहीं सकते, आप हमें भूल जाए भले ही, लेकिन हम रेडियो झिमझिम को भूला नहीं सकते।
1: ले कर रहे गाना
0: जी बहना जी, काम नमस्कार।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।
1: Now pick it up, hello. Pick it up, hello. Now pick your phone up.

0: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
1: सलामुअलैकुम।
2: वालेकुम सलाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंजन 104 FM में।
1: थैंक यू मैम, मैं अहमद अली, सरियावाद नंबर 1। कैसी है मैम?
2: बिल्कुल बढ़िया, आप बताइए आप कैसे हैं?
1: हम लोग भी अच्छे हैं, तबीयत अच्छा है ना?
2: जी हाँ बिल्कुल बढ़िया है।
1: अभी तो गर्मी बढ़ रही है यार,
2: फिर भी ठीक ही है मौसम आज।
1: हवा चल रही है,
2: हवा ठंडा ही चल रहा है, गर्म हवा नहीं है।
1: और बताए, नाश्ता पानी हुआ है क्या मैम?
2: जी हाँ बिल्कुल हो गया है, अभी तक बाकी थोड़ी रहेगा।
1: चलिए आज मेरे को सॉन्ग सुनाइए सूर्या मूवी से, प्यार काहे बनाया राम ने, कोई आए मेरा दिल सामने।
2: सुनाना भी है?
1: हाँ सुनाना है। सबसे पहले तो आप अटरी को, कमरा अंदर सीट को, राघव जी को, दिलीप भाई को और जो भी रेडियो रिमझिम जहाँ से भी सुन रहे हैं।
2: चलिए तो प्ले कर रहे हैं गाना।
1: थैंक यू मैम, सलाम अलैकुम,
2: बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय कॉल की।

0: गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
1: क्या हाल है?
0: बिल्कुल बढ़िया, आप बताइए आप कैसे हैं?
1: मेरा भी बढ़िया है। आप भूल गए गणेश? आप भूल गए?
0: बिल्कुल नहीं भूले हैं, भूले होते तो नाम पूछते नहीं।
1: नहीं मेरे हिसाब से भूल गए हैं।
0: ना ना बिल्कुल नहीं भूले हैं, आप नहीं आ रहे हैं शो में।
1: तो मैं अभी काम नहीं मिले थे, जानते हैं कि शादी ब्याह में फंक्शन हो जाते हैं, इधर आइए इधर आइए।
0: समझ रहे हैं,
1: अभी तो टाइम नहीं है, अभी जा रहा है पूजा करने। आज दूसरा कॉल मेरा लग गया, एक बार दूसरा कॉल में लग गया।
0: चलिए बढ़िया है, मन से किए इसलिए लग गया।
1: आप नहीं आए शादी में, ये
0: नहीं आ पाए, मौसम भी देखे आप कैसे हो गया था।
1: चलिए मेरे बहुत बढ़िया शादी भगवान के तरफ।
0: जी जी, अभी तो जिसका शादी है उसका हाथ कलेजा पे ही है कि कब क्या हो जाए, बारिश आ जाए तूफान आ जाए। तो बता दीजिए गाना कौन सा सुनना है आपको?
1: कोई भी बजा दीजिए, मंदिर का कोई भी बजा दीजिए।
0: नहीं नहीं आप ही बताइए।
1: कोई भी बजा दीजिए।
0: तो भी कुछ तो बताइए, हिंदी भोजपुरी किसके आवाज में?
1: हिंदुस्तान कोई भी बजा दीजिए,
0: कोई भी
1: आप सुनते हैं आपको अच्छा लगता है?
0: अरे वैसे नहीं कर सकते ना, क्योंकि सर के तरफ से अलाउ नहीं है, उनके तरफ से है कि गाना अगर कॉल आया तो गाना बताना ही है, नहीं तो फिर आप गाना नहीं बजाइए। हिंदी? चलिए तो प्ले कर रहे हैं गाना। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
1: मेरे को थोड़ा ध्यान दीजिए।
0: जी जी बिल्कुल,
1: ओके
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सो मैं कॉल।

0: बिहार का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM,
1: सुनो दिल से।
2: Now pick it up,
3: hello.
2: Now pick your phone up,
3: hello.
2: Pick it up,
3: hello.
2: Now pick your phone up,
3: hello.
4: जब फोन की घंटी बजती है तो कहते हैं हेलो,
5: हेलो, हेलो, हेलो, हेलो, हेलो,
4: भागे भागे फिरते हैं।
6: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029494911। जी हाँ, 8029494911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।

0: सोनी मैम प्रणाम।
1: प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
0: और सर?
1: सब बढ़िया, आप बताइए।
0: ये बिहार के नेटवर्क ना सुधरी क्या?
1: आप बताइए, बिहार के नेटवर्क सुधरी कि ना सुधरी, अब हम कैसे बताएं?
0: बिजली बता होता, उसके बाद फ्यूचर बता होता।
1: रिकॉर्डिंग कहनी है तो कॉल आवाता टेही से बिजली बताओ थे।
0: ना तो बिजली तो बताते, फिर स्विच ऑफ बताओ ना।
1: स्विच ऑफ कहे बताओ तो इतना नहीं है पता हमरा।
0: ये बिहार ना सुधरी
1: ऐसा ना कहीं। तो गाना कौन सुने के बाद बता दी?
0: भोजपुरी सुने के बाद अथी बबीता सागर के पूर्वी बजा दे चूल्हा लगे जरी।
1: और सुनवाई के भी बात?
0: वे जितना लिसनर लोग सुनत लो सुनी लोग, खास करके रामा जी प्रसाद वाला वो सुन ली। और ये जब भैया भाई बोल रही बोलो
1: रवि के फोन अभी ना आई
0: बाजी बाली।
1: तो कब ले जाए के बाद गाँव से उनका?
0: कोई पता ना,
1: अभी पता ना। चलिए ठीक बा, कहीं जास तो फिर वही जैसे जुड़स घर पे तो टाइम मिलत ना बा फोन करे के।
0: ठीक बा, तो बजा दे काटे मत।
1: जी जी बिल्कुल। हेलो माई चॉइस में तो कोशिश करे नहीं की हम गाना ना काटी,
0: जैसे ना 4-5 मिनट के तो ऑर्डर 4-5 मिनट के बना। ये सब थोड़ा लाइव लाइव शो होता, बड़ा बड़ा होला
1: तो बड़ा बड़ा होला तो शुरू वाला जो बतिया रहला वो काट देवे नहीं, गानवा तो रहबे करेला।
0: ये सब बाकी कोनो बेकार नहीं छे, बढ़िया बा, तनी लंबा होला गाना लेकिन बढ़िया। चलिए ठीक ठीक बा,
1: ठीक बा, बहुत बहुत धन्यवाद समय कॉल के।

0: सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।
1: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029494911। जी हाँ, 8029494911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
2: हेलो
3: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
2: नमस्ते मैम।
3: नमस्ते, नाम बता दीजिए अपना और कहाँ से?
2: साइन फिरदौस माधव।
3: नाम एक बार और बताइए।
2: साइन फिरदौस।
3: साइन फिरदौस जी, और कहाँ से बात कर रही हैं साइन?
2: माधव
3: जी। और क्या करती हैं आप?
2: अभी तो आपका कॉल लगा रही हूँ।
3: तो गाना कौन सा सुनना है आज आपको?
2: ये सुना दीजिएगा, मुबारक मुबारक ये शादी तुम्हारी।
3: मुबारक हो तुमको ये शादी तुम्हारी
2: जी।
3: सुनवाना भी है?
2: सभी दोस्तों को रात को भी डेडिकेट करना चाहते हैं।
3: ओके, चलिए तो प्ले करें गाना आपके।
2: थैंक यू मैम।
3: वेलकम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सो मैं कॉल।
2: बाय
3: बाय।

0: सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है, सुनो दिल से। आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो, रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM जो हर पल का है, सुनो दिल से।

0: आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।
1: हम हैं इस पल।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

0: उत्तर बिहार का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM
1: सुनो दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

0: का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM
1: सुनो दिल से।

0: उत्तर बिहार का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM
1: सुनो दिल से।

0: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।
2: फिल्मी गाने से जुड़े रहने के लिए YouTube ऐप के बेल आइकन को प्रेस करें।

0: To enjoy evergreen melodious songs from over the years to the latest ones, subscribe to Filmy Gaane channel.
1: आप सुन रहे हैं जिले की आवाज रेडियो रिमझिम 90.4 FM. सुनो दिल से.

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

श्री रामचंद्र जी व लक्ष्मण जी पूजा के लिए फूल लेने बाग में गए। वसंत ऋतु के प्रभाव से सब ओर वहां प्राकृतिक सौंदर्य की छटा देखते ही बनती थी। नए नए पत्तों और फलों से युक्त सुंदर वृक्ष लहला रहे हैं। पपीहे, कोयल, तोते और चकोर आदि पक्षी अपनी मीठी बोली बोल रहे हैं और मोर सुंदर नृत्य कर रहे हैं। बाग के बीचों बीच निर्मल जल भरा सुहावना सरोवर बहुरंगी कमल पुष्पों से शोभित है और जल के पक्षी कलरव कर रहे हैं। मालियों से अनुमति लेकर दोनों भाई पुष्प एकत्रित करने लगे। उसी समय पार्वती की पूजा करने के लिए सीता जी भी वहां आईं। उनके साथ सुंदरी और सयानी सखियां थीं। सीता जी ने बड़ी श्रद्धा से मां पार्वती गिरिजा की पूजा की और योग्य तथा सुंदर वर की कामना की। इसी बीच एक सखी को राम लक्ष्मण पुष्प एकत्रित करते दिखे। दर्शन मात्र से उस सखी का शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में जल भराया। अन्य सभी सखियों ने उस सखी से उसकी प्रसन्नता का कारण पूछा। दोनों भाइयों के अमित सौंदर्य का वर्णन करते हुए वो बोली, वाणी बिना नेत्रों की है और नेत्रों के वाणी नहीं है, अतः मैं उन दोनों राजकुमारों के सौंदर्य का वर्णन कैसे करूं? ये सुनकर दूसरी सखी बोली कि संभवतः ये वही राजकुमार हैं जो कल विश्वामित्र मुनि के साथ आए हैं। इन दोनों राजकुमारों ने अपने रूप की मोहिनी फैलाकर नगर के सभी स्त्री पुरुषों को अपने वश में कर लिया है। सीता जी को ये वर्णन अत्यंत प्रिय लगा और वे उन राजकुमारों के दर्शन के लिए अपनी सखी को साथ ले आगे चलीं।

गौरी पूजन के लिए सखियों के साथ सीता पुष्प वाटिका में आई हैं। वहां उन्होंने उन दो राजकुमारों को देखा जिन्होंने अपनी रूप की मोहिनी से जनकपुर वासियों का मन अपने वश में कर लिया है। उधर सीता तथा उनकी सखियों के कंगनों, करधनी, पाजेब आदि की मधुर ध्वनि सुन श्री राम मंत्र मुग्ध हो गए। सीता के मुख रूपी चंद्रमा को देखने के लिए श्री राम की आंखें मानो चकोर बन गईं, अपलक उन्हें देखते रहे। कथा है कि प्रत्येक व्यक्ति की पलकों में निम का निवास होता है, जिनके कारण पलकें खुलती और बंद होती रहती हैं। निम राजा जनक के पूर्वज थे। प्रस्तुत प्रसंग में भक्त कवि की कल्पना है कि निम ने लड़की दामाद के मिलन प्रसंग को देखना उचित न जानकर श्री राम की पलकों से अपना निवास हटा लिया, जिससे उनकी पलकें खुली की खुली रह गईं।